नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजे आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजे को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:05 में हैं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

ज्ञान ज्योति। प्रेम शास्त्रों की आत्मा है, प्रेम विश्वास का फल है। हृदय में प्रेम भाव के बिना मन में अच्छे विचार नहीं आ सकते और हमारा मन अर्थपूर्ण जीवन से भटकता चला जाता है। मनुष्य को अपने हृदय की आंखों को हमेशा निर्मल और शुद्ध रखना चाहिए, जिनके माध्यम से हम इस धरातल पर ईश्वर के होने का अनुभव कर सकते हैं। अतः हम सबको प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए।

आलस, लोभ, क्रोध, मोह मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। अतः मनुष्य को इन विकारों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए और सदैव प्रेम का मार्ग अपनाते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए।

आस्था की पराकाष्ठा में मनुष्य को ईश्वर की अनुभूति होती है। आस्था अर्थात भक्ति, ईश्वर भक्ति में वो शक्ति है जो मनुष्य को इस संसार रूपी भवसागर को पार करने में चेतना प्रदान करती है।

पक्षीराज गरुड़ को अपने पूर्व जन्मों का वृत्तांत सुनाते हुए काकभुशुंडी ने बताया कि शायद ही कोई ऐसी योनि होगी जिसमें उन्होंने जन्म नहीं पाया। अपने अनेक जन्मों में उन्होंने योग, जप, तप, दान, पुण्य सभी कुछ किया। कलयुग में उनका जन्म अयोध्या के एक शूद्र कुल में हुआ। उस जन्म में वे मन, वचन और कर्म से भगवान शिव के आराधक थे। शिव भक्त होने का उन्हें मात्र अभिमान ही नहीं था, बल्कि वे अन्य सभी देवताओं की निंदा भी करते। कलयुग में धर्म के विरुद्ध आचरण होता है। डींग मारने वाले पंडित और दंभी व्यक्ति संत कहलाते हैं। स्त्री वश में होकर व्यक्ति मदारी के बंदर की तरह नाचता है। काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये सब लोगों के गुण समझे जाते हैं। शिष्य गुरु के उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता। स्वयं गुरु भी ज्ञान दृष्टि रहित होता है। तनिक से लाभ के लिए लोग गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। ये है कलयुग की विशेषता।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का भाग 390। गायक कलाकार थे सुरेश वाडेकर। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगा।

जी, कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुप्रभात हमीरपुर, हमारा दैनिक कार्यक्रम आप सुनते हैं रोजाना 7:05 पर। 7:35 पर आप सुनेंगे लोक संसार। समाचार प्रभात का अंक आप सुनेंगे 8 बजे और 8:15 पर। मॉर्निंग न्यूज का अंक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हिमाचल डायरी का अंक आप सुनते हैं रोजाना 8:30 पर। 8:35 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर। 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 10:05 पर आप सुनेंगे लघु वार्ता। 10:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति फिल्मी गीत। 10:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंग। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से आप सुनेंगे 11 बजे। 11:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। दोपहर 12 बजे आप एक बार फिर आपके मनोरंजन के लिए हाजिर होंगे। कार्यक्रम बाल मंडल आप सुनेंगे 12 बजे। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुनते हैं रोजाना 12:30 पर। दोपहर समाचार का अंक आप सुनेंगे 2:15 पर। 2:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। 3 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। 3:10 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। शाम 5 बजे एक बार फिर आपके मनोरंजन के लिए हाजिर होंगे। 5:05 पर आप सुनेंगे भजन संध्या कार्यक्रम पहाड़ी बोली में। युवा साथी अपना कार्यक्रम युव मंच रोजाना सुनते हैं 5:30 पर। 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। सफर सुहाने गाने नए पुराने आप सुनेंगे 6:05 पर। गल तुसांदी कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर। 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियां दी तान। सात बजकर 25 पर आप सुनेंगे रौनका ग्राएं दियां। 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। 8 बजे आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या का अंक और news@9 आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:15 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

दिलां दे मीत पहाड़ी गीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर, और देर रात 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की। 6:55 होने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: Porta.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन।

0: प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में कुडेबेलूर से महबूब नगर तक चार लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिलग वित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्स्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस

0: है?
1: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
1: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 7:05 और 50 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। हाँ,

सुप्रभात। हमीरपुर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो हमसफर बबीता। बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। और देखिए, आज 10 मई है और आज हम सब मना रहे हैं मातृत्व दिवस, जो अपना कम और अपनों का ज़्यादा ख्याल रखती है वो हमारी माँ होती है। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और सुरक्षा का वो साया है जो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। तो चलिए एक छोटी सी कविता माँ के नाम। शब्द है बहुत छोटा सा, शब्द है बहुत छोटा सा, कुछ ऐसा कि धूप में छांव जैसा, परेशानी में हौसले जैसा, अंधेरे में रोशनी जैसा। खास है दुनिया के हर रिश्ते से कुछ ऐसा, क्योंकि 9 महीने पहले ही जुड़ गया है सांसों का बंधन जैसा। बिन कुछ कहे बिन कुछ बोले कोई ऐसा, मानो सारी बातों का राजदार हो जैसा। अनमोल है माँ, मोल नहीं किसी का इस शब्द जैसा, शब्दों में बयां हो इस शब्द का अर्थ कैसा। बिल्कुल श्रोताओं, माँ शब्द का अर्थ अगर शब्दों में बयां हो जाए तो इस शब्द का अर्थ कैसा रहेगा। माँ तो वो शब्द है जिस शब्द के हम उम्र भर आभारी रहेंगे, कृतार्थ रहेंगे। हर हौसले में, हर कठिन परिस्थिति में माँ ने हमारे हौसले को बढ़ाया है। माँ की सीख, माँ की समझ और माँ के द्वारा दी गई जीवन को जीने की राह हमें हर कठिन परिस्थिति में एक रास्ता दिखाती है, उम्मीद की किरण को जगाए रखती है। तो आज का दिन माँ के नाम। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म थी तारे जमी पर। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: नेता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
2: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर A.S. ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
1: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
2: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
3: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर, और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं सुप्रभात हमीरपुर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं आज के इतिहास के बारे में और जानते हैं क्या कुछ हुआ था खास आज के दिन। इटली के खोजकर्ता और नाविक कोलंबस ने आज ही के दिन कायमान द्वीप की 1503 में खोज की थी। 1774 में फ्रांस के 16वें शासक लुई की नियुक्ति आज ही के दिन हुई थी। लंदन की नेशनल गैलरी को आज ही के दिन 1824 में आम लोगों के लिए खोला गया था। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में 1916 में ऐतिहासिक शिप पोर्ट संग्रहालय को आज ही के दिन लोगों के लिए खोला गया था। अमेरिका ने 1972 में नेवादा में आज ही के दिन परमाणु परीक्षण किया था। संतोष यादव 1993 में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर दो बार पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला पर्वतारोही आज ही के दिन बनी थी। और अब बात करते हैं आज के दिन जन्म हुई कुछ महान हस्तियों के बारे में। बांग्ला और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और अभिनेता पंकज मलिक का जन्म आज ही के दिन 1905 में हुआ था। पद्मभूषण सम्मानित सुभाष कश्यप का जन्म भी आज ही के दिन 1929 में हुआ था। परमवीर चक्र सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव का जन्म भी आज ही के दिन 1980 में हुआ था। बात करते हैं आज के दिन निधन हुए व्यक्तियों के बारे में। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक छत्रपति साहू महाराज का निधन आज ही के दिन 1922 में हुआ था। पेनिसिलिन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर एडवर्ड इब्राहिम का निधन आज ही के दिन 1999 में हुआ था। फिल्म जगत के मशहूर शायर कैफी आजमी का निधन भी आज ही के दिन 2002 को हुआ था। तो श्रोताओं, ये तो थी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो हमने आपके साथ साझा की, और अब कार्यक्रम में शामिल करते हैं एक गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
4: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
3: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
4: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
5: जी, कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से FM बैंड 101.8 MHz पर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। सबसे पहली खबर है, हिमाचल बोर्ड आज घोषित करेगा 10वीं का परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम रविवार को घोषित करेगा। इस बार ड्यूल परीक्षा प्रणाली के तहत आयोजित 10वीं की परीक्षा के चलते परिणाम की अस्थायी मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसके बाद मई जून में दोबारा परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें वे परीक्षार्थी हिस्सा ले सकेंगे जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं या दो मुख्य विषयों में फेल हो गए हैं। प्रदेश में 93,000 से अधिक विद्यार्थियों ने 10वीं की परीक्षा दी थी। शिक्षा बोर्ड के सचिव ने बताया कि बोर्ड ने परीक्षा परिणाम तैयार कर लिया है। परिणाम घोषित होने के बाद इसे बोर्ड की वेबसाइट के अलावा डिजी लॉकर पर अपलोड किया जाएगा। इस बार वार्षिक परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में 2,384 परीक्षा केंद्रों पर 3 से 29 मार्च तक हुआ था। 93,564 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। अगली खबर है, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए जिले में किशोरियों का टीकाकरण जारी है। शनिवार को जिले के 11 कोल्ड चेन पॉइंट में मात्र 25 लड़कियों को टीके लगाए गए। इनमें स्वास्थ्य खंड गलोड़ में 12, नदौन में 3 और टौणी देवी में 10 किशोरियों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य खंड बड़सर और सुजानपुर में एक भी किशोरी का टीकाकरण अभी नहीं हुआ है। अब तक कुल 1,171 किशोरियों का टीकाकरण किया जा चुका है। जिले में टीकाकरण के लिए कुल 2,967 लड़कियों का पंजीकरण किया गया है। पहले ये टीके केवल छुट्टी वाले दिन लगाए जाते थे, लेकिन अब 14-15 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियां किसी भी दिन अपने नज़दीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में जाकर टीका लगवा सकती हैं। मार्च में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वह अपने बच्चों को समय पर टीका लगवाएं। अगली खबर है, भारत ने ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसके साथ ही एक ही मिसाइल के जरिए कई लक्ष्यों को एक साथ भेदने की क्षमता और अधिक पुख्ता कर ली गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ ने DRDO को बधाई देते हुए कहा है कि भविष्य के युद्ध के लिए तैयारियों को और मजबूती मिली है। मंत्रालय ने बताया कि मिसाइल ने हिंद महासागर क्षेत्र में एक बड़े भौगोलिक दायरे में फैले विभिन्न लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। मिसाइल में कई पेलोड यानी वॉरहेड लगे थे, जिन्हें अलग अलग दिशाओं और स्थानों पर सटीक रूप से दागा गया। DRDO की प्रयोगशालाओं ने इस स्वदेशी मिसाइल का विकास देशभर के उद्योगों के सहयोग से किया है। MIRV तकनीक का अर्थ है कि एक ही मिसाइल अपने साथ कई परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जा सकती है और उन्हें अलग अलग ठिकानों पर गिरा सकती है। दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ये तकनीक उपलब्ध है और अब भारत के पास भी ये तकनीक उपलब्ध है।

बात करते हैं मौसम के बारे में। हिमाचल प्रदेश में मई के दूसरे सप्ताह में भी ठंड कुछ हद तक लगातार बरकरार है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चल रहा है। मई महीने में पहाड़ों पर हिमपात और मैदानी इलाकों में बारिश ने पारा थाम दिया है। प्रदेश के मैदानी इलाकों ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर में इन दिनों पारा 40 के आसपास रहता था। इस बार मौसम खराब रहने से तापमान 35 से नीचे बना है। वहीं राजधानी शिमला में इन दिनों पारा 30 डिग्री के आसपास रहता था। शिमला समेत पहाड़ी इलाकों में सुबह शाम लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। शनिवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में अभी गर्मी बढ़ने के आसार नहीं हैं। रविवार को हिमाचल में मौसम साफ रहेगा, लेकिन 11 से 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने इस दौरान कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इसका असर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 11 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए येलो, जबकि 12 और 13 मई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए ऑरेंज और अन्य जिलों के लिए येलो या अलर्ट जारी किया है। 14 और 15 मई को भी मौसम खराब रहने के आसार हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी आज की कुछ खास खबरें जो हमने आपके साथ साझा की, और अब कार्यक्रम में शामिल करते हैं एक और गीत।

जी, लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी आन मिलो सजना। कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी श्रोताओं, बिल्कुल थोड़ा सा समय रह गया है, साझा करते हैं आपसे आज की खेल खबरें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 11 मई को होने वाले आईपीएल मुकाबले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। एक ओर दिल्ली कैपिटल्स की टीम शनिवार शाम धर्मशाला पहुंच गई है, वहीं दूसरी ओर पंजाब किंग्स ने मुकाबले से पहले अभ्यास किया है। टीम के सभी खिलाड़ी शाम के अभ्यास सत्र में मैदान पर उतरे और बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फिटनेस ड्रिल्स पर फोकस किया। पंजाब किंग्स की टीम प्रबंधन ने खिलाड़ियों की फिटनेस और मानसिक तैयारी पर भी विशेष ध्यान दिया है। लगातार हार के बाद पंजाब किंग्स अब धर्मशाला में जीत के साथ वापसी की उम्मीद कर रही है। वहीं दूसरी खेल खबर है, भारत के 25 वर्षीय धनुर्धर साहिल जाधव ने विश्व कप स्टेज दो में कंपाउंड पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। महाराष्ट्र के इस तीरंदाज ने कांस्य पदक प्ले ऑफ में डेनमार्क के दिग्गज मार्टिन डेम्सबो को 147-144 से हराकर भारत को टूर्नामेंट का पहला पदक दिलाया है। मैच के पहले दौर में एक अंक से पीछे होने के बावजूद दूसरे दौर में उन्होंने परफेक्ट 30 स्कोर किया, जबकि मार्टिन 27 पर रह गए। जाधव ने अंतिम 9 तीरों में सिर्फ 2 अंक गंवाए और जीत अपने नाम दर्ज की। तो श्रोताओं, इन्हीं जानकारियों के साथ और इन्हीं खबरों के साथ आज का सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम समाप्त करने की लेते हैं अपने श्रोताओं से अनुमति और उनको बोलते हैं सुप्रभात हमीरपुर।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:36 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा पहाड़ी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक संसार।

लोक संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो हम सफ़र बबीता। जैसा कि इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों के बारे में, या फिर ले चलते हैं आपको हिमाचल की हसीन वादियों में। देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ की हर घाटी, पहाड़ और गांव अपने आप में पवित्रता और धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है। देवभूमि हिमाचल न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर ने भी एक अद्वितीय पहचान बनाई हुई है। हिमाचल प्रदेश का इतिहास बहुत पुराना है, जहाँ देवी देवताओं की पूजा अर्चना और देव परंपराएं आज भी जीवंत हैं। ये राज्य अपने धार्मिक आयोजनों, अनुष्ठानों और रीति रिवाजों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। राज्य का इतिहास प्राचीन देव संस्कृति में रचा बसा है, जहाँ देवी देवताओं की पूजा और उनसे जुड़ी मान्यताएं आज भी जीवंत हैं। इन परंपराओं में गहरी आस्था और सांस्कृतिक धरोहर झलकती है, जो इसे दूसरे प्रदेशों से अलग और अद्वितीय बनाती है। इनमें गहन आध्यात्मिकता और पवित्रता निहित होती है। हर गांव में किसी न किसी देवता का मंदिर है और प्रत्येक देवता की अपनी मान्यताएं और नियम हैं। यहाँ के धार्मिक अनुष्ठान देव नीति के अनुसार होते हैं, जिसमें विद्वान पुरोहित और देव समाज के अनुभवी लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज भी हम आपको एक बहुत ही खास मंदिर की तरफ लेकर जाएंगे, पर फिलहाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं ये गीत।

जी ओम प्रकाश चंदेल की मीठी सी आवाज़ में हमने मीठा सा लोकगीत सुना और हम बात कर रहे थे हिमाचल की धार्मिक संस्कृति के बारे में। जी श्रोताओं, हम सभी को मालूम है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का प्रदेश माना जाता है, जिस प्रदेश में अनेकों क्षेत्रों में देवी देवताओं की शक्तियों और आस्था का इतिहास वेद और ग्रंथों के माध्यम से युगों युगों से देखने और सुनने को मिलता है। और इसी के चलते आज हम आप सभी को जिला सिरमौर के पांवटा साहिब क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसे अद्भुत और अलौकिक शिव मंदिर का जिक्र करना चाहेंगे, वहां ले जाना चाहेंगे।

और इस मंदिर का नाम है सहस्त्र धारा मंदिर जी। इस मंदिर के साथ माता का भी मंदिर बना हुआ है, साथ ही सहस्त्र धारा के नाम से अनेक प्रकार की जल धाराएं बहती हुई यहाँ पर नज़र आती हैं, जहाँ पर एक तरफ पुरुष श्रद्धालुओं के लिए जलधारा में अमृत स्नान किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग से गुफा के निकट अमृत स्नान के लिए व्यवस्था और स्नान किया जाता है। जिस गुफा के बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने सबसे अधिक अज्ञातवास का समय इसी धार्मिक स्थल पर व्यतीत किया था, तो वहीं धार्मिक विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि इस प्राचीन गुफा का रास्ता हरिद्वार तक पहुंचता है, जिसका निर्माण पांडवों ने स्वयं किया था, और इस गुफा से होकर पांडवों ने हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया था, जिसको देखकर हर व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि इस धार्मिक स्थल पर युगों से पहले अवश्य ऐसे ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी रहा होगा ये क्षेत्र, जिस धार्मिक स्थल के निकट पतित पावन माँ यमुना नदी का भी संगम देखने को मिलता है। जिस शिव मंदिर सहस्त्रधार के निचले हिस्से में बह रही टोंस नदी के साथ साथ कुछ ही दूरी पर यमुना नदी का संगम माना जाता है, और धार्मिक स्थल पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं।

सहस्त्रधारा मंदिर की पांवटा साहिब से दूरी मात्र 25 किलोमीटर की मानी जाती है। इस धार्मिक स्थल तक श्रद्धालुओं के लिए सड़क सुविधा उपलब्ध है। हर वर्ष महाशिवरात्रि और साल भर इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल में सहस्त्रधारा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान, प्राचीन गुफा और शिव मंदिर के दर्शनों से अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, कृतार्थ करते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस धार्मिक स्थल पर व्यक्ति को सभी मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और बार बार इस धार्मिक स्थल पर आने का मन होता है। जी, आगे भी हम इसके बारे में आपको बताएंगे, पर फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं एक और मीठा सा गीत।

जी पुष्पलता की मीठी सी आवाज़ में आपने ये लोकगीत सुना और हम बात कर रहे थे सहस्त्रधार मंदिर के बारे में कि इस धार्मिक स्थल पर व्यक्ति को सभी मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और बार बार इस धार्मिक स्थल पर आने का मन करता है। तो वहीं इस धार्मिक स्थल पर एक विशाल वटवृक्ष का पेड़ मौजूद है जो इस धार्मिक स्थल को और ज़्यादा आस्तिक और विश्वसनीय बना देता है। जैसा कि यहाँ पर वट वृक्ष मौजूद है और इस स्थल को सहस्त्र धारा के नाम से जाना जाता है क्योंकि वट वृक्ष की विशाल जड़ें, टहनियाँ, पत्तों का विशाल आकार मंदिर के समस्त क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो वट वृक्ष की जड़ों से हजारों जल धाराएं बहती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को सहस्त्र धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं ऐसी भी मान्यता है कि जब भगवान परशुराम जी ने सहस्त्र बाहु का वध किया तो उसके शरीर से जिस जिस क्षेत्र में रक्त धाराएं गिरी उन क्षेत्रों में से एक ये सहस्त्र धारा धार्मिक स्थल भी विख्यात हुआ, प्रसिद्ध हुआ। तो वहीं इस क्षेत्र में हनुमान जी की सुंदर और विशाल मूर्ति भी स्थापित की गई है। इस

धार्मिक स्थल पर हमें जरूर आना चाहिए और पुण्य की प्राप्ति करनी चाहिए। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी शिव मंदिर सहस्त्र धारा के बारे में। और वहीं अगर हिमाचल की संस्कृति के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें गहन आध्यात्मिकता और पवित्रता निहित है। देवताओं को यहाँ जीवंत माना जाता है और उनके कार्य जैसे देव यात्रा, जातर या नृत्य आस्था और परंपरा का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। देव कार्य के दौरान लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को देवता के सामने रखते हैं और समाधान पाते हैं। हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज दूसरे प्रदेशों से अलग और विशिष्ट हैं। यहाँ की संस्कृति में सामाजिक समरसता, प्रकृति के प्रति सम्मान और आस्था का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। देवता के स्थान का संचालन देव समाज द्वारा किया जाता है। इसमें सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। यहाँ देवता अपने अनुयायियों के साथ यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा में देव नृत्य और संगीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमाचल की देव संस्कृति में धार्मिक अनुष्ठानों में श्रद्धालुओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है और ये कर्मकांड पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। इनका पीढ़ी दर पीढ़ी नियोजन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की धार्मिक धरोहर को सहजना आज की आवश्यकता हो गई है। इसके लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे युवाओं को इन परंपराओं के महत्व और उनके पीछे छिपे आध्यात्मिक संदेश के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। देव कार्यों के दौरान फोटोग्राफी और वीडियो बनाने पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए। देव परंपराओं के आयोजनों में सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर कार्यशालाओं और चर्चाओं का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि देव परंपराओं की पवित्रता को बनाया जा सके। हिमाचल प्रदेश की देव परंपराएं और धार्मिक रीति रिवाज न केवल यहाँ के समाज की पहचान है बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक अमूल्य हिस्सा भी हैं। इन्हें सहेजना और सम्मान देना, इन परंपराओं की पवित्रता और उद्देश्य को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। आधुनिकता के इस दौर में हमें अपनी आस्था और परंपराओं के प्रति सचेत रहना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि इनका सम्मान और संरक्षण हो। हिमाचल की देवभूमि को उसी पवित्रता और श्रद्धा के साथ जीवंत रखने का प्रयास करना चाहिए जो सदियों से विशेष बनाता आया है, इसे और सदियों से चलता आया है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाजों के बारे में और साथ ही हमने सहस्त्रधार मंदिर की जानकारी आपके साथ साझा की। और अब कार्यक्रम में बिल्कुल समाप्त होने का समय हो गया है और इन्हीं जानकारियों के साथ लेते हैं आपसे अनुमति और बोलते हैं आपको नमस्कार।

आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात का अंक और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ का अंक, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45

में स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वारंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मंकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियाद ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस VC के वामपंथी दलों और IUML के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
5: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधायकों का

0: समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
5: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
6: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।

0: में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चित समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट कर्नाटका एंड तेलंगाना टुडे टू लॉन्च मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 9,400 करोड़ रुपीज इन हैदराबाद and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Center operationalizes 4 labor codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration test of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under-15 and Under-17 championships in

परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में 2384 परीक्षा केंद्रों पर 3 से 29 मार्च तक हुआ था। 93,564 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। तकनीकी विश्वविद्यालय की बीटेक, बी फार्मेसी, एमबीए सहित अन्य पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा रविवार यानी कि आज प्रदेश भर के 16 परीक्षा केंद्रों में होगी। इस बार प्रवेश परीक्षा के लिए लगभग 9,700 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। 10 मई को सुबह 9 से 11 बजे तक एमएससी भौतिक विज्ञान और 9 से सवा 12 बजे तक बीटेक और बी फार्मेसी की प्रवेश परीक्षा होगी। दोपहर के सत्र में 2 से 4 बजे तक एमसीए, एमबीए और एमबीए पर्यटन की परीक्षा ली जाएगी।

0: अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश में मई के दूसरे सप्ताह में भी ठंड बरकरार है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चल रहा है। शिमला समेत पहाड़ी इलाकों में सुबह शाम लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। शनिवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में अभी गर्मी बढ़ने के आसार नहीं है। रविवार को हिमाचल में मौसम साफ रहेगा, लेकिन 11 से 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने इस दौरान कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे दर्ज किया गया है। शिमला, कुफरी, केलांग, कल्पा, मनाली और डलहौजी जैसे पर्यटन स्थलों पर दिन के समय भी हल्की ठंड महसूस की जा रही है। ऊंचाई वाले जिलों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से नीचे बना हुआ है। सुबह शाम के समय ठंडी हवाओं के कारण लोगों को फिर सर्दियों जैसे हालात महसूस हो रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर पहुंचे पर्यटक भी मौसम के इस बदले रंग का आनंद ले रहे हैं। बदलते मौसम ने किसानों और बागवानों की चिंता भी बढ़ा दी है। सेब उत्पादक क्षेत्रों में ओलावृष्टि की आशंका को लेकर बागवान सतर्क हैं। तेज हवाओं और बारिश से फलदार पौधों को नुकसान पहुंचने का खतरा बना है। मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटकों का रुख अब हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों की ओर तेजी से बढ़ने लगा है। लंबे वीकेंड के चलते राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। शिमला, मनाली, कसौली, चायल, कुफरी, नारकंडा और कल्पा में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी है। राज्य के होटल, होम स्टे और पर्यटन कारोबारियों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है। पर्यटन विभाग और स्थानीय कारोबारियों को उम्मीद है कि मई और जून के दौरान हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर इसी तरह सैलानियों की भीड़ बनी रहेगी। होटल और रेस्टोरेंट फेडरेशन के अध्यक्ष ने बताया कि लॉन्ग वीकेंड पर प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। हिमाचल डायरी के आज के अंक में बस इतना ही। आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आठ बजकर 35 मिनट हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: बॉयज फिल्म का ये गीत रचना इरशाद कामिल की, प्रीतम का संगीत।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

एक मैं और एक तू, इस फिल्म का गीत सुनिए अमित त्रिवेदी, शिल्पा राव, निखिल डिसूजा और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत अमित त्रिवेदी का।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सोना मोहापात्रा रविंद्र उपाध्याय की आवाजों में तलाश फिल्म का गीत। जावेद अख्तर ने इसकी शब्द रचना की है, राम संपत ने इसकी लय बनाई है।

एनीबडी कैन डांस यानी कि ABCD इस फिल्म का गीत सुनिए। मोहित चौहान प्रिया पंचाल के का गाया ये गीत, साथ दिया है तन्वी शाह और डेनी स्क्वरीज ने, और इस गीत को लिखा है मयूरपुरी ने, सागर जिगर का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं अश किंग शिल्पा राव और शेखर रवि जानी की आवाजों में ये गीत। बैंग बैंग फिल्म से अन्विता दत्त और कुमार का लिखा, विशाल शेखर का संगीतबद्ध किया हुआ।

मदर्स डे या मातृ दिवस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि उस निस्वार्थ प्रेम को धन्यवाद कहने का अवसर है जो बिना किसी शर्त के हर पल हमारे साथ खड़ा रहता है। तो आज थोड़ा वक्त अपनी माँ के नाम कीजिए, उनसे कहिए, आप हैं तभी मेरी दुनिया खूबसूरत है। सभी माताओं को मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं यारिया फिल्म का ये गीत। अनुपम अमोद की आवाज, इरशाद कामिल की रचना, धुन बनाई है अनुपम अमोद ने।

0: फुकरे फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सोना महापात्रा की आवाज में। इस गीत को राम संपत ने सुरों में ढाला है।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे

0: बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गीत है पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाजें। सिद्धार्थ गरिमा ने इसे लिखा है और इसकी धुन बनाई है टबी पारेख, साहिल, प्रीतेश और संजीव सेन ने।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए मोनाली ठाकुर का गाया ये गीत दम लगा के है शाह। इस फिल्म से वरुण ग्रोवर ने इस गीत को लिखा है, अनु मलिक की धुन।

आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज सुबह 11 बजे घोषित करेगा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम। दिल्ली से शिमला के लिए आज से हवाई सेवाएं बहाल, मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन की जाएंगी संचालित। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्पीति में लिख रहा विकास की नई इबारत। बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर शिमला में राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। और मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते कल से 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम आज घोषित करेगा। बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा और इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा। इस बार मार्च माह में 93,564 विद्यार्थियों ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। विद्यार्थी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 10वीं की परीक्षाएं 3 से 29 मार्च तक आयोजित की गई थी। परीक्षा का आयोजन 384 केंद्रों पर हुआ था। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन

0: ब्रिटेन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। दिल्ली से शिमला के लिए हवाई सेवाएं आज से दोबारा बहाल हो रही हैं। ये सेवाएं मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित की जाएंगी। इसके अलावा शिमला से धर्मशाला के लिए भी कल 11 मई से हवाई सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। इस रूट पर मंगलवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन हवाई सेवाएं होंगी। इन सेवाओं के शुरू होने से राज्य में हवाई सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि इससे राज्य में पर्यटन व व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अब लाहौल स्पीति के गांवों में विश्वास, आत्मनिर्भरता और समृद्धि की नई कहानी लिखता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चीन सीमा से सटे गांव तेजी से बदल रहे हैं। स्पीति घाटी के ग्यू, लालुंग और माने जैसे गांव अब मॉडल विलेज के रूप में उभर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ विकास नहीं बल्कि सीमावर्ती गांवों में नई उम्मीद देना है, ताकि समय पर बसे लोग खुद को देश की मुख्य धारा से और अधिक जुड़ा महसूस कर सकें। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
1: स्पीति घाटी के ग्यू, लालुंग और माने जैसे गाँव अब मॉडल विलेज के रूप में उभर रहे हैं। यहाँ सड़क, पानी, बिजली, इंटरनेट और रोजगार जैसी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। सीमा सड़क संगठन और लोक निर्माण विभाग दुर्गम गांवों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ रहे हैं। वहीं 5G टावर लगने से अब दूर दराज इलाकों में भी डिजिटल क्रांति पहुंच रही है। पर्यटन विभाग स्थानीय युवाओं को होमस्टे और टूरिस्ट गाइड का प्रशिक्षण दे रहा है। काला जीरा, केसर और सेवक थॉन जैसे स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान दिलाने के लिए आधुनिक मशीनें और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ विकास नहीं बल्कि सीमावर्ती गाँव में नई उम्मीद जगाना है, ताकि सीमा पर बसे लोग खुद को देश की मुख्य धारा से और अधिक जुड़ा महसूस करें। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: समग्र बौद्धिक विकास पर आज नई दिल्ली में परामर्शदाता सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से यह आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। ये परियोजना इस वर्ष जुलाई से 6ठी से 8ठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लागू की जाएगी। इसके तहत कल्याण मॉड्यूल, सहकर्मी सहायता गतिविधियां और अभिभावक सहभागिता कार्यशालाएं शामिल हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज शिमला में कल बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता व सूचना प्रौद्योगिकी के युग में बौद्धिक संपदा अधिकार विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों व युवा अधिवक्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसे अधिवक्ताओं की आवश्यकता होगी जो इन संवेदनशील व जटिल मुद्दों को प्रभावी रूप से समझ सके। इस संगोष्ठी में देश के विभिन्न राज्यों से आए 400 से अधिक शोधार्थियों, प्राध्यापकों, शिक्षकों व विद्यार्थियों ने भाग लिया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। किन्नौर जिला की प्राकृतिक विरासत, दुर्लभ पक्षी प्रजातियों के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आज समापन होगा। ये आयोजन 8 मई से हिमाचल पर्यटन विभाग, ओम किन्नौर स्थानीय शाखा, वन विभाग और जिला प्रशासन किन्नौर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
2: प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर गौली क्षेत्र में आयोजित इस फेस्टिवल में स्थानीय लोगों, पर्यावरण प्रेमियों, पक्षी विशेषज्ञों, फोटोग्राफरों, कलाकारों और पर्यटकों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। फेस्टिवल के पहले दिन

0: संगीत प्रस्तुतियां, पर्यावरण एवं पक्षी संरक्षण कार्यशालाएं, कविता पाठ, फोटो प्रदर्शनी, फन गेम्स, फूड स्टॉल, स्मृति चिन्ह स्टॉल और स्थानीय व्यंजनों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही पारंपरिक उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया, जिससे क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा मिला। आज फेस्टिवल के अंतिम दिन पक्षी अवलोकन, प्रकृति भ्रमण, विशेषज्ञ संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम आमतौर पर साफ है, हालांकि प्रदेश में मई के दूसरे सप्ताह में भी ठंड बरकरार है और लोगों को सुबह व शाम गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार कल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का अनुमान है। विभाग के अनुसार मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 11 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए येलो, जबकि 12 और 13 मई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए ऑरेंज व अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक कम होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से लिखता है, रिकॉर्ड गुम होने पर भू स्वामी का हक खत्म नहीं हो जाता। अदालत ने कहा, प्रशासनिक चूक की सजा नागरिकों को नहीं दे सकते। लैंड बहाली मामले में पुनर्विचार का आदेश। पंजाब केसरी की सुर्खी है, हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के निर्देश। दैनिक जागरण की एक खबर है, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश, 31 मई तक तबादलों की फाइल ना भेजें, शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया भी टालने का आग्रह। मौसम पर दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, राज्य में कल से फिर झमाझम 12 व 13 को भारी बारिश के आसार, ओलावृष्टि तूफान का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज सुबह 11 बजे घोषित करेगा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम। दिल्ली से शिमला के लिए आज से हवाई सेवाएं बहाल, मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन की जाएंगी संचालित। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्पीति में लिख रहा विकास की नई इबारत। बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर शिमला में राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। और मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते कल से 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो हमसफर बबीता। और देखिए, आज 10 मई है और आज हम सब बना रहे हैं मातृत्व दिवस। वैसे तो हम अपनी माताओं और बहनों को मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं दे चुके हैं, पर फिर से एक बार हमारी माताओं और बहनों को इस खास दिवस की, मातृत्व दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ एक ऐसा शब्द है जिसका अगर हम जिंदगी भर भी अगर व्याख्यान करेंगे तो वो माँ शब्द जो है वो छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि माँ की जो ममता होती है, माँ का जो दुलार होता है, वो जीवन भर हमारे साथ चलता है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। वो बिना किसी उम्मीद के हमें हर दिन प्यार देती है, हमारी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती है और ये हमेशा हम

हमारी खुशी में अपनी खुशी ढूंढती है। वो माँ ही हैं, जब हम खुश होते हैं तो वो हमसे ज़्यादा खुश होती है। हम अपना ख्याल रखते हैं लेकिन हमारा ख्याल भी हमारी माँ ही रखती है, और वो अपना ख्याल कम रखती है और अपने से ज़्यादा अपनों का, अपने परिवार का ख्याल रखती है। और उसी के इस प्यार भरे ख्याल से जो है एक परिवार सिमट के रह जाता है, एक परिवार जो है वो एक धागे की तरह सारे परिवार के सदस्यों को एक मोतियों की तरह पिरो के रखती है। माँ हमारी पहली गुरु होती है, वह हमें चलना, बोलना और अच्छे बुरे की पहचान करना सिखाती है। हमारे जीवन के हर कदम पर माँ हमारा साथ देती है, हमें सही रास्ता दिखाती है। और श्रोताओं, कहा भी गया है भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। इसलिए हमें हमेशा अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और उन्हें कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। और कार्यक्रम में शामिल करते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, माँ के नाम।

जी फिल्म संगीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हम बात कर रहे हैं मातृत्व दिवस के बारे में। जी, माँ हमारी पहली गुरु होती है, वो हमें चलना बोलना सिखाती है। और अब हम बात करेंगे कि मदर्स डे का इतिहास जो था वो क्या था। जी, किस तरह से मदर्स डे की शुरुआत हुई थी। मदर्स डे की शुरुआत के लिए अमेरिकी कार्यकर्ता एना जार्विस को संयुक्त राज्य अमेरिका की जो रहने वाली ही थी उसके लिए इनको जिम्मेदार ठहराया जाता है। मदर्स डे की स्थापना का श्रेय इन्हें दिया जाता है और वो अब आधुनिक मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि पहला मदर्स डे 1908 में अमेरिकी राज्यों वेस्ट वर्जीनिया और फिलाडेल्फिया में मनाया गया था। 9 मई 1914 को राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने प्रत्येक मई के दूसरे रविवार को संयुक्त राज्य अमेरिका में मदर्स डे के रूप में नामित करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि मदर्स डे संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और कई देशों में हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है, लेकिन यूके और यूरोप के कुछ हिस्सों में चौथा रविवार लेंट के दिन इसको मनाया जाता है। फ्रांस में मई के आखिरी रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। मदर्स डे शुरू में माताओं को व्यक्तिगत रूप से सम्मान देने और मनाने का दिन था और अब ये सामूहिक रूप से ज़्यादातर देशों में मनाया जाता है। दोस्तों, माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी दुनिया, पूरी ज़िंदगी समाई हुई है। वो बिना किसी उम्मीद के हमें हर दिन प्यार करती है, प्यार देती है और पूरे परिवार को संभाल के रखती है। हर छोटी बड़ी ज़रूरत का, सभी की ज़रूरत का ख्याल रखती है और हमेशा हमारी खुशी में अपनी खुशी

ढूंढती है वो माँ ही होती है। जब बच्चा बाहर से घर पहुंचता है तो माँ उसे हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ देखना चाहती है, और वो जो कठिन परिस्थितियों को जीत कर आता है तो उसकी जीत में अपनी जीत को ढूंढती है। उसकी जीत से वो इतनी खुश हो जाती है कि बच्चे का दिल जो है वो भर उठता है।

श्रोताओं, जिस तरह से अगर संगीत में सुर और ताल नहीं होता है तो संगीत सुनने का आनंद नहीं आता है, उसी तरह से अगर जीवन में माँ अगर दूर चली जाए, कहीं दूर हो, तो जीवन में भी कुछ कमी सी महसूस होने लगती है। ताल से ताल नहीं मिलती है, और हमारे जीवन की ताल भी तभी सुरों पर थिरकती है जब हम सही दिशा, सही रास्ता चुनते हैं। और ये सही दिशा, सही रास्ता हमें हमारी माँ ही दिखाती है। किस परिस्थिति में कैसे ढलना है वो हम अपनी माँ से ही सीखते हैं। कठिन परिस्थितियों का कैसे सामना करना है, कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं है, वो माँ की बताई हुई बातें, माँ की बताई हुई सीख ही हमें उन कठिन परिस्थितियों से निकालती है। माँ की जो दुआओं का असर होता है वो आठ पहर रहता है। इंसान को अपनी तहजीब से जोड़ने का काम माँ ही करती है। माँ ही पहली गुरु होती है, माँ उसकी पहली गाइड है। माँ उसे बताती है कि कैसे बोलना है, कैसे चलना है, समाज में कैसे उठना बैठना है, कुरीतियों से कैसे बचना है, अच्छाई के साथ कैसे अपना सामंजस्य बिठाना है। बच्चा बोलना ही माँ से सीखता है। माँ अगर बोले तो माँ बच्चे की जड़ों का काम करती है। परवरिश, पालन पोषण इंसान की जड़ें होती हैं, और उसकी जड़ें तभी मजबूत होती हैं जब वो माँ के साए में इन चीज़ों को तसल्ली के साथ, धैर्य के साथ सीखता है। बाद में पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, उसकी डालियाँ कितनी भी बड़ी फैल जाएं, उसकी शाखें कितनी भी दूर तक चली जाएं, लेकिन जो परवरिश बच्चे की बचपन में हुई होती है फिर उसको ताउम्र नहीं बदला जा सकता। इसलिए हमें हमेशा अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। जीवन के इन कठिन राहों में चलने की जो शिक्षा हमें हमारी माँ ने दी है, उसके लिए हमें हमेशा अपनी माँ का धन्यवाद करना चाहिए, माँ का कृतार्थ होना चाहिए। और एक और गीत शामिल करते हैं।

जी बिल्कुल, धरती पर विधाता की जो पहचान है वो हमारे माता पिता ही हैं और हमें हमेशा इनका आदर और सत्कार करना चाहिए। और जैसे कि आज मातृत्व दिवस हम मना रहे हैं, तो सभी माताओं और बहनों को एक बार फिर से इस मातृत्व दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि माँ होने का अर्थ बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं है, उनको जीवन की परिस्थितियों से लड़ना सिखाना है, हौसले की बेल को हमेशा बढ़ाना सिखाना है। इसी उम्मीद के साथ आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न करने की लेते हैं अपने श्रोताओं से अनुमति और बोलते हैं उनको नमस्कार।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक यात्रा के दौरान बेंगलुरु पहुंच गए हैं और वे इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: पहली वर्षगांठ मनाई है, और कल सुबह 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा। वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं। मैं आज आपके बीच बंगलुरु की इस धरती से माता अन्नम्मा उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
0: बाद में प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ

0: अपना है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय अब से कुछ देर में चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा।
1: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। श्री रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। तिरुपति में आज संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में सफल और शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर बाद 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है लघु वार्ता।

लघु वार्ता में आज का विषय है 90 वर्षों के रंग आकाशवाणी के संग। आकाशवाणी यानी कि रेडियो। रेडियो हमारे जीवन में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक सस्ता, सुलभ और भरोसेमंद माध्यम है। यह बिना स्क्रीन के दूसरे काम करते हुए भी सुना जा सकता है। समाचार, संगीत, ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों और आपदा के समय त्वरित जानकारी के लिए रेडियो अत्यंत उपयोगी है, जो सुदूर ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंचाया जा सकता है। हमारे जीवन में रेडियो का बहुत अधिक महत्व है। अगर इसकी प्रमुख बातों के बारे में ध्यान अपना आकर्षित करें तो यह एक सुलभ और सस्ता माध्यम है। ये आम आदमी के लिए सबसे किफ़ायती मनोरंजन और जानकारी का साधन है, जिसके लिए साक्षर होना भी ज़रूरी है। शिक्षा और जागरूकता में रेडियो अपनी अहम भूमिका निभाता है। साथ ही रेडियो मनोरंजन का एक बेहतरीन साधन है। संगीत, रेडियो नाटक, कहानियाँ और चुटकुले हमारे दिन भर की थकान को दूर करने

और मनोरंजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में रेडियो एक बेहतरीन सहारा है। प्राकृतिक आपदाओं या संचार के अन्य साधन जब ठप होने लगते हैं तो रेडियो ही अपनी सूचना, अपने माध्यम से सूचना लोगों तक पहुंचाता है। रेडियो एक एकमात्र ऐसा साधन है जिससे सूचनाएं विश्वसनीय और आम जनता के लिए लाभदायक होती हैं। रेडियो एक मल्टीटास्किंग सोर्स है, यानी कि रेडियो सुनते हुए व्यक्ति अपने दूसरे काम भी कर सकता है। इसको देखने की नहीं बल्कि सुनने की जरूरत होती है, और इंसान सुनते हुए कई तरह के कार्य भी कर सकता है। रेडियो आज भी डिजिटल युग में अपनी प्रासंगिकता और भरोसेमंद के लिए जाना जाता है।

एक सदी से भी अधिक समय से हम रेडियो का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। रेडियो संचार का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। इंटरनेट के बिना भी विशाल दूरियों पर संपर्क स्थापित करना संभव हो पाया है सिर्फ रेडियो की वजह से।

रेडियो हमारे जीवन में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक बहुत ही सस्ता और सुलभ और भरोसेमंद माध्यम है, जिसको हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं और दिन ब दिन ये अपनी जगह को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता जा रहा है।

इंटरनेट के बिना भी रेडियो का आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। रेडियो ने आज भी अपनी प्रासंगिकता इस इंटरनेट के दौर में बनाई हुई है। कई तरह की दूरियों पर रहते हुए भी हम आज भी रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं और कई तरह की सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं, सुन सकते हैं।

रेडियो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिजिटलीकरण के इस दौर में इंटरनेट संचार और सूचना प्राप्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जरिया है रेडियो। इस क्रम में ऐसा प्रतीत होने लगा है कि रेडियो की आवाज़ दबकर रह जाएगी, लेकिन रेडियो अपनी अंतर्निहित विशिष्टताओं के कारण निरंतर जन जन तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने के क्रम में एक प्रासंगिक माध्यम के रूप में हमारे समक्ष मौजूद है और हमारे समक्ष हमेशा मौजूद रहेगा।

शहरों में निश्चित रूप से लोग टेलीविज़न और दूसरे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन कस्बों और गांवों में आज भी रेडियो सुना जाता है। जहां सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, यातायात के साधन नहीं हैं, वहां भी रेडियो उपस्थित है, सस्ता है, सुलभ है और सुविधाजनक है। जिनके पास अक्षर ज्ञान नहीं है, वे अखबार नहीं पढ़ सकते, लेकिन रेडियो सुन सकते हैं। जो लोग अपनी दृष्टिहीनता के कारण ना तो अखबार पढ़ सकते हैं, ना ही टेलीविज़न देख सकते हैं, रेडियो उनका भी साथी है और पथ प्रदर्शक की तरह काम करता है। तीसरी दुनिया के देशों में रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जिसे वास्तव में जन माध्यम कहा जा सकता है। रेडियो श्रोताओं को साथ लेकर चलता है और वो उनकी बुद्धि, सोच और कल्पना शक्ति पर भरोसा करता है और उन्हें विस्तार और सोचने की खुराक भी देता है। कई बार हम सभी के मन के ताने बाने के अनुरूप हमारे मिजाज में एक ऐसा एकाकीपन जरूर आता है जब हम गज़लों के मखमली आवाज़ को सुनकर उसे गुनगुना कर उस वक्त को बिताना चाहते हैं, तो ऐसे में रेडियो ही हमारा साथ निभाता है। कहने का तात्पर्य है कि रेडियो हमें मनोरंजन भी करवाता है, हमारे मनोरंजन का बेहतरीन साधन है रेडियो। चाहे किचन में काम करती हुई महिलाएं, रातों में पहरा देते चौकीदार, सीमा पर देश की रखवाली करते हुए जवान, या दफ्तर से घर आने जाने के दौरान ट्रैफिक में फंसे लोग हों, उनका रेडियो एकमात्र हमजोली है, रेडियो ही उनका साथ निभाता है। रेडियो द्वारा श्रोताओं को अपने कार्यस्थल से लेकर विश्व के किसी भी हिस्से में घट रही घटनाओं और हो रहे परिवर्तनों की जानकारी रखने का त्वरित अवसर प्रदान होता है।

रेडियो दृश्यहीन माध्यम होने के कारण ही लोगों की कल्पना शक्ति को संपन्न करता है। ये अपने ध्वनि प्रभाव के माध्यम से मानव की मानसिक क्षमता को जागरूक कर दृश्यों के निर्माण को संभव करता है। इसलिए रेडियो को कल्पना शक्ति कौशल की संज्ञा भी दी गई है। आज की लघु वार्ता में इतना ही। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 10:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए देशभक्ति फिल्मी गीत।

देशभक्ति वो है जो हमें देश के प्रति समर्पण का भाव सिखाती है। देशभक्ति हमारी बातों में ही नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में भी होनी चाहिए। देश के प्रति समर्पण, योगदान एक देश को महान बनाता है, एक देश को संपन्न बनाता है।

जी, दलेर मेहंदी की आवाज़ में भी आपने गीत सुना। फिल्म थी रंग दे बसंती, और इसी गीत के साथ आज का देशभक्ति फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न करने की लेते हैं अपने श्रोताओं से अनुमति और बोलते हैं उनको नमस्कार। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग।

लोकरंग कार्यक्रम सुनने वाले असांदे सारियां श्रोतियां जो बबीता दी प्यार भरी राम राम। दिखा जे मौसम भी बदली करा दा, कदी ठंड हो दी कदी धुप्पा हो दा, कने जालू जे मौसम बदलदा तालू असां जो अपनी सेहती दा खास ख्याल रखने दी जरूरत हो दी। क्योंकि दिखा काली काली धुप्पा हो दा तां अहां गर्मियां च बैठी आ दे, अहां पंखा चलाई लै दे, कने जालू जे बरखा हो दी तालू ठंड बधी आ दी, तां इस ते जालू भी मौसम च परिवर्तन आंदा, बदलाव आंदा, तां अहां दे शरीर च भी बदलाव आंदा। तां मौसम दे साबे ने अपनी सेहती दा रखना ध्यान। कने सारे ते पहले असां सुनना है मिठड़ा जिहा लोक गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

श्रोताओं, इसी लोक गीता सौगी अज दा लोक रंग कार्यक्रम संपन्न करने दी लैंदे अपने श्रोतियां ते अनुमति, कने बोल दे राम राम। आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम आज सुबह 11 बजे घोषित कर रहा है। बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा। इस बार मार्च माह में 93,564 विद्यार्थियों ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। विद्यार्थी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 10वीं की परीक्षाएं 3 से 29 मार्च तक आयोजित की गई थी। परीक्षा का आयोजन 384 केंद्रों पर हुआ था। दिल्ली से शिमला के लिए हवाई सेवाएं आज से दोबारा बहाल हो रही हैं। ये सेवाएं मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित की जाएंगी। इसके अलावा

लेकिन सपना वही पूरा होता है जिसके लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं। भाव उकेरें जब कभी ये सपने घेरें, जगाते सपने एक विवेक, ये तो रखते सचमुच टेक। तो बच्चों, आप भी रोज सपने देखिए, पर सपनों को पूरा करने की हिम्मत भी रखिए। अब देखिए, इतनी बड़ी ज़िंदगी है तो परेशानियाँ तो आती ही हैं और आती ही रहेंगी, तो हमने परेशानियों से घबराना नहीं होता है, परेशानियों से सीख लेनी होती है, मुसीबतों को समझना होता है और फिर एकजुट होकर अपने आत्मविश्वास को एकत्रित करके फिर से आगे बढ़ना होता है। और हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी कहानी आपके साथ साझा करते हैं। कहानी तो मुझे लगता है सबने सुनी ही होगी। ये कहानी है कि किस तरह से एक बांसुरी वाले ने राजा को सबक दिया। जी, पहाड़ों के बीच बसे एक गांव में लोग बहुत खुश रहते थे। पहाड़ों के बीच में बसा था ये गांव। बाजारों में मिठाइयों की खुशबू और गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी। लेकिन एक दिन गांव में हजारों चूहे आ गए। वे घरों में घुसकर अनाज को नुकसान पहुंचाते और कपड़े कुतर देते और लोगों को परेशान करते। किसान और दुकानदार तो बहुत ही परेशान थे, दुखी हो गए थे और बच्चे जो थे वो डरने लगे थे। तभी जो गांव का राजा था उसने घोषणा की कि जो भी गांव के चूहों को बाहर निकालेगा, गांव को चूहों से बचाएगा, उसे सोने की 100 मुद्राएं दी जाएंगी। कई लोग कोशिश करके हार गए और कईयों ने तो कोशिश की ही नहीं। तभी एक दिन एक मुसाफिर गांव में आया। उसके हाथ में चमकती हुई बांसुरी थी। उसने कहा, मैं चूहों को यहाँ से भगा सकता हूँ और देखिए कैसे भगाता हूँ। लोग उसकी बात सुनकर हंस पड़े, लेकिन राजा ने उसे मौका दे दिया। अगली सुबह मुसाफिर ने बांसुरी बजाना शुरू की। उसकी मीठी धुन सुनते ही सारे चूहे अपने बिलों से बाहर आ गए और उसके पीछे पीछे चलते हुए जंगल की ओर चले गए और फिर लौट कर नहीं आए। गांव वाले बहुत खुश हुए, लेकिन राजा ने बांसुरी वाले को इनाम देने से मना कर दिया। भाई, अब राजा ने मना क्यों किया? क्योंकि राजा ने तो वादा किया था कि जो गांव से चूहे भगाएगा उसको वो 100 मुद्राएं इनाम में देगा। दुखी होकर मुसाफिर ने फिर बांसुरी बजाई और इस बार चूहे उसकी धुन पर उसके पीछे चल पड़े और ये देखकर राजा घबरा गया, कहीं चूहे दोबारा से वापस गांव में ना आ जाएं। तभी राजा ने तुरंत उस मुसाफिर से माफ़ी मांगी और उसे पूरा इनाम दे दिया। तो बच्चों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो वादा करना चाहिए उसको ज़रूर निभाना चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ा जो हमारा धन है वो है ईमानदारी। अब बांसुरी वाले ने ईमानदारी दिखाई तो राजा को भी ईमानदारी दिखाने की ज़रूरत थी और आखिरकार राजा ने अपने वादे को पूरा किया, इसे निभाया। तो हमें भी इससे ये सीख लेनी चाहिए कि हमारे पास जो भी टैलेंट है, जो भी गुण है, उसे हमें और निखारने की कोशिश करनी चाहिए और इससे हमें लोगों की मदद करनी चाहिए और जो वादा हम करते हैं उसे पूरा भी करना चाहिए, लेकिन ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहिए। और हम भी आपकी गाना सुनने की जो ख्वाहिश होगी उसको पूरा करते हैं और कार्यक्रम में शामिल करते हैं ये गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: स्वागत है एक बार फिर से नन्हे नन्हे बच्चों का बालमंडल कार्यक्रम। इस समय नन्हे नन्हे बच्चे सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से FM बैंड 101.8 MHz पर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपके साथ साझा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लेशियर के बारे में कि ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर बर्फ़ के धीमी गति से सरकते बहुत ही बड़े विशाल भंडार होते हैं। वे बहुत ऊंची पर्वतीय घाटियों में पाए जाते हैं। इन घाटियों में सर्दियों में बर्फ़ की एक के बाद एक परतें पड़ती जाती हैं और वर्ष दर वर्ष मोटी होती जाती हैं। लगातार बढ़ता दबाव

इसे बर्फ़ के ठोस पिंड में बदल देता है और फिर ये बहुत धीरे धीरे घाटी में नीचे सरकना शुरू कर देता है। ऐसे ग्लेशियर लगभग 2 मीटर प्रतिदिन की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। ऊंचे आकांक्षों में ध्रुवों के नज़दीक ग्लेशियर बहुत बड़े और विशाल भूभाग पर फैले होते हैं। उदाहरण के लिए अंटार्कटिका एक विशाल महाद्वीपीय ग्लेशियर से ढका है जो कुछ स्थानों पर 4000 मीटर की ऊंचाई पर भी पहुंच जाता है। ग्रीनलैंड महाद्वीपीय ग्लेशियर का एक दूसरा उदाहरण है। ग्लेशियर बर्फ और हिम की नदियों की तरह होते हैं। जब वे घाटी में नीचे की ओर सरकते हैं और समुद्र या झील तक पहुंचते हैं, उनके सिरे टूट जाते हैं और पानी में तैरने लगते हैं और हिमशैल बन जाते हैं। तो बच्चों, ये थी जानकारी ग्लेशियर क्या होते हैं। बर्फ़ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं ग्लेशियर। और अब हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे भोजन करने के सलीके के बारे में। आप सब भोजन तो करते ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियाँ होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें भोजन करते वक्त ध्यान में रखनी होती हैं। चाहे हम बाहर खाना खा रहे हों या घर पर, चाहे हम पूरे परिवार के साथ या किसी दोस्त के घर खाना खाने गए हों, हमारे लिए एक अच्छे टेबल मैनर्स सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भोजन कैसे किया जाता है, ये भी एक जीवन का सबसे बड़ा सलीका है जो हमारे शिष्टाचार को दर्शाता है। इसलिए आपको खाने के सही तरीके और टेबल पर खाने के दौरान किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। कई बार चबाने के तरीके, चम्मच पकड़ने या खाना गिराने जैसी आदतों की वजह से कपड़े तो ख़राब होते ही हैं, साथ ही लोगों के सामने शर्मिंदगी भी हमें महसूस होती है। खाने के टेबल पर आने से पहले हमें हमेशा हाथ मुंह धो लेने चाहिए। टेबल पर बैठने के तरीके के बारे में हमें हमेशा पता होना चाहिए कि टेबल पर हमेशा पीठ सीधी करके बैठना चाहिए। इसके अलावा पैरों को हिलाने या हाथों को दूसरे की जगह पर हमें नहीं रखना चाहिए। हमेशा टेबल पर अपनी बारी आने का इंतज़ार हमें करना चाहिए, न कि खाना लेने की जल्दबाजी करनी चाहिए। हमें हमेशा सब्र से अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए और दूसरों को भी सम्मान देना चाहिए। भोजन शुरू करने से पहले हमें हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। क्यों बच्चों, करते हैं ना आप? बिल्कुल ठीक ढंग से बर्तन और चम्मचों का उपयोग करना भी हमें सीखना चाहिए। खासकर चम्मच से कैसे खाना चाहिए, ये हमें ज़रूर सीखना चाहिए। अगर सभी के साथ खाना खाने बैठे हैं तो सभी लोगों के खाना शुरू करने के बाद ही हमें खाना खाना चाहिए, और जब सभी खाकर उठें तभी हमें उनके साथ उठना चाहिए। खाना खाते समय मुंह बंद करके खाना चबाना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आदत है। हमें मुंह खोल के कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, और साथ ही मुंह भरकर खाने से भी हमें परहेज़ करना चाहिए। और साथ ही सबसे ज़रूरी बात, हमें छोटे छोटे टुकड़े करके खाना खाना चाहिए। तो बच्चों, ये थी कुछ बातें कि हमें सही तरीके से भोजन कैसे करना चाहिए। ज़रूर आपने इससे कुछ सीखा होगा, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में इन तरीकों को अपनाते भी होंगे। और अब हम भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे एक गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी, बाल मंडल कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से FM बैंड 101.8 MHz पर। और अब कार्यक्रम में थोड़ा सा समय रह गया है, तो अब नन्हे नन्हे बच्चों से हम पूछेंगे कुछ पहेलियाँ। जी, दो अक्षर का मेरा नाम, करती कभी नहीं आराम, मुझे देख सब मेहनत करते, झट से बोलो मेरा नाम। जी, तो सोचिए बच्चों, क्या हो सकता है इसका उत्तर। अगली पहेली है, बतलाओ ऐसी दो बहनें, संग हंसती संग गाती हैं, उजले काले कपड़े पहने, पर मिल कभी न पाती हैं। जी, बतलाओ ऐसी दो बहनें, संग हंसती संग गाती हैं, उजले काले कपड़े पहने, पर मिल कभी न पाती हैं। तब तक आप इन पहेलियों के उत्तर सोचिए, तब तक हम आपको जानकारी देते हैं प्लास्टिक मनी के बारे में कि प्लास्टिक मनी होती क्या है। प्लास्टिक मनी आम तौर पर क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड कोई 3.25 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा प्लास्टिक का बना कार्ड होता है, जिससे हम सामान खरीद सकते हैं या कोई वित्तीय लेन देन पूरा कर सकते हैं। आपने देखा तो होगा ही बच्चों, जब आप बाज़ार जाते होंगे अपने मम्मी पापा के साथ, तो वो एक कार्ड यूज़ करते हैं जब भी पैसे देने होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड या फिर प्लास्टिक मनी। ये कार्ड आपको अपने बैंक से या फिर सुपर स्टोरों से या दूसरे उधार देने वाली कंपनियों से मिल सकते हैं। कार्ड देने वाली कंपनी उपभोक्ता को किसी भी भुगतान के लिए उधार देती है और उपभोक्ता को हर महीने उधार की राशि चुकानी पड़ती है। अगर आप समय से ऐसा न कर पाएं तो आपको उस पर ब्याज भी देना पड़ता है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको जेब में नकदी लेकर यानी कि कैश लेकर घूमना नहीं पड़ता, और आप इंटरनेट पर इसका उपयोग करके कोई भी भुगतान कर सकते हैं। जी, तो ये थी प्लास्टिक मनी, और अब हम आपसे पूछते हैं पहेली के बारे में। देखिए, दो अक्षर का मेरा नाम, करती कभी नहीं आराम, मुझे देख सब मेहनत करते, झट से बोलो मेरा नाम। बिल्कुल, आपने उत्तर तो सोच ही लिया होगा। इसका उत्तर है, बताइए, घड़ी। इसका उत्तर है घड़ी। दो अक्षर का मेरा नाम घड़ी, और पूरा दिन ये काम करती है और हमें भी प्रेरित करती है कि हमें भी काम करना चाहिए। समय पर अपने हर काम को जब हम पूरा करते हैं तो हमें खुशी होती है। और देखिए, जब भी आप अगर टाइम टेबल बनाते होंगे तो घड़ी को सामने रख के बनाते होंगे कि मैंने कब पढ़ाई करनी है, कब खेलना है और कब आराम करना है। तो बच्चों, इस पहेली का उत्तर है घड़ी। दूसरी पहेली आपसे पूछी थी, बतलाओ ऐसी दो बहनें, संग हंसती संग गाती। बिल्कुल, एक साथ ही वो हंसती हैं, एक साथ गाती हैं, उजले काले कपड़े पहने, पर मिल कभी ना पाती। बिल्कुल, मिल नहीं पाती वो कभी भी। और एक छोटी सी और हिंट इसके बारे में अगर दूं तो ये है, देखिए, जब वो जो दो बहनें हैं वो पूरा संसार देखती हैं, पूरे संसार का वो आनंद लेती हैं, और संग ही हंसती हैं संग ही गाती हैं और संग ही रोती भी हैं। तो बिल्कुल, इसका उत्तर तो आपने गैस कर ही लिया होगा। इसका उत्तर है हमारी आँखें। बिल्कुल, तो बच्चों, ये था आज का बाल मंडल कार्यक्रम, जिसमें हमने आपके साथ रोचक जानकारियाँ साझा की, एक छोटी सी कहानी भी साझा की, साथ ही पहेलियाँ भी आपसे पूछी। और अब कार्यक्रम का जो समय है बिल्कुल संपन्न होने को आया है, तो इन्हीं जानकारियों

0: नन्हे मुन्ने बच्चों का अपना कार्यक्रम बाल मंडल। नन्हे मुन्ने बच्चों का अपना कार्यक्रम बाल मंडल।
1: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

देश की आन, देश की शान, देश के वीर जवान, सैनिक भाइयों जय हिंद। कार्यक्रम सैनिकों के लिए लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो हमसफर बबीता। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत के साथ।

जी, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में भी आपने गीत सुना, फिल्म थी मन। कार्यक्रम सैनिकों के लिए समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से FM बैंड 101.8 MHz पर।

जी, राजा हिंदुस्तानी फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। गायक कलाकार थे उदित नारायण। सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। अनेकता में एकता मेरे देश की पहचान है, अनेकता में एकता मेरे देश की पहचान है, इसलिए मेरा भारत देश महान है।

जी, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म थी प्यार किया तो डरना क्या। कार्यक्रम में अगला गीत शामिल कर रहे हैं फिल्म जब वी मेट से। गायक कलाकार हैं शान और साथी।

सैनिक भाइयों, जब वी मेट फिल्म के इसी गीत के साथ आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम संपन्न करने की लेते हैं आपसे अनुमति और बोलते हैं जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजने को है। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। इसी दौरान 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार कांक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: भारती पर कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

नमस्कार। दिन का 1 बजे का वक्त और एक सुरीला सा सफर शुरू होने का समय, कितना मिलता जुलता है ये समय। और इसी समय को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। राजुल है आज आपके साथ इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है सुरीला सफर में। तो सुरीले सफर की शुरुआत करने से पहले हम बता दें कि आज जो हमने इबारत पोस्ट की है वो कुछ इस तरह से है, वाक्यांश की समय का बैकग्राउंड संगीत हर पल बदलता रहता है और उसकी धुन पर दुनिया का मेला बिगड़ता सवरता है। समय के लिखे गीत में कभी ख्वाबों के सिलसिले गुनगुन करते हैं तो कभी वीराने, कभी मिलन के स्वरों में बहार की पायल झनक उठती है तो कभी तन्हाई के स्वर गूंज जाते हैं। उसके गीतों में माँ की मीठी लोरी होगी या अपने लिए जीने का सबक, दिल मिलने का नगमा होगा या मिलकर घबराए दिल का फसाना। वो कब कौन सा तराना छेड़े वो ही जाने, बस उसके सुर में सुर मिलाकर चलती रहे जिंदगी और हर कदम करती रहे एक नए गीत का इंतजार। तो यह है आज की इबारत और इसमें से आपको शब्द सोचने हैं कि कौन से शब्द हो सकते हैं आज के कार्यक्रम में जिन पर गीत सुनवाया जा सकता है। वैसे काफ़ी श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही कयास लगाया है, क्या बात है। वैसे आपने जो शब्दों का सिलसिला छेड़ा है उसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की इबारत बहुरंगों से सजी है, कई शब्द बहुत सुंदर बन रहे हैं और बहुत मज़ेदार गाने होने वाले हैं आज। इन्होंने कुछ गानों की बारे में भी जिक्र किया है। एक और साथी ने कहा है कि अब तक के मानस पटल पर गद्य के पढ़ते ही इतने गीत याद आ गए हैं और इससे अधिक भी हो सकते हैं। यद्यपि बजने 4-6 ही हैं और देखिए इनमें से कौन सा गीत है जो इस कार्यक्रम का हम सफर हो सकता है। पर आपके गीतों का हमने इंतजार किया, एक आधी गीत दिखा सारे

जीने का दिल नगमा फसाना कौन सा वो ही जाने सुर चलती रहे जिंदगी इंतजार। इन्होंने तो बहुत सारे शब्द बता दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारा रोजमर्रा का जीवन संगीत की रेखा और रंगों के अलाप से शुरू होता है। स्वरों के समन्वय को लेकर कल्पना का खेल चलता रहता है। हम तन्हाई में हो या वीराने में बहार की पायल तो झनकती ही रहती है। सोचिए वे गीत कितने मधुर और मीठे होते हैं जिसके एक एक शब्द में माँ की मीठी गूंज बसी हो। माँ की गोद में लोरी की तान जैसे साज और साजिंदे एक जान एक सुर हो जाते हैं। ये अनंत यात्रा है जहाँ दिल से दिल मिलाकर सुरों के साथ चलते हुए हर कदम पर संगीत की विविधता और मिठास बिल्कुल माँ के आंचल की तरह प्यारी और पूर्णमय। क्या बात है, कितना खूबसूरत मैसेज। और आज अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे भी मनाया जा रहा है, मातृ दिवस मनाया जा रहा है, और बहुत सारे श्रोताओं ने शुभकामनाएं भी भेजी हैं। हमारे एक श्रोता कह रही है कि आज के अर्थपूर्ण गद्यांश के लगभग सभी शब्द चुने जा सकते हैं, लेकिन एक शब्द बिना झिझक चुन रही हूँ, वो है माँ और लोरी, क्योंकि आज मातृदिन है तो इन दोनों का वात्सल्य भरा जिक्र होना ही चाहिए, है ना? बिल्कुल होना चाहिए। और एक और श्रोता ने कहा है कि समय वक्त बड़ा बलवान होता है। समय को हम धीरे धीरे चलने को कहते हैं तो भी वो अपनी ही चाल में चलता है। जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, इसे ना हम बदल सकते हैं ना आप। हा हा हा, क्या बात है। ये तो बस आनंद का संवाद नहीं, हकीकत है। हमें तो शाम गम काटनी है, जिंदगी अपनी जाने वो कैसे लोग हैं जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, नसीब में जिसके जो लिखा है वो ही मिलेगा। आज तो हमें उन गीतों का सुरीला सफर पूरा करना है जो मैं चाहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी फरमाइश, जो आपने गीत चुने हैं उनमें से भी कई सारे गीत शामिल हैं। तो अब बातों से बढ़कर गीत की तरफ चलते हैं। देखिए तो जरा कौन सा गीत पहला बना है। और हाँ, एक सवाल है। सवाल कुछ यूं है कि जो समय है उसकी उपस्थिति देखने के लिए घड़ी बनी, और एक वक्त था जब उसे सही तरह से देखने की भी ट्रेनिंग होती थी घर पर, जिसमें अक्सर जो सबसे मुस्तैद शिक्षक होती थी वो होती थी हमारी माँ। अब तो खैर डिजिटल घड़ियों का जमाना है, और आपको ये बताना है कि आपको पहले पहल घड़ी से परिचित किसने करवाया था, और वो डिजिटल घड़ी थी या घंटा मिनट सेकंड बताने वाली सुइयों वाली घड़ी थी, ये बताइए। और ये गाना सुनिए, बताइए कि प्रमुख कलाकार कौन है।

तो भाई जीवन का पहिया चल रहा है और इस संगीत को सुनने का आनंद लेते रहिए, ये हमारे एक साथी कह रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही है आपने और सही जवाब भी आ गया है कि ये गाना रामपुर का लक्ष्मण का है, जिसमें रणधीर कपूर और रेखा दिखते हैं। और घड़ी के बाबत जो हमने पूछा था तो उसका जवाब सिर्फ यही आया है कि पिताजी के पापा ने सिखाई थी घड़ी देखना, सूर्य घड़ी थी वो। संदेश अब मुझसे खो गया है और मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, सूर्य वाली घड़ी थी और पहला परिचय घड़ी से मेरे पापा ने करवाया था। तो भाई आप भी अब बताइए ना कि घड़ी से पहला परिचय किसने कराया था। और अब बात जब हो रही है इबारत की, तो अगला शब्द जो बन रहा है, समय पर तो बात बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने की है और दुनिया की भी बात है, क्योंकि दुनिया जो है वो गोल तो है और कहीं ना कहीं हमारे रास्ते भी मिल जाते हैं। ये गीत भी हो सकता है, लेकिन कौन सा गीत आने वाला है ये सोचिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि समय हर पल बदलता रहता है, जिंदगी उसी के अनुसार चलती रहती है। ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनकार, तन्हाई, माँ की लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर में सुर मिला के चलते जाना है, यही है जिंदगी। और कुछ गानों का भी जिक्र किया है हमारे इन साथी ने। निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण की मूरत, माँ सभी को मातृ दिवस की बधाई और शुभकामनाएं, ऐसा हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं। परिवर्तनशीलता और उसकी अनिश्चितता और समय की परिवर्तनशीलता, उसकी अनिश्चितता और जीवन पर उसके गहरे प्रभाव का एक बहुत ही काव्यात्मक और दार्शनिक चित्रण है आज की इबारत। समय ऐसा संगीतकार है जो लगातार धुन बदलता रहता है। दुनिया का मेला इसी धुन पर बिगड़ता संवरता है। समय का गीत कभी सपनों की गूंज है तो कभी निराशा का वीराना। आशा और निराशा से इन्होंने मिलाया है, बिल्कुल सही बात है। आशा और निराशा भी होती है जब कुछ मिलता है या जब कुछ खो जाता है। ये भी कहा है कि ये जीवन के द्वंद्वों, मिलन और जुदाई, बहार और खामोशी की धुन छेड़ता रहता है। ये माँ की लोरी जैसा ममतामयी भी हो सकता है और आत्मसंघर्ष का प्रतीक भी हो सकता है। और भी कुछ बातें लिखी हैं, शब्द बताए हैं, समय हर पल सिलसिले, ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनक, तन्हाई, माँ, लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर हो सकते हैं। वाह, क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय के साथ बदलते संगीत की बात कितनी सही है। वाह, बिल्कुल सही है। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम से जुड़कर आप बराबर अपने फीडबैक्स देते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि कैसा लगता जा रहा है ये सफर। तो अब दुनिया के बारे में क्या कह रहे हैं।

बदली बदली सी इस दुनिया का ये जो राग है, ये किस फिल्म का है ये आपको बताना है। और घड़ी को लेकर बहुत सारे संदेश आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं कि हमारे पास पहले घड़ी जो थी उसमें चाबी दी जाती थी, यानी चाबी भरी जाती थी और दीवार पर टांगी जाती थी। लंबी घड़ी हुआ करती थी जिसमें कि हर समय घंटे के ऊपर आवाज आती थी टन टन की। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमें हमारी बड़ी बहन ने घड़ी में समय देखना सिखाया था। और एक और श्रोता ने कहा है, ये संदेश पढ़ लेती हूँ, ये घड़ी से अलग है लेकिन कार्यक्रम के बारे में है। मुझे कई बार लगता है कि आप लोगों के टेक्स्ट और प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी है। बुरा ना माने पर टेक्स्ट कुछ वेग सा लगता है, वैसे कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, टेक्स्ट को लेकर अगर आप उसके भाव पर जाएंगे तो आपको शायद उसी के हिसाब से, अगर आप प्लेलिस्ट के बारे में सोच रही हैं तो वो तो नहीं है। हाँ, उस टेक्स्ट में से आप जो बातें हो रही हैं उन बातों में हिस्सा लीजिए और कार्यक्रम में उस शब्द को चुनकर, जो बहुत ही खास शब्द दिख रहा है उसको चुनकर अपनी पसंद का गीत सुनिए। अगर आपकी पसंद इस प्लेलिस्ट से मिलती है जो कि गाने हमने चुने हैं आज के इस इबारत से। हाँ, घड़ी के बारे में एक और संदेश है। मेरे दादाजी ने मुझे सुइयों वाली घड़ी लाकर दी थी। सबसे पहले 1984 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने पर घड़ी मिली थी। क्या बात है, समय की और घड़ी की बात हो रही है। 1975 में नौकरी कर 250 रुपए पहली बार कमाए और 245 रुपए की GMT सोना घड़ी लेकर हाथ में बांध कर समय देखा, जिसमें सेकेंड मिनट घड़ी घंटे के कांटे होते हैं। जी हाँ, पहले तो ऐसी ही घड़ी होती थी। एक और साथी बता रहे हैं कि मेरे को घड़ी देखना मेरे बाबूजी ने और बड़े भैया दोनों ने एक बार में सिखाया था। और ऐसे ही परीक्षा लेने के लिए थोड़ी देर बाद पूछा कि बता घड़ी में अभी कितने बजे हैं। मैंने घड़ी देखी और बोला 1:30 बजे हैं। तब बाबूजी ने समझाया कि अभी 1:30 बजे हैं। शुद्ध हिंदी में 1 और 2 के साथ जब आधा जोड़ा जाए तो 1.5 और 2.5 कहा जाता है। जी हाँ, ये 1:30 1:2 का चक्कर जो है ये कई बच्चों के साथ होता है। एक और श्रोता कहते हैं कि पहले के जमाने में चाबी वाली गोल अलार्म घड़ी घड़ी थी। सबसे पहले मेरे दादाजी ने उसे घड़ी में समय कैसे देखा जाता है ये सिखाया था। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि बचपन में मेरी माताजी ने मुझे मुंबई से घड़ी लेकर दी थी और पहचान कराई थी, जिसमें सुइयां थी और चाबी रोज घुमाना होता था। पेंडुलम वाली बड़ी घड़ी थी, ये भी एक साथी ने बताया है। और एक और श्रोता कह रही है कि सबसे पहले मुझे घड़ी की पहचान मेरे नाना जी के घर दीवार पर एक ब्लैक घड़ी लगी थी, वो टिक टिक करती थी और जब घंटा होता तो तेज आवाज में टन की आवाज होती, तब मेरे नाना जी ने समय देखना सिखाया था। क्या बात है, समय की कितनी सारी यादें ताजा हो गई। और बात आज माँ की भी हो रही है, घड़ी की भी हो रही है, समय की भी हो रही है। और जो समय है वो जिस तरह सबसे बड़ा शिक्षक होता है उसी तरह माँ भी होती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? और ये गीत सुनकर बताइए किस फिल्म का है।

भाई हमारे साथियों ने तुरंत ही कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो गाना सुनकर ही समझ में आ गया है कि गीत गाता चल फिल्म का गाना है। बिल्कुल, जसपाल सिंह और साथियों की आवाजें हैं, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। बहरहाल आसान सवाल भी रहने चाहिए जिंदगी के इस सुरीले सफर में, क्योंकि कभी कभी आसान सवालों का भी दिल करता है। घड़ी से जुड़ी यादों के बारे में हमारी एक साथी ने शेयर की है अपनी बात। पुरानी घड़ी और बचपन का समय, बचपन की सबसे सुनहरी यादों में एक याद उस पुरानी घड़ी की है जो घर की मुख्य दीवार पर टंगी रहती थी। उसकी टिक टिक की आवाज़ सन्नाटे में भी एक संगीत की तरह महसूस होती थी। मुझे याद है स्कूल से घर आने के बाद मेरी पहली नज़र उसी पर जाती थी, ये देखने के लिए कि खेल का समय होने में अभी कितने मिनट बाकी हैं। क्या बात है। और एक और श्रोता कह रही है कि हमें तो अभी भी कुकू घड़ी ही सबसे अच्छी लगती है। क्या बात है भाई, घड़ियों के बारे में भी ये होता है कि कौन सी घड़ी कब मिली उससे भी बात होती है, जैसा कि हमारे इन श्रोता ने बताया है। सबसे पहले मुझे घड़ी मेरी सगाई के दौरान 21 साल की उम्र में मिली थी, वो जापानी घड़ी थी, बड़ी साइज और पीतल की चेन की थी और चाबी भरने वाली थी, तारीख भी दिखाती थी। हाँ, ये उस वक्त बड़ा चार्म होता था जब तारीख दिखाने वाली घड़ियां भी आ गई थी। एक और श्रोता ने बताया, सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी के मखमली स्वर संगीत से सजा संगीत सम्राट तानसेन का बेहतरीन गीत स्वर लता जी महेंद्र कपूर जी के स्वर में शैलेंद्र जी का लिखा सारगर्भित गीत। एक और श्रोता ने कहा है कि राजू जी, मेरी दादी माँ और नानी दोनों घरों में बड़ी पेंडुलम वाली घड़ी बैठक वाले कमरे में लगी थी और हर घंटे टन टन बोलती थी चाबी भरने वाली। फिर पापा लाए थे इलेक्ट्रॉनिक वॉल क्लॉक। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मुझे हमारे टीचर ने घड़ी में टाइम देखना सिखाया था और हमारे घर एक टाइम पीस होता था जो मेज पर रखा होता था और उसमें सुबह 4 बजे का अलार्म देकर सोते थे। हाँ, वो सुबह 4 बजे वाला अलार्म लगाने वाला किस्सा भी तो है। बताइए आप सब में से किसने किसने वो अलार्म लगाया है। और एक सवाल और है, ये बैकग्राउंड संगीत की बात जब हमने कही तो बताइए कि बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जिनका बैकग्राउंड संगीत बड़ा खींचने वाला होता है, आकर्षित करने वाला होता है और कई बार याद भी रह जाता है। क्या आपको किसी फिल्म का कोई बैकग्राउंड संगीत अभी तक याद है? हो तो हमें बताइए और जरा इस गाने को सुनकर बताइए कलाकारों के नाम।

वैसे एक श्रोता ने बताया है कि आज की भारत में कई ऐसे संकेत हैं जिनसे कुछ मुख्य शब्द उभरते हैं। मेरे हिसाब से आज के संभावित शब्द ये हो सकते हैं, समय, बैकग्राउंड संगीत, धुन, दुनिया, मेला, ख्वाब, सिलसिला, वीराना, मिलन, बहार, पायल, तन्हाई, गीत, माँ। आगे लिखा है, लोरी, सबक, दिल, नगमा, तराना, जिंदगी, इंतजार। एक और श्रोता कह रहे हैं कि यूं ही कट जाएगा सुरीला सफर कार्यक्रम का गीत नजर आएंगे इबारत को पढ़ने से। और ये ख्वाब के सिलसिले शब्द लेकर गीत

बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म के कलाकारों का नाम बताया, अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम हमारे ज्यादातर श्रोताओं ने लिखा है, जया भादुड़ी और संजीव कुमार भी थे इस फिल्म में। अब मदर्स डे की बात है तो हमारी एक श्रोता कहती हैं कि आज मदर्स डे भी है और आज विविध भारती पर घड़ी की बात, तो वो दिन याद आया जब मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी और उनकी दी हुई एक बहुत महंगी और रेयर घड़ी खो दी थी। बात उन दिनों की जब मैं स्कूल में थी, स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, बाहर बहुत तेज बारिश, पर उस दिन स्कूल जाना जरूरी था। माँ ने चलते चलते कहा आज घड़ी मत पहन कर जा, बारिश में खराब हो जाएगी। मैंने बात नहीं मानी और ना जाने कैसे वो घड़ी रस्ते में गिर गई। बहुत दुख हुआ, लगा माँ की बात को मानना चाहिए था। हाँ, माँ की बात हमेशा माननी चाहिए। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गणित विषय पढ़ते समय सचित्र अध्ययन किया गया था और घड़ी का ज्ञान तभी से है। विवाह में मिले घड़ी को इनके एक रिश्तेदार जो थे वो घड़ी देखने के बहाने कलाई से उतार कर ले भागे थे। अब घड़ी की पूर्ति गैजेट्स के रूप में मोबाइल और दीवार घड़ी भी है। क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि आज कलाई घड़ी कम पहनी जाती है क्योंकि मोबाइल फोन का चलन बढ़ गया है, मगर मैं हमेशा घड़ी पहनता हूँ। जी हाँ, घड़ी पर नजर रखने के लिए बहुत सारे लोग आज भी हमेशा कलाई में घड़ी पहनते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम की परिकल्पना बड़ी निराली और मनोरंजक है। इसके पहले कुछ बातें, कुछ गीत, बाद में गीतमाला के विषय में कई बार दोहराए जाते थे, फिर भी चाहे वो कलाकार से जुड़ी हो या किसी विषय पर हो जिससे रुचि कम होती जा रही थी, लेकिन अब एक इबारत देकर उसमें कुछ शब्दों पर आधारित गीत सुनाए जा रहे हैं और श्रोताओं को भी सहभागी बनाया जा रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कहती है कि राजू जी, बचपन में हमारे घर में अलार्म की घड़ी थी और उसके नंबर रात को चमकते थे, शायद रेडियम के थे। उस घड़ी का अलार्म बार बार सेट करने और सुनने में बड़ा मजा आता था, उसके कारण डांट भी मिलती थी। समय देखना तो माँ और पिताजी ने सिखाया। और हम घड़ी की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, तो कालखंड का कैसा बदलाव है वो अगले गाने में, लेकिन एक संदेश और है। हम छोटे भाई बहनों को हमारी दादी ने घड़ी देखना सिखाया था। वो हर एक घंटे बाद हमें पूछती थी अभी कितने बजे, अभी कितने बजे। जो सही जवाब देता था उसे चॉकलेट मिलती थी।

बैकग्राउंड संगीत वाले सवाल की बाबत हमारी श्रोता कह रहे हैं कि शोले फिल्म के बैकग्राउंड संगीत को सुनकर पहचान जाते हैं फट से, क्या बात है। अपनी एचएमटी के रिस्ट वॉच वाली चाबी वाली घड़ी को याद किया हमारे एक श्रोता ने, जो उन्होंने पहली तनख्वाह मिलने पर 1980 में ली थी और आज भी पहनते हैं। एक और संदेश है, आज समय घड़ी की बात हो रही है तो बचपन की घड़ी वाला एक बात याद आ गई। मेले में तरह तरह की घड़ी मिलती थी, दशहरे के मेले में हमने खरीदी और स्कूल में पहन के चली गई। उस समय घड़ी देखना आता नहीं था और ना ही इतने घर में घड़ी हुआ करती थी। सिर्फ एक बाबूजी के पास घड़ी थी एचएमटी की, बाद में एक अलार्म घड़ी माँ के पास देखी थी। मैं घड़ी पहनकर जब स्कूल गई तो हमारी दीदी जी ने कहा कि घड़ी पहन के आई हो तो बताओ कितना टाइम हुआ, और मैंने हंस के कहा कि ये तो नकली घड़ी है, कितना बज रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं था। पर मैंने स्कूल का टाइम 10 बजे तो मैंने बोल दिया 10 बजे, इनके स्कूल का टाइम होगा 10 बजे, और संयोग से वो घड़ी की सुई भी 10 पर ही थी। उन्होंने पूछा घड़ी देखना आता है, मैं बोली मैं नहीं, तो उन्होंने उन टीचर ने हमें घड़ी देखने सिखाया था। तब ज्यादातर घड़ियां रोमन लिपि में ही आती थी जो हमारे समझ में नहीं आती थी, अलार्म घड़ी रहती थी। जब मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम शुरू हो रहा था तब मुझे घड़ी मिली थी, बाद में सासू माँ जब मुझे देखने आई थी तब मुझे घड़ी दी थी। और एक और श्रोता ने बताया है कि मुझे मेरे भाई और बहन ने मिलकर एक साथ बताया था कि कैसे समय देखते हैं, तब मुझे आसानी से समझ में आ गया था। अब मैं बहुत सारे बच्चों को समय देखना भी सिखाता हूं क्योंकि मैं गणित का अध्यापक हूं, तो ये तो मेरा कर्तव्य भी हो चुका है। अब अगला गाना बहार शब्द आ रहा है, तो चलिए हम कालखंड के उस तरफ चलते हैं और सुनते हैं गाना। बताइए स्वर किसका है।

और बहार आई बहार। सिलसिला फिल्म के संगीत निर्देशक का नाम शिवहरी बताया हमारे साथियों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और घड़ी की भी कई सारी बातें हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि तब घड़ी की वैल्यू इतनी थी जितनी आज मोबाइल की है। एक

और संदेश है, आजकल की तमाम डिजिटल तथा खूबसूरत घड़ियों के रहते हुए भी मुझे अब भी वही घड़ी अच्छी लगती है जो बचपन में पहली बार देखी थी। पेंडुलम वाली बड़ी सी लकड़ी की घड़ी और जिसमें हर संडे को मेरे चाचा जी चाबी दिया करते थे। बाबा के जाने के बाद बहुत साल तक मैंने उसे मेंटेन रखा, लेकिन बाद में वो खत्म हो गई। एक और श्रोता बता रहे हैं, कितनी भी महंगी मोबाइल हाथ में ले लीजिए पर घड़ी पहनने का एक अलग ही अंदाज होता है। एक और श्रोता ने जानकारी दी है कि जर्मन की ताला बनाने वाले पीटर हैनलिन ने सबसे पहले 1505 में घड़ी बना ली थी। क्या बात है। एक और संदेश है कि हमारे विवाह में लेडीज घड़ी और जेंट्स घड़ी दोनों मिली थी, ज्यादा समय तक संभाल नहीं सके, खराब हो गई। एक और संदेश है, समय बड़ा कीमती है, समय का अपना महत्व है। नाना जी ने घड़ी देखना सिखाया था कि घड़ी की बड़ी सुई जिस पर हो उसको 5 से गुणा कर दो, छोटी सुई जिस पर हो उतने बचकर उतने मिनट। और एक और संदेश में गुजराती की एक कहावत है, माते माँ बीजा बागड़ा नावा, मतलब में आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना है जितना रेगिस्तान में हवा का। कुछ शायद छूट गया है इस कहावत में, या जो अर्थ इन्होंने लिखा है उसमें कुछ छूटा है। अगर मैं सही हूं तो सही अर्थ के साथ एक बार फिर से अपना जवाब लिख भेजिए कृपया। और एक श्रोता कह रहे हैं कि समय का वक्त का वाकई बहुत बलवान है, समय कब कौन सा रंग बदलेगा कोई नहीं जानता। और आज चलते हैं सुरीले सफर पर, मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी हैं। समय कहता है मैं फिर ना आऊंगा, क्या पता मुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। इंसान जीना है, इस पल को जी ले क्योंकि इस वक्त को अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। अभी भी वक्त है समझ लो, कीमत पैसों की नहीं समय की करो, फिर आपकी कीमत वक्त तय करेगा। क्या बात है। और बड़ा प्यारा सा संदेश, अम्मा तो गोंद की तरह होती है जो दिखती तो नहीं है पर जोड़ती सबको है, ब्रह्मांड की सभी माँ के लिए प्यार और आशीर्वाद का इमोजी बनाकर भेजा है। भाई हाँ, सच में सारी ब्रह्मांड की माओं के लिए ढेर सारा प्यार दुलार। और अब अगला शब्द आ रहा है पायल पर, तो देखिए जरा ये गाना सुनिए और बताइए कि किस फिल्म का है। और हाँ, हम आपको बता दें कि जो अभी हमने गाना सुना था वो डॉक्टर फिल्म से था। आवाज के बारे में हमने पूछा था कि किसकी आवाज है, अभी उस जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। ये गाना सुनिए।

फिल्म का नाम मेरे लाल, लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथियों ने घड़ी की बात भी की है और माँ के बारे में भी बात की है। एक श्रोता कह रहे हैं कि माँ की कदर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ जीवन में सिर्फ एक बार मिलती है, वो किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। पंकज मलिक साहब का नाम बताया हमारे सभी साथियों ने, कुछ ने वैसे KL सहगल जी का भी नाम लिया है, लेकिन ये गीत जो डॉक्टर फिल्म का हमने आपको सुनवाया था वो पंकज मलिक के स्वर में था। एक श्रोता कह रहे हैं कि मोबाइल में घड़ी आने के बाद लगभग सभी प्रकार की घड़ियां विलुप्त सी हो गई हैं। और एक ने संदेश में कहा है कि जब मैं बैंक में जाता था तब दीवार पर घड़ी टंगी घड़ी को 15 मिनट आगे रखता था ताकि देर ना हो और वक्त पर पहुंच जाऊं। एक और श्रोता का संदेश है कि कुछ घड़ियों में तो केवल डॉट होते हैं, नंबर होते ही नहीं, दिमाग घूम जाता है अभी भी उसको देखकर। अपनी पहली घड़ी अपने स्कॉलरशिप के पैसों से खरीदी थी हमारी एक साथी ने बताया। वाह क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि खराब घड़ी भी सही समय बताती है। जी हाँ, दिन में दो बार, बताइए कब कब। और एक श्रोता ने कहा है कि आजकल बहुत बड़ी बड़ी घड़ियां आ गई हैं, न्यू जनरेशन को बहुत अच्छी लगती हैं, पर मुझे छोटी नाजुक सी घड़ी अच्छी लगती है। मॉर्निंग वॉक के लिए, सिर्फ स्टेप गिनने के लिए मैं पहनती हूँ। घर पर होते हैं तो दीवार पर लगी घड़ी, बाहर जाते हैं तो रिस्ट वॉच जो पति देव ने खरीद कर दी है। क्या बात है। दुनिया में माँ वो शब्द है जिसमें पूरी कायनात सिमटी हुई है। माँ का प्यार निस्वार्थ और असीम होता है, जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं है। हर साल माँ के बलिदान, त्याग और समर्पण के लिए मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम सभी अपनी माँ के प्रति सम्मान और प्यार जाहिर करते हैं। वैसे एक दिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस दिन हम उन्हें महसूस करा सकते हैं कि वे हमारे लिए जीवन में कितनी अनमोल हैं। समय का सुरहल पर बदलता रहता है, कभी उसमें ख्वाबों की मिठास होती है, कभी वीरानियों की सिसकी, कभी मिलन की बहार झनकती है, तो कभी तन्हाई की गूंज। उसके गीतों में माँ की लोरी भी है और जीवन का सबक भी। बचपन की वो शरारतें याद है, जब छुपाई हुई टेस्ट कॉपी अचानक सफाई में मिल जाती, या डिनर से पहले किचन में हमारी चोरी पकड़ी जाती, तब अचानक हवा में तैरती चप्पल रिमोट या गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता वो बेलन प्रकट हो जाता था। हमें सही गलत का फर्क समझाने की उनकी अपनी एक अनूठी भाषा थी। शायद वही हमारा पहला सबक था कि कर्मों का फल तुरंत मिलता है। माँ को का वो निशाना कभी खाली नहीं गया, चाहे वो शरारत रोकना हो या हमें सही रास्ते पर रखने की उनकी जिद। उन्होंने हमें अनुशासन की उस आग में तपाया ताकि हम कुंदन सके। आज हमारी हर कामयाबी और हमारा संभाला हुआ चरित्र दरअसल उनकी उड़ती हुई नसीहतों की देन है। उस सख्त प्यार को नमन जिसने आज हमें आसमान छूने के काबिल बनाया। क्या बात है। और इसी बात पर कार्यक्रम का अगला गाना, बताइए किस फिल्म का है और आवाज किन की है।

बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए। तलाश फिल्म का गीत, सचिन देव का संगीत निर्देशन, उन्हीं की आवाज में ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। एक श्रोता लिखते हैं कि माँ शब्द एक छोटा सा भला ही हो, माँ वो इमारत है, वो पेड़ है जिसकी छांव में बैठकर दुनिया के सारे सुकून मिलते हैं। भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसीलिए माँ, आज मेरी माँ को दुनिया से गए 5 साल हो गए, लेकिन उनका एहसास आज तक मेरे साथ है, उसे मैं हर जगह महसूस करती हूँ। घड़ी के बारे में भी बहुत सारे संदेश हैं। मेरे पिताजी की शादी में मिली हुई घड़ी अभी तक मेरे पास चालू हालत में मौजूद है। वाह, सप्ताह में एक दिन निकालकर चाबी भर के रख देता हूँ, क्या बात है। गुजराती की कहावत के लिए हमने कहा था कि एक बार फिर से भेज दें, बिल्कुल भेजा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। माते माँ बीजा बगड़ा नावा, मतलब माँ के आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना ही है जितना रेगिस्तान में हवा का। तो सोचिए भाई, रेगिस्तान में हवा का क्या महत्व है। एक संदेश में कहा है कि जब बच्चे छोटे थे तो मैं सभी घड़ियों को 10 मिनट बढ़ा कर रखती थी, आजकल इसे 5 मिनट कर दिया है, क्या बात है। और माँ को लेकर भी बड़ा एक दिल को छूने वाला संदेश है। लिखा है कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या नहीं, पर संसार का दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान हमें माँ से ही प्राप्त होता है। माँ को शब्दों में बांध पाना असंभव है। आगे लिखते हैं कि मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों में बस वही सो सकती है, मेरे दुख में से ज्यादा बस वही रो सकती है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, क्या बात है। दिल को छूने वाला संदेश, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता ने कहा है कि खुशी को ढूंढने से गम मिलते हैं, ये गम या गम जिंदगी में हरदम मिलते हैं, जो दिल के सहारे दर्द बांट ले ऐसे लोग जिंदगी में कम मिलते हैं। तो जरा दिल से दिल मिलाकर बात करिए और इस गाने को सुनकर बताइए किस फिल्म का है। और हाँ, बैकग्राउंड संगीत के विषय में बहुत कम जवाब आ रहे हैं।

मेम साहब, फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। और अभी हमें जवाब तो नहीं मिला है, चलिए देखते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर क्या क्या जवाब आने वाले हैं। एक बड़ा ही मार्मिक संदेश मिला है। हमारे यहाँ जबलपुर में बरगी डैम में अभी कुछ दिन पहले क्रूज पानी में डूब गया था, जिसमें एक माँ ने अपने बेटे को आंचल में इस तरह से लपेटा हुआ था कि वो मरने के बाद भी छूटा नहीं था। इस दुर्घटना में माँ बेटे दोनों नहीं बच पाए। ऐसी ही होती है माँ, बस अपनी धड़कनों को अंतिम समय तक अपने लाडले या लाडली को देने के लिए उत्सुक। सिर्फ वही एक रिश्ता प्यारा सा। घड़ी को लेकर संदेश आया कि शादी के समय फोटोग्राफर ने मुझसे सवाल किया, घड़ी का वो समय बताएं जब घंटे और मिनट का काटा एक दूसरे पर हो और बजे भी उतने ही मिनट हो। तो उत्तर है 15:15 या 3:15 या 3:15। घड़ी मिनट दोनों काटे एक सीध में होंगे। क्या बात है, ये जवाब आपने फोटोग्राफर को बता दिया था या नहीं? मेरी दुनिया है माँ तलाश फिल्म का जो गाना था, उसके लिए कई श्रोताओं की बात आई है कि ये तो मेरी भी पसंद थी। और एक श्रोता ने कहा है कि मैंने एक ही पसंद लिखी थी, वो स्वीकार हो गई, तो धन्यवाद कहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते इस गाने की झलक, वक्त ज्यादा नहीं है, गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम।

जी हाँ, गैम्बलर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, नीरज के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। ये था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना जो कि झलक के रूप में आपने सुना। और अब इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का वक्त आ गया है। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारत।

0: Ashwani, and I'm Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है
0: The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being.
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग मेंटल हेल्थ योग मेडिटेशन इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है
0: Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building. The Prime Minister also launched the year-long projects of the Foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to the Art of Living International Centre, the Prime Minister addressed BJP leaders and workers at HAL Airport in Bengaluru. The Prime Minister said BJP's victories in West Bengal, Assam and Puducherry reflect public support for the centre's policies and programmes. He said that people want a government that delivers good governance and fast solutions.
2: भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें गेम नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है

0: And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलक अभिनेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: सी जोसेफ विजय तमिलनाडु।

0: தனிப்பட்ட முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ नौ मंत्रियों ने भी शपथ ली है. इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं. मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी. इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं. राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा. नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की.
2: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा. बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया. इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया. निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की. 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया. एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा. राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी.
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं.
3: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा. सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभासपाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाई जाएंगे. आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले. आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई. मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे. सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए. आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया. मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं. नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित है, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी है. ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा. 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें. शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा. एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित

0: जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिविन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और यह रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की

0: ज्ञापन पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुनते हैं कालजयी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

माँ की ममता भरी गोद का कोई अनमोल है और उसका कोई सानी नहीं है। जागृति फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। प्रदीप के बोलों को संगीत में ढाला था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म लाजवंती का ये गाना।

0: ए लो बच्चों आन मिले हम फूल से जैसे मिलती है शबनम, तुम हो हमारे हम है तुम्हारे, कैसे न मिलते चांद सितारे।
1: बाप हमें मामा जी करना तुमको पड़ा है, ये क्यों करला।
0: अरे

0: मामा जी एक बात बताना, सच सच कहना, कुछ न छुपाना। हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत थे गाते, और कभी तो तुम न आए, आज तुम्हें हम कैसे भाए।
1: अच्छा अच्छा बतलाता हूँ, बिल्कुल सच्ची सच्ची, ठहरो पीछे बतलाऊंगा, पहले दो एक पप्पी।

0: मामा जी नजदीक तो आओ, ये गुड़िया है कौन बताओ, टुक टुक हमको ताक रही है, बैठी चरखा काट रही है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ ना ना, यूँ ताना मत मारो, ये तो मेरी माँ है प्यारो।
0: मेरी माँ भी मामा प्यारे रहती है अवधेश तुम्हारे, उससे तुम एक बार मिला दो, उसको मेरे पास बुला दो।
1: हाँ हाँ मुन्नी, दूर नहीं अब तुझसे तेरी माता, तुझ पर तो उसकी ममता का साया है लहराता, एक तू ही क्या मुझको

0: आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों का गाया हुआ लाजवंती फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जान

सदाबहार नगमय प्रोग्राम की अगली पेशकश टैक्सी स्टैंड फिल्म से है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। और अब एक मीठा सा नगमा चंदन फिल्म से सुनते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ।

हो जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन, हर 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार बच के रहना, देख रहा है सब।

मोहम्मद रफी का गाया औलाद फिल्म का ये गाना बहार लेकर आया। शब्दों की मोती पिरोए मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन की खुशबू बिखेरी चित्रगुप्त ने। और अब कार्यक्रम का अगला गाना।

0: दिल से प्यारा ये गीत इशारा कर रहा है मुहर फिल्म का कि आज के कार्यक्रम की यही है अंतिम प्रस्तुति। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आपने सुना ये गाना, राजेंद्र कृष्ण की रचना को संगीत में पिरोया मदन मोहन ने। तो अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। अगला कार्यक्रम मन चाहे गीत बस थोड़ी देर में।
1: अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी शिमला है। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला, डीटीएस सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष 93,176 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, जिनमें से 78,150 उत्तीर्ण हुए हैं। 8,433 विद्यार्थियों के कंपार्टमेंट आई है, जबकि 6,559 असफल घोषित किए गए हैं। इसी तरह परीक्षा परिणाम 83.87% रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर माना जा रहा है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा के अनुसार परीक्षा प्रणाली में इस बार कई बड़े बदलाव किए गए थे, जिसके चलते परिणाम में सुधार देखने को मिला है।
1: इस बार जो बोर्ड की पास परसेंटेज है वो है 83.87%, जो पिछले वर्षों के मुकाबले ग्रेजुअल इंक्रीज है। ये दर्शाता है कि बोर्ड पिछले कुछ वर्षों से लगातार एफर्ट कर रहा है, जिसके रिजल्ट आज देखने को मिल रहे हैं। ये अचानक नहीं है। बोर्ड की जो कार्यशैली है, कार्यशाला लगाने, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, बच्चों के पेपर का स्टाइल CBSE के मुताबिक करने के लिए, साथ के साथ जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाले, जैसे बच्चों को नीट में चाहिए होते हैं, JEE में चाहिए होते हैं, UPSC में चाहिए होते हैं, वैसे हमने पैटर्न भी चेंज करा। और कुछ उनके मस्तिष्क में था, मानसिक तौर पर तैयार थे कि हमारे हक को चुराया नहीं जाएगा, नकल पे रोक लगेगी, इसलिए वो पैटर्न परफॉर्म कर पाए।
0: इस बार 10वीं कक्षा की मेरिट सूची में 107 विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। इनमें 83 छात्राएं और 24 छात्र शामिल हैं। कांगड़ा जिला के निजी स्कूल पहरा की छात्रा अनमोल ने 700 में से 699 अंक लेकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। 7 और 8 मई को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान प्रदेश भर में 42,562 उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन भरे। अभी तक कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 7,396 नामांकन भरे गए हैं। नामांकन पत्रों की जाँच 15 मई को की जाएगी और इसी दिन चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। पंचायत चुनावों के लिए मतदान 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में करवाया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। प्रदेश के शहरी निकायों में 17 मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो रहा है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पालमपुर में नगर निगम चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। एक जनसभा में उन्होंने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से मिल रही सहायता को भी सही ढंग से खर्च नहीं कर पा रही है।
2: विधायक यहाँ वर्षों से कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन पालमपुर जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। लेकिन हट करके कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, बड़ी सोच के साथ करना चाहिए। वो स्थिति 15 वर्षों में आ नहीं सकी। हमारा विधायक ना तो यहाँ नहीं था, हमारी सरकार थी। हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का जो है हमारा कोर्ट होना चाहिए, हमने वो कोर्ट आपको दिया। पालमपुर में आकर के आप लोगों ने कहा कि BDO का ऑफिस यहाँ पर खुलना चाहिए, BDO का दफ्तर आपको पालमपुर में हमने खोला, लेकिन कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने के बाद उसको भी डिनोटिफाई करके चले गई।
0: ऊना जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 3,79,459 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि ऊना जिले की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिले में 1,88,945 पुरुष जबकि 1,84,724 महिला मतदाता हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूल में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद, कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर

0: के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार। भूखों को कम करने और दीर्घकालिक खाद्य और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक पहल के रूप में परिकल्पित किया गया था। इसके बाद वर्ष 2018-19 से NMSA को हरित क्रांति कृषोन्नति योजना की व्यापक योजना के तहत एक उपमिशन के रूप में संचालित किया गया। वर्ष 2022-23 के बाद संस्थागत पुनर्गठन के नतीजतन इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के दायरे में शामिल किया गया, जो टिकाऊ जलवायु अनुकूलित कृषि विकास के लिए एक समेकित दृष्टिकोण को दर्शाता है। NMSA के तहत जलवायु अनुकूल कृषि के लिए एकीकृत नीतिगत हस्तक्षेप राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के जरिए जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देता है। ये जल उपयोग दक्षता बढ़ाकर मृदा स्वास्थ्य में सुधार करके और जलवायु अनुकूल कृषि को सुदृढ़ बनाकर सतत कृषि विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देती है। इन प्रयासों को मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन घटक द्वारा और भी बल मिलता है, जिसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना द्वारा समर्थित किया जाता है, जो संतुलित पोषक तत्वों को बढ़ावा देता है और दीर्घकालिक मृदा उर्वरता को बनाए रखता है। वर्षा आधारित कृषि विकास मॉडलों के जरिए सतत कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। ये किसानों की आय और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे संबंधी गतिविधियों के साथ बहुफसली, चक्रीय, अंतरफसली और मिश्रित फसल प्रणालियों को एकीकृत करके एक समग्र दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण देश की शुष्क भूमि और वर्षा आधारित कृषि के व्यवस्थित उन्नयन और प्रबंधन पर ज्ञान प्रदान करने वाले एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान आधारित हस्तक्षेपों को सक्षम बनाकर और विभिन्न एजेंसियों के साथ कुशल समन्वय स्थापित करके वर्षा आधारित कृषि को बढ़ावा देना है। प्रति बूंद अधिक फसल पहल का मकसद स्टीक सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देकर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के कवरेज का विस्तार करने के लिए लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान भी की जाती है। सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों, विशेष रूप से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर पानी के कुशल उपयोग को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। ड्रिप सिंचाई में पार्श्व पाइपों से जुड़े उत्सर्जकों के जरिए जड़ क्षेत्र में लक्षित जल का छिड़काव किया जाता है, जिससे नुकसान कम होता है और संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है। इसके विपरीत स्प्रिंकलर सिंचाई पाइपों और नोजलों के नेटवर्क के जरिए दबाव के साथ पानी वितरित करती है, जिससे वर्षा का अनुकरण होता है और पूरे खेत में एक समान वितरण सुनिश्चित होता है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन स्थान और फसल विशिष्ट टिकाऊ मृदा प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देता है, जिसमें अवशेष प्रबंधन और जैविक खेती शामिल है। मृदा अपरदन और भूमि क्षरण को क्षम करने के उपायों के कार्यान्वयन पर जोर देता है, जिससे दीर्घकालिक मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता सुनिश्चित होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में अनुसंधान प्रणालियों के जरिए कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। NICRA ने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन उपाय क्षेत्रों में किसानों और हितधारकों की क्षमता विकसित करने में NMSA में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए स्थान विशिष्ट आशाजनक जलवायु अनुकूलित प्रौद्योगिकियों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम और प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। ये पहल कृषि प्रणालियों की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के मकसद से अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के अनुसंधान का समर्थन करती है, ताकि वे सूखे, बाढ़ और लू जैसी मौसम की गंभीर घटनाओं का सामना कर सके।
1: अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है।

लव इन टोक्यो का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश ने छू लिया है मन को, याराना फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसे सुनना चाहते हैं नोहा टाउन राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। तो सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल, राजेश रोशन की धुन और ये प्यारा सा नगमा।

मन का मौसम बदल जाता है जब कोई हौले से आकर दिल छू जाता है। अब दिल छूते ही क्या होता है, जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत करीब आती है, जो आ रही है इस गीत के साथ। आंखें फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत रचना रवि की है।

मनचाहे गीत प्रोग्राम का आखिरी नगमा बना है जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेचा और पूनम गगनेचा की पसंद का फिल्म आशा का ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना।

आशा फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक के रघुपति, हिंदी अनुवादक P.S. कृष्णा स्वामी। तो सुनिए पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।
2: जब तुम मुझे माँ कहकर बुलाते हो तो मुझे बेहद सुख मिलता है बेटे। सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ।
3: कहिए माँ जी।
2: ये बात किसी को मालूम ना हो, इस रहस्य को तुम प्रकट ना होने दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं तुमको यह रहस्य बताने का निश्चय कर चुकी हूँ।
3: बता दीजिए माँ जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके

0: उसको अपने तक ही रखूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुंचेगी।
1: तो सुनो बेटा, मेरे पास मेरी अपनी पैतृक संपत्ति करीब 10 लाख रुपए की है। वो सब सोना चांदी और हीरे जवाहरात के रूप में है। उन सबको मैंने एक बड़े घड़े में भरकर इस घर के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास गाड़ रखा है। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है, मेरे अपने सगे बेटे कुमार स्वामी को भी मालूम नहीं। अगर मुझे कुछ हो हवा जाए तो तुम्हें उस संपत्ति की रक्षा करनी होगी, करोगे ना?
0: माँ जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, भगवान आपका साया।
1: न जाने कुमार स्वामी कब लौटेगा, ये लड़की नीला।
0: जी आप कहते कहते रुक क्यों गई, कहिए ना।
1: ये लड़की नीला है ना, इसकी शादी मैं कुमार स्वामी से करना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा है। देखो बेटा, एक काम मैं तुम्हें और सौंपती हूँ। अगर मैं उन दोनों की शादी से पहले ही चल बसूं, तो तुम उन दोनों की शादी करा देना। करा दोगे ना?
0: जरूर करा दूंगा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए।
1: मेरी बात याद रखोगे ना?
0: जीवन भर याद रखूंगा माँ जी, अपना वचन जरूर पूरा करूंगा।
2: बात बहुत बड़ी जान पड़ती है।
3: हाँ भैया शिंगारम, बात बहुत बड़ी है, अगर चाहो तो तुम बहुत जल्दी लखपति बन सकते हो।
2: लखपति? अरे क्या कह रहा है?
3: ये जरा गंभीर मामला है। देखो, हवा के झोंके के साथ उड़ो तभी तुम आसमान पर पहुंच सकते हो, वरना ये समझ लो कि वो डाकिया कंद स्वामी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा।
2: लगता है मारी तू दारू पी कर आया है, अब सच कह दे नहीं तो मेरे हाथों कुत्ते की मौत पड़ेगा तू। अरे 10 लाख रुपया है कहाँ, और उसके साथ उस डाकिये का क्या संबंध है?
3: है, बहुत गहरा संबंध है, वही 10 लाख रुपया हड़प जाएगा और साथ ही तुम्हारी प्यारी नीला को भी उड़ा ले जाएगा।
2: क्या कहा? नीला को भी उड़ा ले जाएगा?
3: तुमने कहा था ना, मैं कभी कभी तुम्हारी बहन के घर की और चक्कर लगाया करूँ। उसी के मुताबिक मैं वहाँ गया था। अंदर कंद स्वामी तुम्हारी बीमार बहन की चारपाई के पास बैठा था, मैं छिप कर खिड़की के पास हो गया और सुना कि तुम्हारी बहन कंद स्वामी से अपने जमीन में गड़े धन की चर्चा कर रही है।
2: अच्छा, तो क्या मेरी बहन ने यह भी बताया था कि उसने धन कहां गाड़ रखा है?
3: वही तो मैं सुन नहीं पाया। उस वक्त पास से दनदनाता हुआ एक ट्रक जा रहा था, उसी के शोर के कारण मैं तुम्हारी बहन की आगे की बात नहीं सुन पाया।
2: जब मैं इस डाकिये को अपने रास्ते से हटा दूंगा तभी चैन की सांस लूंगा। उसी को क्यों, अपनी बहन? और
3: नहीं भैया नहीं, खून करके जेल जाने से क्या फायदा, कोई ऐसा उपाय सोचो कि उनकी आंखों के सामने ही हमें दौलत मिले और साथ ही लड़की भी।
2: ऐसा ही होगा दोस्त, अपनी बहन शिवकामी की चाल में समझ गया हूँ। कुमार स्वामी मोर्चे से वापस नहीं आएगा, इसी ख्याल से शिवकामी कंद स्वामी को अपना वारिस बना लेना चाहती है, और ये डाकिया कंद स्वामी धन और नीला दोनों को पाने की आशा से वहां मंडरा रहा है। हमें दोनों की जड़ को काटना है। दोस्त, इस समय अगर हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करे तो कुछ हो सकता है, जरूर कुछ हो सकता है।

0: आओ कंद स्वामी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
1: क्यों, क्या बात है पोस्टमास्टर साहब, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुशल मंगल तो है।
0: क्या किया जाए कंद स्वामी, मनुष्य का ये जीवन अनित्य है, पानी के बुलबुले सा, एक न एक दिन सब यहाँ से जाएंगे ही। लेकिन जब कोई जवानी में मर जाता है तो बहुत दुख होता है। यदि वो मरने वाला विधवा बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा हो, उसी की कमाई से बेचारी का गुजर बसर होता हो, तो दुख से हृदय फट जाता है।
1: आपकी बातों से तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं?
0: क्या बताऊं, तार को लेते वक्त मैं खुद स्तंभित रह गया था।
1: तार? कैसा तार?
0: लो,

0: तुम खुद ही पढ़ लो ये तार, इसे पहुंचाने के लिए तुम ही तो जाओगे।
1: है? ये क्या लिखा है? कुमार स्वामी जो सीमा रक्षा के एक मोर्चे पर तैनात था, एक भिड़ंत में दुश्मन की गोली से मर गया। हे भगवान, शिव कामी अम्माल का लड़का मर गया।
0: क्यों स्वामी, इस खबर से गहरा सदमा पहुंचा है ना तुम्हें भी? उठो जाकर ये तार शिवकानी अम्माल को दे आओ।
1: मैं दे आऊं? मैं खुद अपने हाथ से उन्हें ये तार दूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता पोस्टमास्टर साहब। मैं कैसे उनके सामने जाऊं? उनके इकलौते बेटे की मौत की खबर लेकर?
0: जाना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए, ये नौकरी ही ऐसी है। उठो जल्दी तार उस बेचारी बुढ़िया को दे आओ। वो तो बेचारी रोज अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। आज वो ये जान ले कि आगे से चिट्ठी का आना हमेशा के लिए बंद हो गया है।
1: चाहता हूं बाबूजी, चाहता हूं। ये कैसी मजबूरी है? शिव कामी अम्माल मुझ पर मां के स्नेह प्यार की वर्षा कर रही थी, आज मैं अभागा उन्हीं के दिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, उन्हीं को दारुण दुख से तड़पाने के लिए।

0: माजी
1: आओ कंद स्वामी, आओ आओ, तुम्हारी ही राह देख रही थी। अरे दरवाजे पर ही खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ ना। आज सवेरे सवेरे ही आ गए, आज ड्यूटी पर नहीं गए क्या?
0: ड्यूटी? ड्यूटी आपका तार है माजी।
1: क्या कहा, तार? मेरा तार आया है?
0: जी हाँ, सीमा रक्षा के मोर्चे से है।
1: अरे तो क्या मेरे कुमार स्वामी का तार है?
0: जी हाँ, यहाँ दस्तखत कीजिए।
1: अभी करती हूँ। तार का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, रोने पीटने लगते हैं, लेकिन मैं यूं ही घबराने वाली नहीं हूँ। अरे तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है?
0: नहीं तो
1: ये क्या, तार मेरे हाथ में दे दिया? मुझे तो सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, और फिर ये तार तो अंग्रेजी में है। बेटा तुम ही पढ़कर इसका मतलब बता दो। इस महीने कुमार स्वामी का न कोई खत आया और न कोई मनी ऑर्डर ही आया, कहीं वो छुट्टी लेकर यहाँ, हाँ यहाँ आने का ही समाचार होगा। भला तार देने की क्या जरूरत थी, पागल कहीं का।
0: माँ जी बात यह है कि,
1: अरे बताओ ना, तार में क्या लिखा है? तार को इस तरह घूर क्यों रहे हो?
0: माँ जी तार में कुमार स्वामी ने लिखा है, लिखा है, लिखा है कि वो आज गांव पहुंचेगा, उसे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है।
1: अरे तो क्या मेरा बेटा आज आ रहा है? मेरा अनुमान ठीक निकला। अरे बेटा तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों?
0: कुछ नहीं माँ जी, यही आंखों में कुछ धूल पड़ गई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
1: तो चले क्या? अच्छा कल अपना काम खत्म करके यहाँ जरूर आना, कुमार स्वामी से तुम्हारी जान पहचान करा दूंगी, खाना भी यही खाना। अच्छा
0: अच्छा तो मैं जाता हूँ माँ जी।

0: अरे ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कुमार स्वामी के देहांत के समाचार को बदलकर झूठ मूठ कह दिया कि वो आज आ रहा है?
1: और क्या कहता? शिवकामी अम्माल की हालत देखकर मुझे ये झूठ

0: बोलना पड़ा।
1: तुमने कर्तव्य का पालन नहीं किया।
0: हाँ, कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन इस बार, केवल इस बार मुझे झूठा अभिनय करना ही होगा।
1: झूठा अभिनय? तो क्या तुम झूठी खबर को सच साबित करने के लिए कुमार स्वामी का स्वांग भरोगे? ये जुर्म है। सोच लो, ऐसे स्वांग का क्या नतीजा होगा?
0: नतीजा? एक बुढ़िया बीमार मां के हृदय को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और मैंने सब सोच लिया है। वर्दी, मूछे और गाल पर मस्सा और फौजी लहजा। मुझे देर नहीं करनी चाहिए।

0: माँ
1: कौन है? अरे आप नानी, नानी देखो कौन आए हैं मोर्चे से।
2: हेलो नीला, हाउ डू यू डू? दो साल में तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माँ कहाँ है? अरे अंदर कमरे में लेटी है। क्या हुआ माँ को? माँ
1: कौन? कुमार स्वामी आओ मेरे बेटे, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही।
2: मुझे क्यों नहीं लिखा माँ? अच्छी से अच्छी दवा खरीद कर भेज देता।
1: बेकार ही तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ती, मामूली खांसी बुखार है। तो तुम कुमार स्वामी ही तो हो?
2: मुझे पहचान लिया है क्या? ये कैसा सवाल कर रही हो माँ? मैं तुम्हारा कुमार स्वामी ही हूँ।
1: कुछ दिनों से मेरी आंखें कमजोर हो गई है बेटा।
2: माँ तुम इस तरह बार बार बाहर क्यों झांक रही हो?
1: मैं कंद स्वामी को देख रही हूँ।
2: कंद स्वामी कौन?
1: अरे वही तो, तुम्हारा दूसरा अवतार। तुम्हारे यहाँ न होने से मैं उसी को देखकर अपने मन को तसल्ली देती रही हूँ।
2: क्या कह रही हो माँ? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पहचान कर इस तरह मजाक कर रही है क्या?
1: बेटा तुम में और उसमें जरा भी फर्क नहीं। नीला तुम जरा बाहर जाकर देखाओ कि कंद स्वामी आ रहा है या नहीं।
3: नानी माँ आज कोई नया डाकिया आया है, उसने बताया कि कंद स्वामी को अचानक कोई जरूरी काम आ पड़ा सो वे छुट्टी लेकर गांव गए हैं, कल रात वापस आएंगे।
1: कंद स्वामी अपनी माँ से बढ़कर मुझे प्यार करता है। नीला जाकर पानी गर्म करो, कुमार स्वामी नहा धोकर जरा आराम कर लें, एक ही दिन तो यहाँ ठहरेगा बेचारा।

0: भैया श्रृंगारम, भैया श्रृंगारम, गजब हो गया।
1: क्या हुआ मारी?
0: वो डाकिया कंद स्वामी है ना, कल उसने बहुत बड़ा छल किया।
1: छल? कैसा छल?
0: कल उसने गांव जाने के बहाने डाकखाने से छुट्टी ली और इधर उधर चला गया।
1: फिर?
0: फिर उसने फौजी वर्दी पहनकर मूछे और मस्सा लगाकर तुम्हारी बहन के फौजी बेटे कुमार स्वामी का सांग भरा और पहुंच गया तुम्हारी बहन के घर।
1: उसकी ये हिम्मत!
0: अरे भैया आगे तो सुनो। तुम्हारी बहन की आंखों में उसने ऐसी धूल झोंकी कि वो कंद स्वामी को पहचान ही ना सकी। वो बेटे की तरह दिन भर घर में रहा और फिर रात को चला गया।
1: सच कह रहा है तू?
0: हाँ भैया, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर कंद स्वामी के मूछे और मस्सा हो तो वो कुमार स्वामी ही लगेगा। उसी बात को उसने अब सच साबित कर दिया है।
1: अरे तो इसका मतलब है कि नीला ने भी उस पर विश्वास किया होगा। नीला ने उससे हंस हंस कर बातें की होंगी उसके साथ।
0: क्यों नहीं, ये खेल आगे भी जारी रहा तो समझ लो एक दिन ये डाकिया फिर भेष बदल कर छुट्टी के बहाने से आएगा और तुम्हारी नीला से शादी करके चंपत हो जाएगा।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मारी, जल्दी से कोई उपाय सोच कि इस डाकिये का खेल आगे न बढ़े।
0: आज से मैं रेलवे स्टेशन के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता हूँ। कंदू स्वामी जब फिर फौजी वर्दी पहनकर आएगा तो मैं फौरन आकर तुमसे कह दूंगा, तुम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना।
1: वाह, बहुत बढ़िया उपाय है ये, लेकिन सुनो, होशियार रहना।

0: कुली कुली।
1: ओह डैम इट, इस गांव के स्टेशन पर कोई कुली भी नहीं, सामान खुद ही उठाना होगा।
2: अच्छा तो ये साला डाके आज फिर भेष बदल कर आया है, अभी खबर देता हूँ श्रृंगारम को।

0: Ma, mother, mummy, where are you? Oh, silly old lady.
1: आइए आइए बाबू साहब, आज फिर
0: कौन? नीला? क्योरी छोकरी कैसी है, माँ कहाँ है?
1: वो आज फिर डॉक्टर के यहाँ गई हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ आज फिर क्यों सोंग भरा है? उस दिन जैसे नानी माँ धोखा खा गई थी, वैसे मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ।
0: What nonsense, ये क्या कह रही हो?
1: बस बस बंद कीजिए नाटक, मुझे सब मालूम है। जल्दी से ये बनावटी मूछे और मसा उखाड़ कर फेंक दीजिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा मैं खुद उखाड़े देती हूँ।
0: ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ मेरी मूछे, दर्द हो रहा है। अरे ये बनावट नहीं, असली मूछे है, हट जा सामने से। कहाँ है मेरी माँ?
1: कहाँ ना, वो डॉक्टर के यहाँ।
2: अरे ये क्या मामा की रट लगा रखी है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है, डाकिया कहीं का। कौन है तेरी माँ?
0: कौन? ओहो शिंगाराम।
2: हाँ।
0: हेलो, हाउ डू यू डू, यू सिली कंट्री ब्रूट, आई मीन अंकल।
2: वाह, अंग्रेजी के चार शब्द बोलने से क्या होता है। क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानता, चोर उचक्का कहीं का।
0: अंकल ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं चोर उचक्का हूँ?
2: हाँ हाँ, डाक खाने से छुट्टी लेकर किराए की वर्दी पहन और नकली मूछे और मस्सा लगाकर तू मेरी बुढ़िया बहन को धोखा दे सकता है, इस नासमझ नीला को धोखा दे सकता है। लेकिन तू इस शिंगारम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। वो तार मैंने ही दिया था कि कुमार स्वामी मर गया है, तूने उस तार का असली मजबूर अम्माल को नहीं बताया, उसके बजाय झूठ मूठ कह दिया कि छुट्टी लेकर कुमार स्वामी आ रहा है और खुद कुमार स्वामी का भेष बनाकर चला आया। इस तरह आसानी से तूने शिवकामी के जमीन में गड़े धन का पता लगा लिया। अब बोल कहाँ है वो धन, कहाँ गाड़ रखा है तूने उसे, पहले ये बता दे, बाद में चाहे तू कुमार स्वामी की एक्टिंग कर चाहे कंद स्वामी की, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बोल बोल बोल, वो जमीन में गड़ा धन कहाँ है?
0: जमीन में गड़ा धन?
2: हाँ।
0: अंकल शिंगारम, ये तुम क्या बेपर की उड़ा रहे हो?
2: चुपचाप अपनी असलियत कबूल कर ले और शिवकामी के उस गड़े हुए धन का पता बता दे, नहीं तो
0: तू क्या करेगा बदमाश, चला जा यहाँ से, मैं किसी गड़े हुए धन के बारे में कुछ नहीं जानता। ओह कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, पहले मैं कुछ पेट में डाल लूं।
2: अबे अंदर कहाँ जाता है, पहले बता।
0: नहीं बताता, मुझे कुछ नहीं मालूम, हट जा मेरे सामने से।
2: अच्छा कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम है तुझे, कुछ नहीं मालूम तो ले।
0: शिंगाराम तूने ये
2: चाकू के एक ही वार से ये दम तोड़ने लगा है, इधर नीला भी बेहोश हो गई है, क्या ये कहीं सचमुच ही कुमार स्वामी तो नहीं? शिवकामी के आने से पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ हाँ भाग जाना चाहिए।

0: श्रृंगारम श्रृंगारम, मेरे भाई गलती हो गई, वो डाकिया कंद स्वामी नहीं कुमार स्वामी ही था।
1: है?
0: तुमने कुमार स्वामी का
1: कमीने, तूने मुझे गलत खबर देकर। कंद स्वामी कहाँ है?
0: डाकखाने में। खैर ये बातें तो बाद में होंगी, पहले पुलिस से बचने का उपाय करना चाहिए। जल्दी से अपने खून से ये लथपथ कपड़े बदल डालो।
1: अच्छा मारी, तू भागकर किसी को कंद स्वामी के पास भेज, उसे कहला दे कि शिवकामी बहुत बीमार है, उसे फौरन बुलाया है।

0: मैं तब तक पुलिस चौकी पहुंचता हूं।
1: माजी
2: है? ये क्या, ये कौन खून से लथपथ पड़ा है? अरे ये चाकू, हाँ तो इसे धीरे धीरे निकाल लो। हाँ अरे ये नीला क्यों बेहोश पड़ी है? ये सब क्या हुआ, किसने ये खून किया?
3: हाँ कंद स्वामी, तुम्हारे हाथ में ये चाकू, ये खून कैसा बह रहा है? कौन यहाँ गिर पड़ा है?

0: क्या कहा माँ जी? ये कुमार स्वामी है? मुझे कुछ पता नहीं, मैं अभी आया हूँ। कुछ देर पहले मुझे खबर मिली थी कि आप सख्त बीमार हैं। मैं भाग आया और
1: अरे पापी, मेरा सत्यानाश करके झूठ बोलता है। मैंने अपनी दौलत की बात तुझे इसलिए बताई थी कि तुम ईमानदारी से उसकी रक्षा करोगे। अरे इससे तो ये अच्छा था कि तुम मुझे ही मार डालते।
0: माँ जी, मैं आपको क्या जवाब दूँ? मुझे कुछ भी तो नहीं सूझ रहा।
2: सब सूझ जाएगा कंद स्वामी, हम आ गए हैं।
0: कौन? इंस्पेक्टर साहब?
2: हाँ, हम ठीक मौके पर पहुंचे। तुम वारदात की जगह पर रंगे हाथों पकड़े गए हो। सिपाहियों, इसे हथकड़ी लगा दो।
3: इसने मेरी बहन के बेटे को मेरे भांजे को मार डाला है। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं फौरन आपको इत्तला न करता तो ये भाग जाता।
2: मैडम जी, क्या आपने इसे खून करते हुए देखा था? देखा था तो रोका क्यों नहीं?
3: बात ये है इंस्पेक्टर साहब, नीला होश में आ गई।
2: ए, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए।
1: इंस्पेक्टर साहब, इसे श्रृंगारम ने मेरे मामा कुमार स्वामी की हत्या की थी। इसे नहीं चाकू भोंका, तभी कंद स्वामी यहाँ नहीं थे। अरे रोकिए, वो भाग रहा है।
2: सिपाहियों, ये बदमाश श्रृंगारम भागने न पाए, पकड़ो। बेटी, तुमने क्या श्रृंगारम को खून करते हुए देखा था?
1: जी हाँ, इसने कुमार स्वामी को कंद स्वामी समझकर चाकू भोंक दिया। दोनों की शक्ल मिलती है ना, मामा की हत्या होते देखकर मैं तहशत से बेहोश हो गई। बाद में जो कुछ हुआ मैं नहीं जानती। कंद स्वामी ने कुछ नहीं किया, ये निरपराध है। हत्या के समय ये यहाँ थे ही नहीं।
2: अच्छा, तो श्रृंगारम एक बेकसूर को फंसाकर खुद बचना चाहता है। सिपाहियों, पकड़ लाओ इसे, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। कंद स्वामी को छोड़ दो।
1: अरे अरे, मेरा बेटा होश में आ रहा है, ये अभी जिंदा है। बेटा बेटा,
2: आप सब खामोश रहिए, ये कुछ कह रहे हैं।
0: इंस्पेक्टर साहब, लगता है मेरे पीछे यहाँ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैं आज यहाँ छुट्टी पर आया था। ये श्रृंगारम मुझे कंद स्वामी मानकर मुझसे किसी गड़े धन के बारे में पहले पूछताछ और फिर तकरार करने लगा। इसी ने मुझे चाकू मारकर घायल किया। माँ,
1: मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे।
0: माँ, तुम रोती क्यों हो? माँ, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका, मैंने हमेशा तुम्हें परेशान ही किया। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी सब भूल माफ कर।

बोल नहीं पा रहा हूं मां, मां मैं छुट्टी लेकर आया था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें देख लिया मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तुम्हारी गोद में, तुम्हारे चरणों में मेरा अंत हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ।

0: आइए पोस्टमास्टर साहब, अच्छा किया जो आप इस कंद स्वामी को साथ लेकर आए हैं। इसने एक महीने से इधर ताका भी नहीं। नीला, देखो तो कौन आया है। क्यों कंद स्वामी, क्या तुम नाराज हो मुझसे? ये मैं मानती हूँ कि मुझे उस दिन तुम पर एकाएक शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊं, उस दुष्ट शिंगारम ने ऐसी चाल चली कि
1: जो होना था सो हो गया। शिंगारम को अपने किए की सजा मिल गई है।
2: पोस्टमास्टर साहब, उस दिन भगवान ने ही मेरी रक्षा की, वरना शिंगारम ने मुझे फंसा ही दिया था। ऐन मौके पर नीला ने होश में आकर इंस्पेक्टर को सच्ची बात बता दी और कुमार स्वामी ने भी अपना बयान दे दिया। अगर ये सब न होता तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ता, मैं तो बाल बाल बचा।
0: देखो गंदे स्वामी, तुम उस दिन बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कसूर नहीं किया। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी।
2: क्या कह रही हैं आप?
0: मैं ठीक ही कह रही हूँ। ये ना समझना कि मैं कुछ नहीं जानती। भले ही मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं।
2: मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
0: मैं क्यों माफ करूँ, तुम्हें चुपचाप मेरा हुक्म सुनना होगा।
2: आप जो भी कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ।
0: हाँ, इसी में बुद्धिमानी है। पोस्टमास्टर साहब, आप गवाह हैं ना?
1: भाई मैं तो सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ।
0: मैं कंद स्वामी को जिंदगी भर की सजा देना चाहती हूँ। अगले महीने मैं नीला की शादी इस कंद स्वामी के साथ कर देना चाहती हूँ। क्यों कंद स्वामी, मंजूर है ना?
2: जी मैं, लेकिन आप नीला से भी पूछकर।
3: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक थे के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी और निर्देशक थे महेंद्र मोदी। इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं शिवराज सोमवाल, करुणा कुमावत, विजय सिंह पवार, महुआ बैनर्जी, राजेंद्र पांडे, यवदत्त मेहता, चंद्र प्रकाश पारीक, चंबलेश भट्ट और महेंद्र मोदी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले आपको बता दें कि ये आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले।

0: बने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।
2: जा

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
2: जी।
1: ये पिक्चर अच्छी बने और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
2: अरे बाप रे।
1: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
2: ये लो।
1: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
2: हीरोइनें भी हैं,
1: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए।
2: अब
1: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लग गए थे, कास्ट्यूम पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच मेरी दूसरी पिक्चर मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया। और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर जो दुनिया, उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
2: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे वहाँ,
1: दिलीप कुमार साहब के हीरो हैं। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास डायरेक्ट करिए मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज़्यादा पिक्चर मैं डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा यश जोर आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से वो प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को भी जानते सबको, तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
2: कनेक्शन
1: सबके। तो वहीदा जी से कहने लगे यार यश पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगा हूँ, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वहीदा जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
2: अरे गजब।
1: रमेश तलवार से? वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर भी 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार।

0: वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत समझदार है अच्छे। तो इन्होंने मुझे, यश जौहर ने कहा कि भाई आप, अब मैं 5 मिनट मिलने आना चाहता हूँ। मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था तभी, उसको ऑफिस बना लिया था मैंने। तो मैंने कहा मैं पाली हिल पे हूँ, आप आ जाइए। आए वहाँ पे तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि यश जी के पास मैं जाता रहा, तो ऐसे अभी वहीदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है, तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं यश जी की पिक्चर कैसे करूँ, मैं उनका चेला हूँ। तो मुझे टाइम दीजिए, मैं यश जी से बात करता हूँ, एक दो दिन में मैं उनसे बात कर लूँगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूँगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यश जी से मैंने बात की कि ऐसा, उन्होंने कहा हाँ बेटा करो, क्यों नहीं करो।
1: ओहो,
0: मैंने कहा यश जी मैं आप कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे, नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूँगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या होगा, अभी दिलीप कुमार लिए नहीं थे अभी हमने,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली तभी यही है बिटवीन
1: सागर साहब लिख रहे थे,
0: कोई नहीं, कुछ किसी को लिया नहीं था हमने
1: अभी। अच्छा,
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी।
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी से कहेंगे नहीं। इनको बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे हैं।
1: ओ
0: अभी इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था। वो इस तरह कि यहाँ एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे,
1: हाँ, वो
0: रमन मेरे इप्टा के हैं, मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे, और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब,
0: जावेद साहब गाने लिख रहे थे। उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखने थे।

0: सेटिंग करते थे इनके घर पे गानों की भी। कुलदीप जी आ जाते बाजा लेके आते, और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
1: जी,
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा, असिस्टेंट वाइफ हनी ईरानी। हाँ,
0: तो हमारे बाकी लोग भी, हमारा उस तरह कोई ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले, तो हम इप्टा के लोग वहाँ पे बैठा करते थे। रमन, राकेश बेदी, अवतार गिल, भरत कपूर, हम सारे लोग वहाँ जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, गपशप मारते थे, एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था, और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए और उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं? मैंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जौहर की तरफ से,

0: एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ और जो भी। तो बोले भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यह जोर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है, सलीम सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
1: जी जी
0: तो मैंने कहा भाई देखो, राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए हैं, डायलॉग तो ये लिखते हैं, तो का बाकी देख लेंगे चीज़ें। अगर आप चाहें तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था, यह जोर की फिल्म दोस्ताना थी या कौन सी थी,
1: दोस्ताना
0: शायद वो। उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जौहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला। जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी,
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी जी
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जोर को एक पॉइंट बोला, जिसलिए उन्होंने बोले देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछली पिक्चर में। तो बोले 10 लाख दिए थे। तो बोले 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखें और गाने भी लिखें। बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने इन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
1: जी जी जी
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीज़ें मिल जाएंगी, जो बख्शी साहब को आप फीस देते नहीं अगर आपको सूट करता है तो। उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, मतलब जावेद मिल रहा है जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे।
1: हाँ
0: लूँगा 5 लाख। मैंने रमेश से कह दिया था, रमेश जी से कहा था कि मैं उतने पैसों में गाने भी फ्री लिखूंगा अगर चाहिए हो तो। मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो ओके हो गया, तो गाने वाने अब साहब। उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है। बोले क्या कास्टिंग होनी चाहिए? मतलब दिलीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर बोले थे, रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर।
1: हाँ इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उस तरह ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी दिलीप साहब ऋषि कपूर की। कम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो हो गया। बोले अब अगला स्टेप, सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुक गए, दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब।
1: कहानी नहीं है,
0: कहानी नहीं है।
1: बाबा
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार,
1: दिलीप कुमार साहब,
0: दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए। पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने, ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब साहब वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिलीप साहब से पहले कह लिए हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का ही सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे, कर लीजिए। वो मान गए, यश जोर की भी इज्जत करते थे, मान गए, पुराना आदमी है यश जोर, भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे समंदर के किनारे,
1: कहानी ढूंढ रहे हैं,
0: कहानी ढूंढ रहे हैं क्या बनाए। वो सब्जेक्ट तो बन चुकी है, वो ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लग।
1: हाँ हाँ
0: तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया।
1: हाँ
0: उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप लिख सकते हैं उनको एज ए राइटर। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा रेट भी आधा हो गया, वो भी सोच रहे थे पिक्चर लेने का। तो उन्होंने भी कहा ठीक है। उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
1: सिलसिला वाला काम
0: शुरू कर दिया।
1: जी
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं, तभी पिक्चर बना थे वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वो वाली
1: शक्ति,
0: नहीं शक्ति नहीं, इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था,
1: मशाल
0: का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था।
1: यश जी ने डायरेक्ट की वो,
0: और वो मैंने ओके किया, मैंने अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट मैं यश चोपड़ा को भी सुना दूं।
1: जी
0: उन्होंने यश जी को सुना दिया, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
1: तो मैंने ओके किया,
0: मैं नहीं बोल सकता था।
1: जी
0: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को भी नहीं बोल सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता हूँ जावेद साहब।

0: उन्होंने मुझे, इसका आइडिया सुनाया, यश जोर को भी सुनाया,
1: दुनिया का,
0: दुनिया का आइडिया, थोड़े दिनों के बाद, दो चार दिन। और फिर ये शबाना शूटिंग कर रही थी आउटडोर में, शायद कौन सी पंक अपने इसकी, कपूर क्या डायरेक्टर हमारा फॉरेन में चला गया, जो देव साहब का भांजा, क्या नाम है,
1: शेखर कपूर,
0: शेखर कपूर, सॉरी सॉरी, शेखर कपूर, नामों में आजकल में गड़बड़ होती है, शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी पहली फिल्म की, कहीं देहरादून या उस तरफ कहीं नॉर्थ, और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी इनके से, जावेद साहब लिखने वहां चले गए शबाना के यहाँ शूटिंग पे, और 34 सीन लिख के ले आए वहां से, और आके हमको सुनाए, बहुत अच्छे सीन थे, बढ़िया, लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही देता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई अब मैं दो तीन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कंप्लीट देता हूँ मैं एक ही पिक्चर लिख रहा होता हूँ उस वक्त, तुम यार अपने दोस्त हो, तुम समझ सकते हो ना, तुम एक शेड्यूल करो। मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे कन्विंस करेंगे 34 सीन से शुरू करके पिक्चर, मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है, स्क्रीन पे तैयार है, मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने। तो ये हम चलते दिलीप साहब से अपॉइंटमेंट लेते, सुनाते, तो सी रॉक बुक किया गया।
1: अच्छा,
0: वहाँ पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा।
1: अरे बाप रे,
0: उनका स्टाइल है जो सुन, इतनी देर सुन सकता हूँ इतने, जो भी उन्होंने सुना, इन्होंने पहले 34 सीन तो पूरे क्लियर थे, उन्होंने सुना दिए, आगे के सीन सुनाए, उनके कुछ एक आध सजेशन जो आई, इन्होंने कुछ आर्गूमेंट दिया, कोई ली कोई नहीं ली, जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था, वो सजेशन ले ली गई, वो फिल्म में रखी गई जो दिलीप साहब की थी, और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे, कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा, मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा, तो मैं 10 बजे सेट पे ला के दूंगा।
1: वाह वाह,
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी,
0: तो तेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो वाकई ऐसा होता रहा, वो देते रहे करते रहे, और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया
0: दुनिया।

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहली जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी,
1: ये ऐसे फिल्म करने का, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी झुककर उनका मेकअप करता था,
0: जी, बहुत बड़े मेकअप मैन,
1: बहुत बड़े मेकअप मैन, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी होते। और जब मैंने नूरी के हम प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की, तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी झुककर का भी शेयर था 5%।
0: वाह,
1: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सती राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे, जो यश जी ने 10% करवा दिए। क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% दे नहीं अच्छा लगता, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश वल्ला ऑपरेटिव कैमरा मैन जो था, 5% KG उनका सीनियर कैमरा मैन, 5% पंडरी झुककर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे, वासुदेव धीरे साहब।
0: जी जी जी, गजब।
1: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की, कि मैंने कहा पंडरी झुककर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है, वासुदेव धीर की 2 बेटियां हैं, उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए,
0: ओहो,
1: मनमोहन कृष्ण का बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है, मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे। उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था, खयाम साहब ये पिक्चर पहले नूरी बनाने वाले थे, जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सर्दी ने उनके लिए लिखी थी।
0: अच्छा,
1: सागर सर्दी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सर्दी ने उनको फिल्म की लिख के दी। जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कुत्ता हीरो है। तो वो उन्होंने तो शुरू में गाने वाने भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके, और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना या 2-4 नहीं हुए, उसके बाद वो चाहते थे कि बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनो,
0: प्रदीप को लेके,
1: लेकिन वो नहीं बन पा रही थी। लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे, और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानेसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे। तो भाई उनको वो सब डिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी झुककर ने

0: दिलीप साहब को बता,
1: दिलीप साहब को बता दी।
0: ओहो, गजब।
1: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, ये जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है।
0: हाँ
1: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिलने मुझसे। तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
0: ओह क्या बात है।
1: वो ही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
0: जी
1: वो पंजाबी, वो वहाँ के थे पिशावर के
0: जी
1: उस तरफ के, और मैं बफा एबटाबाद मानसेरा वाला। तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी, जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो जरा यार के बदले जरा,
0: अच्छा
1: यारा।
0: जी, इसीलिए वो सागर यारा सागर यारा की किताब में आई।
1: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत सब हो गई? उन्होंने कहा बेटा मैं करूँगा, जरूर करूँगा। उस तरह प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस करूँगा। सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा, उसमें बैठूंगा पूरा, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आएगी मैं कहूँगा। कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए हैं, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत। और इस तरह से बात शुरू की
0: और इस तरह फिल्म दुनिया बनी।
1: हाँ।

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर सब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा कि आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप।
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ, बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता उस।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट हो गई थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी,
0: अमृता,
1: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ
0: जी
1: है? फिर गेस्ट रोल में सारा जी। इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दीजिए।
0: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
1: हाँ, तो आप ये तो लोग समझते थे लॉटरी लगी है
0: जी।
1: जो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
0: जी जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
1: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
0: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
1: मैं अलग हो गया ना उनको, उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी उनकी, मैंने तोड़ी नहीं थी।
0: जी जी।
1: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था, पहले मीटिंग हो चुकी थी
0: जी।
1: तो उनके पास, मैं सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, एक दो चीजें। एक पहले मैं लेके गया, एक कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर, उन्होंने कहा मेरे पास श्रीदेवी की डेट है,
0: ओ,
1: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा कि ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्रीदेवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ। फिर आगे वो उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन
0: था,
1: आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने
0: जी,
1: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक होता ना पूरा फुल स्क्रीन पे फॉर्म नहीं, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेटें हैं, जितेंद्र ने कहा मैं ये नहीं हो सकती और डेटें पोस्टपोन करूंगा तो फिर वो हो जाएगा। और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुट्टी, पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं ये बात, वो सोचते हैं। अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
0: जी,
1: कंप्लीट हो गई थी, अभी रिलीज हो गई थी, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा ये है, ये हमारे सोचा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बोलाते, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों जरा अलग बात करना चाहते हैं।
0: ओके।
1: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों वहाँ आए बहुत खुश थे। तो
0: पैसों वगैरह की
1: बात, पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर एज इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय हो गई, दोनों खुश थे। और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों जाए, चावला साहब ओके, बोले 100% ओके।
0: वाह,
1: ओके हो गया सब, हम निकले। हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में, तो रेमनॉड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे जो लिफ्ट से नहीं आए सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड

0: में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए।
1: ओ
0: वो उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
1: जी जी जी
0: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक करके। और वो सब वो मालिक वो आ गया, रेमनॉर्ड मालिक उनका वो आ गया और लोग जमा हो गए। हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है, तो रेमनॉर्ड वाले ने बोला प्लीज यहाँ से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
1: हॉस्पिटल ले गए।
0: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए क्योंकि तो जा चुके थे। मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहाँ बुलाया गया लोकल, उसने कहा नहीं, उनको वहाँ पीछे सीट पे लेटाया हुआ था। मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी। तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहाँ रहते थे वो, और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
1: अटक गया।
0: फिर हटक गया।

0: कभी तो हंसाए।
1: वो प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया, मेरा प्रोड्यूसर ही नहीं रहा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ,
2: हाँ,
1: वो रिलीज होनी चाहिए। अब साहब उस रिलीज के चक्कर में बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज़्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से

0: उससे ज्यादा उधार है, तो सबसे मीटिंग करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपके पैसे मिलेंगे, तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से,
1: जी जी
0: ना चली तो आप सबके लक है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया,
1: बाप रे,
0: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के, तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। मतलब फिर अगली पिक्चर में देखिए आप, संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
1: जी जी जी
0: इस तरह साहब हमारी फिल्म में भाग्य, सरकमस्टांसेस, एक्टर्स का वो, अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
0: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना,
1: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत याद
0: लोग देखते हैं। नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म, अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी,
1: बिल्कुल, और थी भी वो
0: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
1: बड़ी स्टार कास्ट,
0: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा ये नहीं करूँगा, मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले तो शूटिंग, चलो जाओ आते हैं चलते हैं, शिमला शूटिंग हो, वहाँ नॉर्थ में शूटिंग, ओके जहाँ पे बोला जो जिस तरह वो लेने के लिए कि ये विजुअल लो आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए, आप बड़ा कैमरामैन लिया, महाजन साहब कैमरामैन थे,
1: ओहो
0: के महाजन, तो सब चीज़ें उन्होंने किसी चीज़ में कमी नहीं की। चावला साहब डेथ होनी थी और हार्ट अटैक, सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहली बार, तो फिर बाद में पता चला कि उनकी वाइफ ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट, पहले से प्रॉब्लम थी उनकी,
1: जी जी जी,
0: ये अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज इस लंबी बातचीत का तीसरा भाग था। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: उजाले उनकी यादों की, उजाले।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। अभी तक आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 5 बजे हैं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं तेलंगाना में बेहतर बुनियादी ढांचे और निर्बाध कनेक्टिविटी की दिशा में एक बड़ा कदम है।
2: तेलंगाना हैदराबाद के हजारों नौजवानों को रोजगार का माध्यम बनेगा। यहाँ बनने वाली गाड़ियां, मशीनरी,

0: या नगले वाले फूड प्रोसेसिंग उद्योग, ये तेलंगाना के श्रमिकों और किसानों को भी सशक्त करेंगे। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा।
1: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलिरकर ने श्री जोसफ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ नौ मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद रही। प्रधानमंत्री ने सी जोसफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई सरकारी कार्यक्रमों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़े सरकारी कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और भाजपा नेता मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया है। कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्य मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होडियंस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सिखाने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में शाम 7:30 बजे रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत शामिल थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा, उनका प्रसारण समय।

शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे पहाड़ी बोली में भजन संध्या कार्यक्रम। यू मंच कार्यक्रम 5:30 पर आप सुन सकेंगे।

45 मिनट पर आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का अंक रिले किया जाएगा। 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर पुनः आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 10 बजे आज आप सुनेंगे पहाड़ी लोकगीतों का कार्यक्रम दिलों ने मीत पहाड़ी गीत, और चांदनी रातें कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर। 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा, उनका प्रसारण समय।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अब आप सुनेंगे कार्यक्रम पहाड़ी बोली में भजन संध्या। पहाड़ी बोली च भजन संध्या कार्यक्रम सुनने वाले सारे श्रोतियां जो असां दा नमस्कार। आवा कार्यक्रम की शुरुआत सुनते हैं माता दी भेंट।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अंतराल के बाद आ सुन दिन कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

चढ़ के चढ़ाया असा दर तेरे आए, चढ़ के चढ़ाया असा दर तेरे आए, गाके जयकारे लंघना हो मैया जी।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अंतराल के बाद आवाज सुनते कार्यक्रम का अगला लोकगीत भजन। एक कार्यक्रम तुम सुना करते हैं आकाशवाणी हमीरपुर से।

0: अभी आप सुन रहे थे पहाड़ी भजन। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हो चुके हैं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम यो मंच।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

यो दोस्तों नमस्कार। कार्यक्रम सुनने वालों को हमारी सलाम है और उम्मीद है कि युवा साथी कार्यक्रम का इंतज़ार कर रहे होंगे और कार्यक्रम में हम आपका मनोरंजन भी करेंगे, कुछ आपके साथ अपनी बातें भी करेंगे और कुछ जानकारियां भी आपसे साझा करेंगे। तो सबसे पहले आज के दौर में जो हम ज़रूरी समझते हैं आपसे जिस विषय पर बात करना चाहेंगे वो है जीवन में अच्छी संगति। जीवन में देखिए अच्छी संगति बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यह हमारे चरित्र विचारों और भाग्यों को बदलने की शक्ति रखती है। यही हमारे मानसिक विकास और सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि हम और आप उन लोगों के अनुसार ही सोचते हैं और कार्य करते हैं जिनके साथ हम अधिकांश समय बिताते हैं और कहते हैं उसी संगत का असर हमारे मनोदशा पर हो ही जाता है। देखिए अगर हम अच्छा साथ रखेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी में हमारे व्यक्तित्व में सुधार होगा। अच्छे लोगों के साथ रहने से हमारी अच्छाई अपने आप ही बढ़ जाती है। कहते हैं ना कि जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही अगर हम अच्छे लोगों का साथ करेंगे तो कुदरती तौर पर हमारे अंदर भी वही गुण विकसित होते चले जाएंगे। बेहतर निर्णय क्षमता, योग्य और सकारात्मक लोग आपको जीवन में सही समय पर सही उत्साह दे सकते हैं और समय समय पर आपका मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए और हमारी अच्छी संगति होगी, हम अच्छी कंपनी करेंगे तो यह मन से सकारात्मकता, ईर्ष्या और अशांति को दूर कर शांत और उज्जवल विचार प्रदान करती है अच्छी संगति। और अच्छी संगति के बावजूद भी हमारे में सुधार नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर अभी बाकी है। तो उसके लिए हमें आत्म विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। भाग्य में वृद्धि होती है, अच्छी संगति करेंगे, अच्छी श्रेष्ठता आएगी और प्रतिष्ठा अपने आप जो है वो बढ़ जाती है। तो ये दोस्तों अच्छी संगति ज़रूरी क्यों है? हमारी सोच पर असर होता है। जैसे खाएं अन्न वैसा होए मन, अक्सर कहा जाता है। इसी तरह जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। हम चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हों, क्षमतावान क्यों ना हों, प्रतिभावान क्यों ना हों, लेकिन बुरी संगति कहीं ना कहीं हमें अवरोध पैदा कर ही देती है। अगर हम और आप जल्दी सफलता चाहते हैं तो अच्छे और सफल लोगों की संगति करके हम अपने आप को तेज नजरिए वाले व्यक्ति बना सकते हैं। पहचान की बात करते हैं, किसी व्यक्ति की विचारधारा और स्वभाव को जानने का सबसे आसान तरीका उसके मित्रों को देखना है, वो कैसी संगति में रहता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि अच्छी संगति न केवल हमें एक बेहतर इंसान बनाती है बल्कि जीवन में सफलता और कल्याण के लिए भी आवश्यक है। हम देखते हैं कि हम अपने सफर में चल रहे होते हैं लेकिन सफर के कुछ अंतराल बाद हमें ऐसी संगति मिलती है कि हम अपना ट्रैक ही बदल लेते हैं और हम खुद तो परेशानी में होते हैं, अपने परिवार वालों को भी परेशानी में डाल देते हैं क्योंकि परिवार की, माता पिता की और समाज की हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। तो ऐसे में कहते हैं जोश के साथ होश का होना

0: बहुत ज़रूरी है, और अगर हम होश गंवा देंगे तो फिर अपने करियर को भी दांव पे लगा देंगे। कबीर कहते हैं कि 99 का गेड़ा, 99 पे आके हम टिक जाते हैं, हमारा सफ़र लंबा तय हो चुका होता है, लेकिन छोटी सी चूक हमें जो है वो ढर्रे पे बेढर्रा निकाल देती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम सोच समझकर कार्य करें, अच्छे दोस्तों का साथ रखें, और ख़ासकर सकारात्मक जो विजुअल विजन वाले लोग होते हैं उनके साथ हम रहें, ताकि वो हमारी जो प्लानिंग है उसको चार चांद लगाएं, हमें अच्छी गाइडेंस दें, हमें अच्छा मार्गदर्शन करें, ताकि हम समय रहते अपने कार्य को निपटाते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें। कहते भी हैं कि संगति का असर जो है वो देर तक रहता है। जब आप कहीं पढ़ाई के बाद कहीं अच्छी जगह चले जाते हैं तो ऐसे में जो संस्कार अच्छे होते हैं तो आपके अच्छे व्यक्तित्व के मालिक जो है आपको गिने जाते हैं, और वो संस्कार हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण गिने जाते हैं। उसे हमें दुनिया तय करती है कि व्यक्ति किस दिमाग का मालिक है, किस तरह के विचारों का मालिक है, और ये सकारात्मक दृष्टिकोण में कितना माहिर है। तो शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कारों का होना भी बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। ऐसे में हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है और हम एक लोकप्रिय नागरिक की श्रेणी में आ जाते हैं। तो चलिए बातचीत को यहीं विराम देते हैं दोस्तों, और करते हैं आपका मनोरंजन। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक अंतराल।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: अंतराल के बाद आइए सुनते हैं ये गीत।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: अंतराल के बाद युवा दोस्तों कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले जो गीत आपने सुना वो फिल्म थी थ्री इडियट्स। तो गीत में था कि कैसे कोई जाने हमारा फ्यूचर क्या होगा, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे फ्यूचर हमारा अच्छा ही होगा अगर हम अच्छी संगत रखेंगे, हमारा खान पीन अच्छा होगा, हमारे दोस्त अच्छे होंगे, हमारा बिजनेस अच्छा होगा, तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। आइए कुछ लाइफस्टाइल पे या लाइफ मैनेजमेंट पे बात करते हैं। जीवन कठिन हो जाए तब भी अर्थ समाप्त नहीं होता, पीड़ा में हमें धैर्य, हानि में गरिमा और संघर्ष में उद्देश्य, यही मनुष्य को महान बनाते हैं और ये हमारे जीवन में घटनाएं घटती ही हैं। वह हर कैसे को और कैसे को सह सकता है, परिस्थितियां कमजोर कर सकती हैं लेकिन उद्देश्य फिर से हमें खड़ा कर देता है। तो चलिए हम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि परिस्थितियां जैसे भी हों अर्थ समाप्त नहीं होते, पीड़ा में धैर्य रखें, हानि में गरिमा बनाए रखें, संघर्ष में उद्देश्य को हम याद रखें और यही चीज़ें हमें महान बनाती हैं। हम छोटे छोटे प्रयास करते रहें क्योंकि छोटे छोटे प्रयास ही दोस्तों हमें स्थायी बदलाव के लिए ले जाते हैं। जीवन में बड़े बदलाव आवश्यक नहीं, लेकिन जीवन में बड़े बदलाव अचानक नहीं आते, रोज के छोटे छोटे सही फैसलों से ये आते हैं। जो काम आज आसान लगता है वही समय के साथ आपकी दिशा तय करता है। अच्छी आदतें जब लगातार दोहराई जाती हैं तो असाधारण परिणाम पैदा करती हैं। फर्क बड़े कदम नहीं, छोटे कदम लाते हैं। छोटे छोटे निर्णय जो रोज लिए जाते हैं धीरे धीरे बड़े परिणाम देते हैं। सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम समय के साथ आपको सफलता की ओर ले जाता है। और आपको पता ही है गलत आदतें धीरे धीरे हमें पीछे की ओर धकेलती हैं। सफलता किसी बड़े प्रयास का परिणाम नहीं होती बल्कि यह लगातार किए जा रहे छोटे छोटे प्रयासों का जोड़ होती है। कई बार हम अपने आने वाले कल के लिए बहुत चिंता करते हैं, जरूर से ज़्यादा चिंता जो है हमें ओवर थिंकिंग का शिकार बना देती है। परिणाम की चिंता हमें छोड़ देनी चाहिए, हम वर्तमान पर ध्यान दें। जब व्यक्ति केवल अपने वर्तमान पर कार्य के लिए ध्यान केंद्रित करना सीख लेता है

0: तो कहा जाता है तो वह काम बेहद आसान और शांतिपूर्ण हो जाता है। धैर्य और निरंतर अभ्यास ही किसी भी कौशल को स्वाभाविक बना देते हैं। हाँ, असली विकास जल्दी पहुंचने में नहीं बल्कि सही तरीके से सीखने में है। तो हमें जल्दबाजी को छोड़कर टेक्निक को, युक्ति को अपनाना होगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो इस बातचीत के बाद लेते हैं एक और अंतराल।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: अंतराल के बाद युवा दोस्तों, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आपको फिर से लिए चलते हैं संगीत की ओर।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: यह दोस्तों, अंतराल से पहले अभी आपने जो गीत सुना वो फिल्म थी चेन्नई एक्सप्रेस। और आइए अब कार्यक्रम के अंत में आपसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें करते हैं कि हमें खुद पर भरोसा करना सीखना चाहिए। खुद के लिए हम सोचें, खुद के लिए काम करें, खुद के लिए बोलें, स्वयं बने। नकल करना जो है वो बहुत ही बुरी बात है, यानी कि हम जो भी करें वो अपने ढंग से, अपने तरीके से काम करें। कई बार हम निराशा के दौर में चले जाते हैं, मायूसी के दौर में चले जाते हैं, तो ऐसे में हमें घबराना नहीं है। उत्कृष्टता कोई एक कार्य नहीं, आदत है। आप जो चीज़ें सबसे अधिक करते हैं वही आप सबसे

0: बेहतर तरीके से करते हैं। सफलता आपके पास नहीं आती, आपको उसके पास जाना पड़ता है। दृढ़ निश्चय और धैर्य ही दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। यह सोचना कि दूसरे आपके लिए क्या करेंगे बिल्कुल सरासर गलत है। जो कुछ सोचना है वो हमें खुद सोचना है, और जैसा कि हमने पहले कहा कि अच्छे मित्र हों, अच्छे दोस्त हों, अच्छी संगति हो तो हमें वो आगे बढ़ाती है। तो अब इसी के साथ अब ये कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। नमस्कार।
1: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
2: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर A.S. ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
1: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
2: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
0: इसके साथ अभी कार्यक्रम यही संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यू मंच। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। बस थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।

0: माँ केवल एक शब्द नहीं, वह प्रेम की पहली भाषा, त्याग की सबसे शांत प्रतिमा, ममता की अनंत छाया है। माँ का सम्मान किसी एक दिन का उत्सव भर नहीं, बल्कि मानवता द्वारा अपने अस्तित्व के प्रति व्यक्त की गई कृतज्ञता का शाश्वत भाव है।
1: और उसके अंतर्मन की
2: ओह लवली, वेल डन,
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई तार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष 93,176 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, जिनमें से 78,150 उत्तीर्ण हुए हैं। 8,433 विद्यार्थियों के कंपार्टमेंट आई है, जबकि 6,559 असफल घोषित किए गए हैं। परीक्षा परिणाम 83.87% रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट।
7: प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की मेरिट सूची में एक बार फिर छात्राओं का दबदबा देखने को मिला है। मेरिट सूची में कुल 107 विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है, जिनमें 83 छात्राएं जबकि 24 छात्र शामिल हैं। कांगड़ा जिले के निजी स्कूल पहारा की छात्रा अनमोल ने 700 में से 699 अंक लेकर प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि परीक्षा प्रणाली में इस बार कई बड़े बदलाव किए गए थे, जिसके चलते परिणाम में सुधार देखने को मिला है।
8: इस बार जो बोर्ड

0: की पास परसेंटेज है वो है 83.87%, जो पिछले वर्षों के मुकाबले ग्रेजुअल इंक्रीज है। यह दर्शाता है कि बोर्ड पिछले कुछ वर्षों से लगातार एफर्ट कर रहा है, जिसके रिजल्ट आज देखने को मिल रहे हैं। ये अचानक नहीं है। बोर्ड की जो कार्यशैली है, कार्यशाला लगाने, टीचर की ट्रेनिंग के लिए, बच्चों के पेपर का स्टाइल सीबीएसई के मुताबिक करने के लिए, साथ के साथ जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाले, जैसे बच्चों को नीट में चाहिए होते हैं, जेई में चाहिए होते हैं, यूपीएससी में चाहिए होते हैं, वैसे हमने पैटर्न भी चेंज करा। और कुछ उनके मस्तिष्क में था, मानसिक तौर पर तैयार थे कि हमारे हक को चुराया नहीं जाएगा, नकल पे रोक लगेगी, इसलिए वो बेटर परफॉर्म कर पाए।
1: स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रदेश भर में 2384 केंद्र बनाए थे। पहली बार परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग भी की गई। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि आगामी सत्र से परीक्षा केंद्रों में ऑडियो वीडियो कैमरों के माध्यम से निगरानी रखने की भी योजना है। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं सुरेश शर्मा।
2: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10वीं की परीक्षा में सफल होने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। मेधावी विद्यार्थियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये परिणाम उनकी कड़ी मेहनत और पढ़ाई के प्रति समर्पण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने इस परीक्षा में असफल विद्यार्थियों को निराश न होने और नए संकल्प व कड़ी मेहनत के साथ दोबारा तैयारी करने के लिए प्रेरित भी किया। प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार जनता में अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनावी वायदों को पूरा नहीं किया है और केवल झूठे आश्वासन दिए हैं। पालमपुर में आज कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भाजपा पालमपुर नगर निगम के लिए स्पष्ट विजन लेकर आई है और इसे आदर्श नगर निगम बनाया जाएगा। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पालमपुर को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर बेसहारा पशुओं, पार्किंग और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पालमपुर में आज चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से पालमपुर शहर का विकास ठप पड़ा है और केंद्र द्वारा स्वीकृत सीवरेज योजना में भी बड़ा घोटाला किया गया है।
3: विधायक यहाँ वर्षों से कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन पालमपुर जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। लेकिन हट करके कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, बड़ी सोच के साथ करना चाहिए। वो स्थिति 15 वर्षों में आ नहीं सकी। हमारा विधायक यहाँ तो नहीं था, हमारी सरकार थी। हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का जो है हमारा कोर्ट होना चाहिए, हमने वो कोर्ट आपको दिया। पालमपुर में आकर के आप लोगों ने कहा कि बीडीओ का ऑफिस यहाँ पर खुलना चाहिए, बीडीओ का दफ्तर आपको पालमपुर में हमने खोला, लेकिन कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने के बाद उसको भी डिनोटिफाई करके चले गई।
2: जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार आने पर जनभावनाओं का सम्मान करते हुए ग्रामीण इलाकों को उनकी इच्छा के अनुसार निगम से बाहर रखा जाएगा और शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी व गवर्नेंस विभाग को ई गवर्नेंस की दिशा में किए गए नवाचारों और नागरिक केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। विभाग के सचिव आशीष सिंघमार और निदेशक निपुण जिंदल ने शिमला में मुख्यमंत्री को ये पुरस्कार भेंट किए। मुख्यमंत्री ने लोगों को पारदर्शी, त्वरित और सुरक्षित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए विभाग की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तकनीक और नवाचार का उपयोग कर लोगों को प्रभावी, पारदर्शी व सुलभ सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने।

कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने सुनने वाले तमाम श्रोताओं को संजय शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी एक सफर है जिसमें हर मोड़ कुछ नया सिखा जाता है। कुछ रास्ते हमें मंजिल तक ले जाते हैं और वो कुछ हमें खुद से मिलाते हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: सफर सुहाने गाने नए पुराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। अभी आपने कुमार सानू की आवाज़ में गीत सुना, फिल्म थी 1942 अ लव स्टोरी। कार्यक्रम जारी है, लेते हैं एक अंतराल।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: अंतराल के बाद कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सफर सुहाने गाने नए पुराने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: एक दूजे के लिए भी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाज़ें थी एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की। कार्यक्रम सफ़र सुहाने गाने नए पुराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। मिलते हैं आपसे अंतराल के बाद।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू एचपी यूनिवर्सिटी,
1: यूजीसी से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: अंतराल के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

सफर सुहाने गाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। अभी आपने एक गीत सुना, फिल्म थी दिल मांगे मोर और आवाजें थी सोनू निगम और अलका याग्निक की। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी के सफर में अनेक मोड़ आते हैं, कुछ तोड़ते हैं और कुछ जोड़ जाते हैं, लेकिन कहते हैं जीवन चलने का नाम है और ठहरना हमें नहीं है। मुस्काना सीखिए और जिंदगी परेशान ज्यादा नहीं करती।

इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे पहाड़ी बोली का कार्यक्रम गलत संदेश।

गल तुसां दी कारक दुआ सुना करदे न आकाशवाणी हमीरपुर ते कन्नै असां तुहाडे सौगी गलबात भी सौगी सौगी करा करदे हन कन्नै लोक गीत भी तुहाडे सुना करदे हन कैं भी गप्पां सौगी सौगी अगर थोड़ा जिहा मनोरंजन भी हुंदा रहा तो साडा दिमाग जिहड़ा है बड़ा खुश रहिंदा ते इस करके असां तुहाडे सौगी इह भी गल करनी है कि साडी संस्कृति बड़ी मजबूत है साडे लोक गीत बड़े मजबूत हन अपनी संस्कृति सभ्यता कन्नै जिहड़े समर्थ कन्नै समृद्ध लोक परंपरा न तिन्हां दा भी एक आईना है तो इस करके सांझू अपनी संस्कृति सौगी चलना बड़ा जरूरी है। ये भी गलांदे ने कि जिहड़ा पेड़ अपनी जड़ां भुली जाए सर ज़्यादा दिन तक जिहड़ा फलदा फुलदा है नहीं है। इस करके अपनी संस्कृति का सांझू ध्यान रखते हैं अगे बढ़ना चाहिए क्योंकि संस्कृति जिस संस्कृति से पले बढ़े बड़े होए अगे बधे मिलना जुलना लोगों ने होया सांझू संसार सूझया तो सह संस्कृति साढ़े वास्ते जरूर प्रमुखता देवी देवत्या से पूर्ण योग्य है। तो इस करके हुण गलबात जो इत्थे रोकदे हन कने सुणांदे हन तुहानूं एक होर लोक गीत।

रोशनी देवी दी आवाज़ तुसें लोग ये सुनिया कने कार्यक्रम तुसें सुना करदे हन गल तुसें दी आकाशवाणी हमीरपुर ते गल बात करदे करदे तुहानूं जुसां लोक गीत भी सुना करदे हन कने अपनी जिम्मेदारी दी गलबात भी करा करदे हन। एक गलबात तुहाडे सौगी ये भी करनी जरूरी है कि असां जिहड़े हन से कई वारी जदों भी अपना सफ़र करा दे हुंदे ते तुहानूं देखिया होना कि अजकल जिहड़ी नवीं पीढ़ी है सा मोटरसाइकलों पर इतनी तेज़ी ने दौड़ती कि सू लगता कि साड़ा कलेजा भी कंबी जाता सियाने माने तो घबरा ही जाते हैं। तो इस करके जो सौगी सौगी सांझो हो सकना बड़ा भारी जरूरी है क्योंकि जिंदगी बड़ी अनमोल है और ये जिंदगी किसी लक्ष्य हासिल करने वास्ते देती और परमात्मा ने तो इस करके सांझो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना जरूरी है। देखा यंत्रन यंत्रा की एक सीमा बनाई हुई है तिना चलाने लेकिन जल्द उन्होंने बेकाबू होकर ने चलाते हैं तो सांझो इस आफत बनी करी आते हैं असं भी परेशानी पाते समाज परेशानी पाँगा क्या सारे ही परेशानी पाते हैं। इस करके ये सीख तो सारे जो देनी पौनी कि जिहड़े भी साढ़े छोटे न्याणे हैं जवान न्याणे हैं तिन्हें इस समझाना पाना कि भाई जिंदगी बड़ी अनमोल है कि जिहड़ा तुहानू जो व्हीकल दित्ते चाहे मोटरसाइकिल है चाहे गड्डी है इसकी स्पीड जिहड़ी है बिल्कुल ढंगे ने चलानी कने ढंगे ने चलना पौना क्योंकि कई बार असं देखते हैं कि साड़ी जिहड़ी एक ईगो अंग्रेजी गलांदे साड़ा अहम भाव है या साड़ा जिहड़ा जोश है सर इतना सारा पैदा हो जाता तो हाँ आपू तो गांह कुछ बदते नहीं और देखते हैं देखते हैं कला कलेश जिहड़ी से पै जाती। इस करके निम्रता हुए ने चलना ही साढ़े जिंदगी का परम कर्तव्य है। तो खैर सारिया गल्ला तो जो पता है तो समझदार हैं लेकिन साड़ा काम हुंदा टाइमे टाइमे दी गल्लां दे चेता कराना क्योंकि समय समय से जो भी घटनाक्रम घटते असं तो दिखते फिर असं सोचते कि ये पिछे क्या कारण है ये घटनाक्रम कैं घटा करते तो कोई गल नहीं है बस यही है कि साड़ी जी सोच है से एक तरफा हो जाती और सारे घटनाक्रम घटते हैं। खैर हुण इत्थों विराम देंदे हन कि सुणांदे हन तुहानूं कार्यक्रम का एक होर लोकगीत।

भाई हुण कार्यक्रम दा समां भी होआ करदा, कन्ने उम्मीद है तुसां गल्लबात पसंद कीती होनी, तुहानूं गल्लां खरियां लगी होणी। क्या भी गल्लां मेरियां तां अपणियां है नहीं भाई, गल्लां साडे सारे समाज दीआं, असां तुसां दीआं गल्लां, समसमयिक विशे दीआं गल्लां, कन्ने सांझे चिंतन मनन करना ही पौणा, खास करी प्रेम भाव समाज पैदा होए भाई, राग द्वेष चलना दे जिहड़े गल्लां ने सारे दूर होण, कन्ने मीन मेख च असां दूजे कढ़दे रहिंदे ते पहले मेन मेख अपनी भी कढ़ना बड़ी जरूरी है। कन्ने बत्ती गल यह है कि सानजो जिहड़ा असां यातायात दे नियमां दा पालन भी करना जरूरी है, कन्ने खास करी नई पीढ़ी जिहड़ी सानजो समझाना चाहिए बुझाना चाहिए, क्योंकि तिन्हां अंदर जोश हुंदा, सब कुछ हुंदे, माँ बाबा सानजो बाइकां लईतियां गड्डियां लईतियां, लेकिन जल तिन्हें रोड़ बजा तिन्हां दे हाल दिखने वाले हुंदे, सदा तीआं दौड़ांदे तीआं बड़े बड़े दे जिहड़े असे कालजे हिलदे आ जिहड़े असां तुहाडे सोगी चर्चा च लैंदा, इस करके जरूरी है। तां हुण कार्यक्रम दा समां हो करदा, संजय शर्मा जो दे अनुमति, नमस्कार।

अभी आप सुने थे कार्यक्रम गल तुसां दी। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजने को हैं, बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला

0: भी रखी। प्रधानमंत्री इस समय सिकंदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
0: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तमिल अभिनेत्री कडगम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुना गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में एक कार्यक्रम में ये मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ये नौसेना कमान भारत के पश्चिमी समुद्री मोर्चे और अरब सागर के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वे वर्तमान में नौसेना में उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और कई घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15वें ओवर में 3 विकेट पर 157 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 7:05 हुए हैं।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम रेडियो आंधी तान।

0: क्या करे सागर हो अकड़े दिख बार कुण आया मुए बड़े पारी रंग राग लगी दे हुण ता लोहड़ी भी चली आई।
1: इन्या ता अम्मा जो कुछ नहीं सुनोंदा ही है या कनेड़े गीत गात कोई गांदा हो ता सह फटे जसनो यांदा।

0: ए कुर्सी सिरा नहीं चेपकी आई दी थी तेरे ने।
1: अम्मा जी कुर्सी की बड़ी भारी कीमत होती है।
0: हाँ
1: आंखें बंद करो कुर्सी गायब हो जाती है।
0: हाँ ताई तू आखी खुलिया रखदा कने मुंडा ने चिपका रखदा कुर्सी क्या पर चलीदा कुती जो आ तू।
2: मैं ता सोचे कुर्सियां बेचने आले ए ता माठू भाई निकले।
0: हाँ ये तो मुंडा पर ले आया चक्की ने।
1: भाई अम्मा जी मैं तो क्या बताऊँ अपने आप को, सब सफा चट हो गया, सारा ही कुछ गड़बड़ हो गया है।
0: बड़ी बड़बड़ हो अभी कड़ी तो नहीं दित्या वे कराते।
1: वो अम्मा जी मैं बताऊँ आपको बड़ी सीक्रेट जैसी बात।
0: हाँ
1: क्या करूँ बड़ी बड़ी बेइज्जती हो रही मेरी।
0: सच तो कड़ी थी मैं क्यों लगा
1: मेरी तो डिग्री भी बड़ी बेइज्जती वाली हो गई। पढ़ने लगे मैं पढ़ा था ना 5 पूरा।
0: हाँ
1: उसको भी चुनौती आ रही भी तू काहे का पढ़ा हुआ बंदा।
0: पनौती
1: चुनौती
0: अच्छा तू बथेरी पनौती पहले कित्या क्या।
1: वो मैंने क्या करना रो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को तो घर से ही कट दिया।
0: हाँ कुर्सी क्या ले या परसौगी।
1: हाँ माँ जी मैंने चला इसको बचा के रखता हूँ, ये भी ना चली जाए कहीं।
2: ना एड़ा तो नहीं हो सकता ये या पाबी इंगे तपाई तू नहीं कड़ी सकती है ना। कुछ ना कुछ तो तुम्हें पक्का कित्या ही होना।
0: क्या कभी इंडा काम की त्या हुए थे।
1: वो माँ जी मैंने कुछ नहीं किया।
0: हाँ फिर इंगे कड़ी था तू।
1: मेरे को एक फोन जैसा आया।
0: अच्छा
1: बोला श्रीमान जी आपके खाते को चेक करना है, पैन कार्ड नंबर बताए। फिर मैंने बैंक अकाउंट को बताए, मैंने सब बताया उसको।
0: अच्छा
1: बोला जी अब आपका सारा 5G सिस्टम हो रहा हमारा।
0: अच्छा सिम बोले 5G लेनी। अच्छा
1: मैं भी उस चक्कर में पड़ गया।
0: वो महंगा भी था मंडुका है फोन।
1: अच्छा
0: बोले अम्मा तेरे फोन दी सिम 5G करनी बोलिया है। पहले ना मैं बाप जी करनी ना अम्मा जी करनी, खरीद दे जे आई तो दे।
1: वो अम्मा जी आपने अच्छा किया लेकिन मैं चक्कर में फंस गया ना, मैं तुम बातों में आ गया उसकी मैडम की।
2: बड़ी मीठी मीठी गला दी होनी।
1: ओ बड़ी भारी मीठी। श्रीमान जी हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं।
0: अब फिर क्या सेवा
1: की। जब उसने बोला अपना बैंक अकाउंट नंबर बताएं।
0: हाँ
1: मैंने बता दिया।
0: हाँ छोड़ छोड़
1: वो पैन कार्ड भी बताओ। बोले श्रीमान जी अब मैंने पैन कार्ड को भी बता दिया।
0: काड़ा तू
1: पूछो मत आपने। उसने बोला जी आप अपना नाम भी बताओ, मैंने नाम भी वेरीफाई करना है, मैंने नाम भी बता दिया।
0: ना मैं तो श्री भी ले आऊंगा।
1: मैंने बोला श्रीमान मठुराम पुराने गांव वाले।
0: देखत फिर तो इं वाची हो गया होना भूली गया भोग।
1: मैं तो अम्मा जी साथ में आसमान भी होगी क्योंकि 5G आ रही है। अब तो मतलब पूछने वाला कोई नहीं मेरे को, अब तो बड़े चटपट बातें होंगी
0: ना। फिर टीरिया कूती थे
1: अम्मा जी मत पूछो मैं कहाँ से टेरा। मेरे को तो धक्के धक्के मार के घर से बोला निकल यहाँ से, चल वहां से। बोले पुट पटांग काम करके आ जाते हैं। बोले
0: ना फिर तिहे तिग्यो फोन की त्या फिर तिग्यो ने क्या तो खोया सा था दास।
1: वो बड़ा भाई धोखा हो गया अम्मा जी।
2: सही तो पूछा दे पे क्या तो खोया।
1: बड़ा भाई धोखा हो गया, बोलने को मन ही नहीं कर रहा मेरे को तो।
0: ओ दीहा मठुआ चक्कर आई आंदा कुसी नहीं पकड़ना कुर्सी गया समेत गला दीहा डंगे ठगड़ोंदा।
1: अम्मा जी बात आगे बताता हूँ मैं आपको। मैं जैसे जैसे ने बोला बैंक अकाउंट नंबर बोलो।
0: हाँ
1: मैं बैंक अकाउंट नंबर बोलता गया।
0: अच्छा
1: उसने पैन कार्ड बोलो, मैंने थोड़ा ठहरो मैं ट्रंकड़ू में गया, मैंने पैन कार्ड निकाला फटाफट वो भी बोल दिया।
0: अच्छा
1: उसने बोला देखो तमाशा आपका 5G होने वाला। बोले
0: ओ या फेरी।
1: ओ अम्मा जी पूछो ना मैं क्या बताऊँ, अब तो सारे लूट गया मैं।
0: फिर 5G फेरी टैब जी पता नहीं क्या क्या हो गया तेरा फोन।
1: ओ अम्मा जी मुझे को लगता है मैं तो बाप जी हो गया। पूछो मत मेरे को।
0: कितना गए हुआ है फेरी।
1: अम्मा जी मेरे खाते में आए थे, किसी बंदे ने मेरे को भेजे थे बड़े प्यार से ऑनलाइन 550 रुपए।
0: अच्छा 25 पैसे। अच्छा 25 पैसे भी।
1: हाँ 25 पैसे थे, साथ में सॉइल लगाती है ना, शुभ शुभ होता ना ये।
2: अम्मा मिंजो लगा था कुती थे ना शगन आए रहा टिक्का लगी रहा हूँ ना।
0: कदे आप हिक्का लगी था।
1: अम्मा जी टिक्का लगा था, मैं बड़ी ऊंची हाई फाई शादी में गया था, वहाँ ऑनलाइन ही शगन चल रहा था।
0: अच्छा
1: उन्होंने पूछा जी आप अपना खाता दो। बोले फोन नंबर दो, मैंने दे दिया।
0: अच्छा
1: बोले चेक करेंगे आपको ऑनलाइन से जुड़े हैं। मैंने जी बिल्कुल जुड़ा, मैंने चौड़ी छाती करके बोला। 550 रुपए 25 पैसे मेरे अकाउंट में आ गए ऑनलाइन।
0: बड़ा खुश हुआ
1: मैं, बड़ा खुश हुआ। ये तो समझो बड़े खाते में मैंने नंबर दिया, ये तो छोटे खाते की बात बता रहा अभी मैं।
0: कितना रखी थे वो छोटे बड़े।
1: दो खाते हैं माजी, एक में बड़ा एक में छोटा, इसमें छोटा अकाउंट था।
0: अच्छा
1: 550 रुपए 25 पैसे।
0: अच्छा
1: अम्मा जी जैसे ऑनलाइन में आए बेचारे वैसे ही ऑनलाइन में चले गए।
0: अच्छा गा संघासी आए कने गा संघासी निकली।

0: 5G के चक्कर में मैं तो रगड़ गया काम अपना।
1: अब मुंडूगा पैसे गवाई देते हैं।
0: पूछो मत, मेरे को तो घरवाली ने बोला चला जाए यहाँ से, मेरा दिमाग मत कहा बोला।
2: अरे एक सूट नहीं आई ना हाथा।
0: हाँ ये बोला उसने,
1: चले
0: गए
1: मैंने
0: सब बोला उसको, मैं ब्रेकफास्ट कराओ मेरे को, ढंग की चाय बिलाओ, कुछ नहीं ऐसा और लाएंगे। बोले नहीं चले जाओ, मेरे को तो सूट के सुपने आ रहे हैं। बोले अम्मा जी अब तो मैंने कहाँ से लगा रहा हूँ हाथ भी, ऑनलाइन के चक्कर में तो भाई बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है सारा काम।
2: माटू भाई दिखाड़ा होता ये है ना, फिर अहा जो इस तरह के बड़े सारे फोन आंदे हैं ना, ठीक है, तो अहा जो तुझे समझदारी बरतने पौंदी।
0: वैसे श्रीमती सागरी देवी जी जरा विस्तार से बताओ क्या समझदारी करनी पड़ती है।
2: श्रीमती नहीं मैं, मैं सिर्फ सागरी आई।
0: ओ नहीं नहीं रिश्ता हो गया आपका, मुझे पता लगा था। जितनी भी थे ना पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई क्या बोलते चंटू पंथी सब
1: चली गई,
0: खत्म हो गई, पतीले में बढ़ गई।
2: ज्यादा चंटीगिरी नहीं करनी आई, कने समझदारी ने काम करना।
1: पूरे घरांच गलांदा फिरदा पे पांच पाड़ी दा, पांच पाड़ी दा, तिग्यो ते ताऊ दो पाड़ी दी बड़ी अकल बांधी वे।
0: अम्मा जी मैं था चंटू पंत।
1: हाँ।
0: और आप चंटू पंती के साथ समझदारी भी रखते हैं, और मैं अपनी समझदारी जब गैब कर देता हूँ तो ये झटके लग जाते हैं।
1: अवे बड़े बड़े अंधी समझदारी चली आधी ताली जे फोन आ दे।
0: हाँ
2: ठीक गला दे हैं, इड़ा उन्दे ये या पे दिखा हाँ जो कई तरह दे फोन जे आंदे, कने ये फोन जे उन्दे इकी तरह ते धोखाधड़ी वाले फोन उन्दे, कने आहे के करदे पे उत्साह च इना जो जे जानकारियां दे दिंदे पे हमारा खाता नंबर है या फोन नंबर है या नौ पता सब कुछ दसी देना, कने फिर क्या होना है या पे ऑनलाइन ही तुम्हारे पैसे जैसे कटोई आंदे।
1: हाँ फिर कहेंगे जो चेक करा दे वे
2: मेरे माठू जो।
0: वैसे श्रीमती सागरी जी,
2: हाँ जी,
0: आज जो आप बड़े बड़े लच्छेदार प्रवचन कर रहे हैं इसके, तो मेरे को पहले बताया तो मेरे 500 रुपए 25 पैसे नहीं उड़ते खाते से।
2: कदी पुछा गल बात कितनी कदी
1: ना सार ते चांट बनी दा फिर दा घरां ची खबरां पूर गया दुनिया दिया देनिया कने अपना पता ही नहीं।
0: अम्मा जी मैं पढ़ाऊं पांच।
1: हाँ।
0: ये तो कम से कम बीए से ऊपर चली गई है।
1: मौका पहल के पांच पढ़ी थे ना, आजकल दे बीए पढ़ी दे बराबर होंगे।
0: पर अम्मा जी हम बड़ी मुश्किल से पढ़े ना कम से कम बीए।
1: हाँ।
0: हाँ। स्कूल में जाते थे तो हम चले जाते थे पांच पट्टी में।
1: अक्कल खरी थी पर तू पलेटे चाय गया।
0: हाँ, हाँ। ये बोला आपने बड़ी सच की बात
2: बताई ना। माठू भाई कुर्सी नहीं चक्की रही सच स्कूल याद आ रही
0: मेरे को, जब बोला घर से भी चले जाओ आप तो मेरे को अपने पहली क्लास की याद आ गई।
1: माठूंगा सोचा फिर
0: जैसे हम उठाते थे ले आओ कुर्सी मारी हो मैं सिर पे उठा के कुर्सी, चल मैं माटू कुर्सी उठा के आ रहा, और क्या बचा मेरे पास। छोटा खाता तो हो गया साहब।
1: अच्छा
0: अब बड़े को मैं देख रहा हूँ उसको मैं क्या बोलते हैं अम्मा जी अंग्रेजी में सागरी लॉक कराते हैं।
2: हाँ लॉक करा लेना।
0: अच्छा
1: दया ना पे अक्कल कर नहीं हूं पेरी दी भावना दे लपेटे
2: पर एक गल ही अम्मा।
1: हाँ
0: बोले श्री मान रहा हो गया जो कुछ होना था लेकिन सच सच बता दे पैसा कहाँ से आया हुआ था ये। ओ मैं इतना मत तू भी मत खुश हो, मेरे को भी ऑनलाइन, तू भी ऑनलाइन ही ले गए, तेरे भी ऑनलाइन ही जाएंगे।
1: देखा भाई आज कल ठगी गया था शिकार हुआ दे एकदम जे आज रिपोर्ट लिखाना चाहिए क्योंकि ठगी छोटी हो चाहे बड़ी हो धोखा तो धोखा ही आवे।
0: तो मैं तो जाऊंगा ठाणे अब।
1: हाँ जाना कना रिपोर्ट लिखानी है उठी कल जो तनी होगा दिया पीरी काम।
0: अम्मा जी मान लो मेरे तो 500 रुपए 25 पैसे थे।
1: हाँ
0: अब किसी के बड़ी बड़ी राशि हो तो फिर गया काम से।
1: फिर कहेंगे हार्ट अटैक हो याद कहेंगे चक्कर आई याद तंजे मते पैसे चली आने तथा दे होना ही है मुगा।
2: तमा हर बारी शगन आ रही पैसे थोड़ी ना आ रहे होंगे मेहनत रही कमाई जी इसे खाते च रखी रही होंगी भाई औखे वेले कमांगी।
0: वो खाता लगा ना मेरे को पता साफ हो गया।
1: हाँ।
0: अटैक मेरे को भी आया था भूख नहीं लगने का।
1: अच्छा
0: भूख ही नहीं लगी मेरे को अटैक हो गया।
1: संजो कितना खाए ला इकट्ठे।
0: मैं कहता हूँ पानी का भी अटैक आ गया, पानी भी नहीं पिया जाए।
1: अच्छा
0: हाँ।
1: तो बुरा हाल
0: हुआ। तो सागरी मेरे को बताओ भी थोड़ा सा मेरा दिमाग गड़बड़ हो गया अभी, करना क्या चाहिए मैं क्या करना चाहिए इसको ऐसी
2: सतर्कता बरतनी आई कुछ जो भी अपने खातरी जानकारी जी से इंजनी देनी कने बैंक पास से इस तरह का कोई फोन कोई मैसेज जैसे आज नहीं।

लोकगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। अभी आपने राजेश्वरी वाली की आवाज में ये लोकगीत सुना। आइए अब सुनते हैं सोहन सिंह की आवाज में अगला गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: अंतराल के बाद आओ सुनते हैं कार्यक्रम दागला लोकगीत।

0: राकेश चंद की आवाज़ में भी आपने ये लोकगीत सुना। लोकगीत आप सुन रहे हैं एफएम हमीरपुर से। मिलते हैं आपसे अंतराल के बाद।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं, FM हमीरपुर से।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है।
3: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
4: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर ए एस ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
3: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
4: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
2: हम आकाश

सत्यनिष्ठा, दयालुता, करुणा, आत्म अनुशासन, साहस, न्याय और सम्मान दूसरों की संपत्ति और अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य हैं।

सही और गलत के बीच अंतर करने और कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहने में नैतिकता हमें मदद करती है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:45 होने को हैं। बस थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना,
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना, और ये
1: मेरी गुड़िया की ना।
2: पर दादी आपके नाम?
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
1: क्या
4: आरबीआई कहता है?
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम, मेरिट सूची में बेटियों का दबदबा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से काम करने का लगाया आरोप। पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन, 26, 28 व 30 मई को तीन चरणों में होगा मतदान। और प्रदेश में कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार, 15 मई तक अधिकांश स्थानों पर वर्षा व ओलावृष्टि का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष 93,176 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, जिनमें से 78,150 उत्तीर्ण हुए हैं। 8,433 विद्यार्थियों के कंपार्टमेंट आई है, जबकि 6,559 असफल घोषित किए गए हैं। परीक्षा परिणाम 83.87% रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट।
7: प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की मेरिट सूची में एक बार फिर छात्राओं का दबदबा देखने को मिला है। मेरिट सूची में कुल 107 विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है, जिनमें 83 छात्राएं और 24 छात्र शामिल हैं। कांगड़ा जिले के निजी स्कूल पहाड़ा की छात्रा अनमोल ने 700 में से 699 अंक लेकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। बोर्ड के अध्यक्ष राजेश शर्मा के अनुसार परीक्षा प्रणाली में इस बार कई बड़े बदलाव किए गए थे, जिसके चलते परिणाम में सुधार देखने को मिला है।
8: इस बार जो बोर्ड की परसेंटेज है वो है 83.87%, जो पिछले वर्षों के मुकाबले ग्रेजुअल इंक्रीज है। ये दर्शाता है कि बोर्ड पिछले कुछ वर्षों से लगातार एफर्ट कर रहा है, जिसके रिजल्ट आज देखने को मिल रहे हैं। ये अचानक नहीं है। बोर्ड की जो कार्यशैली है, कार्यशाला लगाने, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, बच्चों के पेपर का स्टाइल सीबीएसई के मुताबिक करने के लिए, साथ के साथ जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाले, जैसे बच्चों को नीट में चाहिए होते हैं, जेई में चाहिए होते हैं, यूपीएससी में चाहिए होते हैं, वैसे हमने पैटर्न भी चेंज करा। और कुछ उनके मस्तिष्क में था, मानसिक तौर पर तैयार थे कि हमारे हक को चुराया नहीं जाएगा, नकल पे रोक लगेगी, इसलिए वो बेटर परफॉर्म कर पाए।
7: स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रदेश भर में 2,384 केंद्र बनाए थे। पहली बार परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग भी की गई। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि आगामी सत्र से परीक्षा केंद्रों में ऑडियो वीडियो कैमरों के माध्यम से निगरानी रखने की भी योजना है। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं सुरेश शर्मा।
6: इस बीच प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल करने वाले कांगड़ा जिले की छात्रा अनमोल ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और अध्यापकों को दिया है। अनमोल ने बताया कि उनका सपना भविष्य में अध्यापिका बनना है।
9: नाम अनमोल है और आज 10th बोर्ड का रिजल्ट निकला है। मैंने फर्स्ट रैंक हासिल की है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं रोज 5 से 6 घंटे पढ़ने बैठती थी और इसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स, मेरे सभी टीचर्स और स्पेशली हमारे स्कूल के एमडी मैम, प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल सर को जाता है।
6: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10वीं की परीक्षा में सफल होने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। मेधावी विद्यार्थियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये परिणाम उनकी कड़ी मेहनत और पढ़ाई के प्रति समर्पण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने इस परीक्षा में असफल विद्यार्थियों को निराश न होने और नए संकल्प व कड़ी मेहनत के साथ दोबारा तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार जनता में अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनावी वायदों को पूरा नहीं किया है और केवल झूठे आश्वासन दिए हैं। पालमपुर में आज कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भाजपा पालमपुर नगर निगम के लिए स्पष्ट विजन लेकर आई है और इसे आदर्श नगर निगम बनाया जाएगा। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पालमपुर को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी व गवर्नेंस विभाग को ई गवर्नेंस की दिशा में किए गए नवाचारों और नागरिक केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। विभाग के सचिव आशीष सिंघमार और निदेशक निपुण जिंदल ने शिमला में मुख्यमंत्री को ये पुरस्कार भेंट किए। मुख्यमंत्री ने लोगों को पारदर्शी, त्वरित और सुरक्षित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए विभाग की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तकनीक और नवाचार का उपयोग कर लोगों को प्रभावी, पारदर्शी व सुलभ सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद, कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने बेसहारा पशुओं, पार्किंग और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। पालमपुर में एक चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से पालमपुर शहर का विकास ठप है और केंद्र द्वारा स्वीकृत सीवरेज योजना में भी बड़ा घोटाला किया गया है।
10: विधायक यहाँ वर्षों से कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन पालमपुर जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। लेकिन हट करके कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, बड़ी सोच के साथ करना चाहिए। वो स्थिति 15 वर्षों में आ नहीं सकी। हमारा विधायक यहाँ तो नहीं था, हमारी सरकार थी। हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का जो है हमारा कोर्ट होना चाहिए, हमने वो कोर्ट आपको दिया। पालमपुर में आकर के आप लोगों ने कहा कि BDO का ऑफिस यहाँ पर खुलना चाहिए, BDO का दफ्तर आपको पालमपुर में हमने खोला, लेकिन कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने के बाद उसको भी डिनोटिफाई करके चले गई।
6: जयराम ठाकुर ने धर्मशाला के दाड़ी में भी चुनाव प्रचार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार केवल बदले की भावना से काम कर रही है और जनहित की योजनाओं को रोक रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करने का आह्वान किया। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। 7 और 8 मई को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान प्रदेश भर में 42,562 उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन भरे। अभी तक कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 7,396 नामांकन भरे गए हैं। नामांकन पत्रों

0: की जांच 15 मई को की जाएगी और इसी दिन चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। पंचायत चुनावों के लिए मतदान 26, 28 व 30 मई को 3 चरणों में करवाया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। ऊना जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में 3,79,459 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि ऊना जिले की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिले में 1,88,945 पुरुष जबकि 1,84,724 महिला मतदाता है। भाजपा ने सोलन नगर निगम चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 4 कार्यकर्ताओं की प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दी है। भाजपा ने स्पष्ट किया कि पार्टी संगठन विचारधारा और अनुशासन के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं की करेगी। पार्टी ने उम्मीद जताई कि सोलन की जनता विकास, पारदर्शिता व मजबूत नेतृत्व के पक्ष में मतदान करेगी और भाजपा को भारी जन समर्थन प्राप्त होगा। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे। राज्य में मई महीने के दूसरे सप्ताह में भी ठंड बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार कल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का अनुमान है। विभाग के अनुसार मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने कल 11 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए येलो अलर्ट, जबकि 12 और 13 मई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए ऑरेंज व अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री आज शिमला में उनसे मिलने आए हिमाचल प्रदेश साइंस मास्टर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में पुरानी पेंशन योजना को बहाल रखेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। मेरिट सूची में बेटियों का दबदबा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से काम करने का लगाया आरोप। पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन। 26, 28 व 30 मई को 3 चरणों में होगा मतदान। और प्रदेश में कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार। 15 मई तक अधिकांश स्थानों पर वर्षा व ओलावृष्टि का अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

हमें परिस्थितियों से निपटना आना चाहिए। विकट परिस्थितियों में हमें कभी भी घबराहट में नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेकशील बनते हुए हमें उनसे लड़ना सीखना होगा। एक अच्छा व्यक्तित्व बनने के लिए हमें निष्पक्षता से रहना बहुत जरूरी है। हम अधिकारों का सम्मान करें और उतने ही ढंग से अपने कर्तव्यों का भी पालन करें।

नैतिकता के आदर्शों पर चलने वाले व्यक्तित्व कभी डिगमगाते नहीं, बल्कि ऐसी चुनौतियों से सामना करते हुए वे औरों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन जाते हैं।

प्यार से बोलना एक बहुत बड़ा टॉनिक है। किसी की भावनाओं को हम आहत ना करें और प्यार से बोलें तो इसके लिए बहुत बड़ा एक उत्साह भरी बात हो जाती है।

0: कहा भी जाता है इस दुनिया में सबसे प्रिय व्यक्ति वह है जो दूसरों का बोझ हल्का करता है और उनके दुख सुख में शामिल होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
4: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं कल्पनाथ सिंह की लिखी हास्य नाटिका यात्रा प्यारे लाल की।
1: जी पाँव लागी।
2: आयुष्मान यजमान आयुष्मान, भगवान भला करे, सब कुशल मंगल तो है प्यारे लाल जी?
1: आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है पंडित जी।
2: अच्छा अच्छा, ये संध्या समय कैसे आगमन हुआ, क्या कोई खास बात है?
1: बस एक निवेदन है पंडित जी। हाँ। असल में ससुराल जाने का इरादा है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि कोई शुभ मुहूर्त इस यात्रा के लिए आप बता दें तो बड़ी कृपा हो।
2: क्यों नहीं, शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी, शुभ दिन, सब कुछ आपको बता देता हूँ। जरा पत्ता देखकर अभी विचारता हूँ। यजमान
1: जी,
2: इसके पहले आप कितनी बार ससुराल हो आए हैं?
1: पंडित जी, सच बात तो यह है कि अभी तक मैं एक बार भी ससुराल नहीं गया। ये मेरी ससुराल की पहली पहली यात्रा होगी।
2: क्या क्या क्या क्या कहा यजमान, क्या इसके पहले आप एक बार भी ससुराल नहीं गए?
1: जी नहीं।
2: इस युग में ससुराल की यात्रा में इतना विलम्ब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो लगता है आप जरूर कुछ भूल रहे हैं।
1: नहीं नहीं नहीं पंडित जी, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ कि ब्याह के बाद आज तक मैं ससुराल नहीं गया।
2: जरूर कोई कारण होगा, खैर कोई बात नहीं।
1: पंडित जी, बात यह है कि मुझे पहले बड़ी शर्म लगती थी और फिर मेरी पत्नी मालती ने भी मुझसे कई बार कहा, लेकिन पंडित जी क्या करें, कोई जुगाड़ ही नहीं लगा। अब गलती हो ही गई।
2: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।

0: है, दुरुस्त है। हाँ तो आज कौन सा दिन है?
1: आज
0: रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी तीन दो पांच, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। भगवान भला करे मंगलवार को प्रातः 4:21 से पूर्व ही आपकी यात्रा का योग बन रहा है।
2: अच्छा अच्छा,
0: इसके बाद कोई योग नहीं बनता जजमान।
1: ठीक है पंडित जी, हम वक्त से पहले ही निकल जाएंगे यात्रा के लिए।
0: आयुष्मान, भगवान भला करे।
1: अरे पंडित जी, मैं तो भूल ही गया था, ये लीजिए आपकी दक्षिणा, क्षमा कीजिएगा, जल्दी में था ना, इसलिए भूला जा रहा है।
0: अरे जजवान, ससुराल को जा रहे हो, भूलोगे क्यों नहीं, ससुराल से लौट कर दे देते।
1: अरे नहीं पंडित जी, ये तो इस वक्त शुभ मुहूर्त निकालने के लिए मात्र पत्र पुष्प अर्पित किए हैं। ससुराल से लौटने पर तो मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ आपके दर्शन को आऊंगा और गांठ जोड़ के आपके चरण छूंगा। अच्छा मैं चल रहा हूँ,
0: भगवान आपकी यात्रा शुभ कुशल पूर्वक हो रहे।
1: मालती, पंडित जी ने तो भाई कमाल ही कर दिया, एकदम कमाल।
3: अरे क्या कमाल कर दिया पंडित जी ने?
1: तुम जितना आसान समझती हो मुहूर्त उतनी आसानी से नहीं निकलता है। जैसे बगुला पानी में खड़ा खड़ा मछली को दबोच लेता है ना, ठीक उसी तरह हमारे पंडित जी भी पत्रा में आंख पहले तो गड़ाए रहे और फिर मुहूर्त मिलते ही उसे दबोच दिया। अरे आज मैं पंडित जी को मान गया।
3: अरे बस वो भी क्या, अरे बखानी किए जाओगे या ये भी बताओगे मुहूर्त कब का और किस दिन का निकला?
1: अब तैयारी करो तुम जल्दी से, ज्यादा देर नहीं है, केवल 3 दिन का मामला है।
4: अरे वो बहुरिया का प्यारे आए गवा।
1: हाँ अम्मा, मैं आ गया। अरे अम्मा, पंडित जी ने सुमुहूर्त जैसे निकाला ना, मैंने दक्षिणा उनके मुंह पर ठोंकी और सीधे घर आ गया।
3: अरे तो साफ साफ बतावत का ही नहीं है भैया कि पंडित जी ने किस समय की मुहूर्त की बात की है। अरे ये बच्चन की तरह पवारा का ही गाय रहे हैं।
1: अरे अम्मा, मैंने मालती से पहले बता दिया कि अब ज्यादा समय नहीं, केवल 3 दिन बाकी हैं। पंडित जी बोले त्रयोदशी अर्थात मंगलवार को सवेरे 4:21 से पूर्व ही हमारी ससुराल यात्रा आरंभ हो जानी चाहिए, विलंब करने से फिर ससुराल यात्रा का जल्दी कोई जोग नहीं बनता।
3: तो इतनी सी बात बतावे के लिए इतना नाटक रचावे की कौन सी जरूरत रहे भैया? अरे बहू देख, कोई समय ज्यादा नहीं है, तू इसके भरोसे ना रहना, सारी तैयारी पूरी कर, समझ गई? अरे इसका क्या, ठीक ऐन बखत पे पता चलेगा कि कपड़ा लत्ता ही ठीक नहीं किया।
1: ए मालती, कान खोल कर सुन लो, मेरी पहली ससुराल की यात्रा का मामला है, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ए ससुराल वाले भी समझ जाएंगे कि कोई दामाद राजा आए हैं।
5: हाँ, क्या बीनोग आप कुछ समझे नहीं है क्या?
1: अरे जब समझे थे तब के प्यारे लाल और आज के प्यारे लाल में बड़ा फर्क हो गया है।
5: अच्छा?
1: अब श्री प्यारे लाल को समझने के लिए भेजे की जरूरत, समझी? अब कोई आसान नहीं मुझे समझना।
3: अरे बहू तुम भी बेकार ही इसके मुंह लगी हो, जाओ अपना काम करो।
5: माँ जी इनको समझा दीजिए, अगर इसी तरह वहाँ जाकर भी बड़बड़ाया करेंगे तो लोग क्या कहेंगे?
1: अरे कहेंगे क्या है? प्यारे लाल की बातों को प्यारे लाल को अब समझना कोई आसान काम नहीं रह गया। तुम लोग क्या जानो प्यारे लाल और उनकी बातों को, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराए।
5: अच्छा जी ठीक है, मैं तो भैंस हूँ ही ना, 2-3 दिन बाद आपको भी खुद अपनी स्थिति का पता चल ही जाएगा।
1: तुमको भी बड़ा गुमान है ना अपने मैके वालों पर?
5: ना हो?
1: मैं भी अब देखता हूँ उनको वहाँ जाके।
5: जाइए जाइए, जी भर कर देख लीजिए, अरे कहीं महंगी ना पड़ जाए आपकी पहली ससुराल यात्रा।

0: बस में फंस गई बाम घर तीन खीसे न काढ़ो घर चलो। अरे भैया ए सुनो, गोपालपुर गांव अभी कितनी दूर है?
1: गोपालपुर गांव
0: जी?
1: अरे भैया गोपालपुर नाम का गांव इधर तो कोई है नहीं।
0: भाई साहब यहीं कहीं गोपालपुर गांव है। अरे वहीं तो मेरी ससुराल है, असल में रास्ता भूल गया था इसलिए आपसे पूछा।
1: स्टेशन के कौन तरफ है यू गाँव?
0: स्टेशन से इधर ही बिल्कुल पूरब की तरफ।
1: राम राम राम। अरे भैया तब तो आप बिल्कुल ही गलत आए गए। अरे आप

0: तो स्टेशन से पश्चिम काफी दूर चले आए।
1: पश्चिम?
0: अब ऐसा करो पुना स्टेशन लौट जाओ और स्टेशन से पूरब की तरफ 3-4 मील दूर कोई गोपालपुर नाम का गांव है,
1: अरे
0: वहीं किसी से पूछ लीजिएगा।
1: अरे सुनो सुनो सुनो, तो ये स्टेशन से पूरब

0: करते हैं? सुनिए, क्या आप मेरी ससुराल के रहने वाले हैं?
1: अरे जाइए जाइए, अपना रास्ता लीजिए। आप क्या कहते हैं, आपकी बीबी क्या कहती, मुझे क्या लेना देना है? न मैं आपकी ससुराल का हूँ और न मैं आपको जानता हूँ। अरे रास्ता भूल गए हो तो बतलाए दे रहा हूँ, वरना अपना रास्ता लीजिए आप। रात हो जाएगी तो अच्छी तरह ससुराल पहुँच जाइएगा।
0: हाँ सही कह रहे हैं भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है आज तो तुम बुरे फंस गए प्यारे लाल। चलो बेटा वापस स्टेशन। तो क्या वाकई मुझे दिशा भ्रम हो गया? मैं तो पंडित जी से मुहूर्त पूछ के चला था, ये ससुराल की यात्रा भी जीवन भर याद रहेगी। ना कोई सवारी, ना कोई सुविधा, बस पैदल परेड। हे भगवान। अब मैं स्टेशन के पूरब तो आ गया, नहीं आगे नहीं जाऊंगा, यही किसी से पूछ लेता हूं, कहीं बेकार में फिर से परेड करनी पड़ जाए। सुनिए भाई साहब, सुनिए।
1: हाँ कहो।
0: मैं पूछ रहा था कि मैं स्टेशन से पूरब की तरफ जा रहा हूँ ना?
1: बिल्कुल ठीक, पूरब की तरफ जा रहे हो, जाना कहाँ है?
0: जी मुझको गोपालपुर जाना है। वो सामने वाला गांव क्या गोपालपुर ही है?
1: बिल्कुल ठीक पहुँचे, वही गोपालपुर है। सकल से लागत तो पहले पहल आए हो।
0: जी हाँ जी हाँ, इस गांव में मेरी ससुराल है।
1: अच्छा अच्छा, गोपालपुर में तुम्हारी ससुराल है?
0: जी
1: है? हमारी शकल का देख रहे हो, शाम हो गई है, रास्ता तुमको मालूम नहीं, कहूँ रास्ता भूल गए तो जल्दी जाओ।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बाप रे, तो बड़ा सन्नाटा। बड़ा अंधेरा बढ़ता जा रहा है। कृष्णगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अरे कुत्ते भूख रहे, कहीं काट न ले। दीनदयाल व्रत संभारी, हर नाथ संकट भारी।
2: ए नाथ, आगे बढ़े तो एक एक को देख लूंगा,
0: भूत के साथ निकट नहीं आवे, महावीर ने जब नाम सुनावे। अरे भाई कोई है? अरे भैया कहाँ चले जाए?
1: अरे जीजा जी, अरे जीजा जी हाँ,
3: अरे बड़ा गजब हो गो, अरे बड़ा अनर्थ हो गो,
4: अरे जीजा जी का पुत्र का
0: आदमी। अरे भैया आप तो हमका पहचान गए, इसे सुर कुत्ता नहीं पहचान पाए, इतने कुकुर पाले रहो। हाँ, देखो काट लीस, खून निकल रहा है।
5: अरे बेटा प्यारे लाल, तुमने इतनी देर लगा दी, आना ही था तो पहले खबर कर दिए होते।
0: अरे बाबूजी,
5: कोई बैलगाड़ी लेकर स्टेशन आ जाता। प्यारे लाल ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, देखे भैया कहाँ काट लिया।
0: देखो बाबूजी पाओ माँ
5: चोरे तीरा,
0: चोना चोना
5: कुत्ता पालने का बड़ा शौक लगा था ना तुझे, अब हुआ ना अनर्थ, जवाई बाबू को ही काट लिया। अरे जा मर, क्या देख रहा है, पानी लाकर घाव धो और तुरंत से जाकर वैद्य जी को बुला ला।
3: अरे अब वैद्य जी आकर क्या करेंगे बाबूजी? अरे इसके लिए तो बस एक ही दवा है, सुई।
0: अरे
3: सुई वो भी लगेगी अस्पताल में कल सवेरे।
0: मर गए सुई। अरे मेरी अम्मा, अरे ससुराल आए के ससुर कुकुरों का मतोर लीज। अरे मालती, तुम्हें अपने मायके का बड़ा गुमान था ना, तो मेरी मति मारी गई थी जो 3 दिन की छुट्टी रही थी, पंडित जी से सारी पूछ के चले आए थे। दिशा भरम, उसके बाद पश्चिम की पद यात्रा, उसके बाद पूरब की पद यात्रा, उसके बाद इस ससुर कुकुर कांड। एक एक कई के पेट में बड़ी बड़ी 14 सुई। अरे अरे वारे मेरी ससुराल यात्रा।

तो ये थी हास्य नाटिका यात्रा प्यारे लाल की। इसे लिखा कल्पनाथ सिंह ने, निर्देशिका चंद्र प्रभा भटनागर। अभी आप आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति सुन रहे थे।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अलका याग्निक की, गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे ए आर रहमान। गुलजार का ही लिखा एक और गाना आइए सुनते हैं, ओमकारा फिल्म से।

रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजों में ओमकारा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे विशाल भारद्वाज। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए लेते हैं बहुत छोटा सा ब्रेक।

0: जुबिन नौटियाल की आवाज में आप सुन रहे थे मुंबई सागा फिल्म का ये गीत। मनोज मुंतशिर और ने इस गीत को लिखा था और तनिष्क बागची ने इस गीत को संगीत से संवारा था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

मीका सिंह और साथियों के आवाजों में आप सुन रहे थे तमाशा फिल्म का गीत। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा था और ए आर रहमान ने इस गीत की धुन बनाई थी। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
3: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
5: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें
4: Mr. Modi said today India is advancing on reforms express and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that center will continue to work with greater speed to realize your dreams.
5: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है ये इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है
4: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, it is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion, and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit institution in Hyderabad. Later, Prime Minister Narendra Modi addressed a public meeting in Hyderabad this evening. Mr. Modi said the people of Telangana are seeking change after being let down by both the BRS and the Congress. He said only the BJP's double-engine government can fulfill public aspirations and ensure development. He added that the BJP has formed government in West Bengal with a strong mandate and expressed confidence that similar support is emerging in Telangana.
6: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है यहां बीजेपी का हर कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है
4: The Somnath Temple, located at Prabhaspatan in Gujarat and widely revered as the foremost of the 12 Jyotirlingas, is marking 75 years since its reconstruction. To commemorate the occasion, the Somnath Amrit Parv is being celebrated. The Somnath Temple has also come to symbolize enduring pride and cultural identity. Prime Minister Narendra Modi will participate in the celebrations tomorrow at Prabhaspatan and will also address a public gathering on the occasion. We have a report.
7: Prime Minister Narendra Modi will attend the Somnath Amrit Parva 2026 celebration tomorrow on the occasion of 75 years of the reconstruction of the first Jyotirlinga Somnath Mahadev Temple. In view of Prime Minister Vijay's tight police security arrangements have been made in Prabhaspatan. Meanwhile, today Prabhaspatan witnessed a unique confluence of spirituality, patriotism and military strength. The Indian Air Force conducted an air show rehearsal in which pilots won the heart of people with their daring aerial performances. Rehearsals for cultural program also showcased a special Bengali presentation along with glimpse of Gujarat folk culture. On the occasion of Amrit Parva, the temple premises have been specially decorated with flowers. In addition, the statue of Hamirji Gohil on main road has been also adorned with floral decoration. At the same time, an atmosphere of enthusiasm is being seen among devotees and tourists as well. Mayur Solanki, Akashwani News, Somnath.
4: Har, har, Union Home Minister Amit Shah today reviewed the country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Chairing a high-level meeting in New Delhi, Mr. Shah assessed the readiness of central government agencies, reviewed early warning systems, resource deployment, and inter-agency coordination to ensure zero loss of life and minimal loss of property. The minister also reviewed the progress of long-term flood mitigation measures being taken across the country, including protection of critical infrastructure projects, river management initiatives, and scientific advancements in forecasting. Union Home Minister Amit Shah has said that the Constitution and the judiciary have played a significant role in strengthening the foundations of Indian democracy. Mr. Shah was speaking in New Delhi this evening after releasing two books authored by Solicitor General Tushar Mehta. The Home Minister said the faith of the common man, the functioning of society and the character of the nation are reflected in a strong justice system. He added that India as a society has successfully maintained public trust in its institutions.
3: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को
8: वी हैव सर्टेनली स्ट्रेंथन आवर मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम 1947 अंटिल टुडे ऑल द चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन दिस कंट्री थ्रू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन एक्सेप्टेड विदाउट शेडिंग ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड वी हैव इम्प्लीमेंटेड दीज चेंजेस इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द रूट्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी रन वेरी डीप एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड Our judiciary have made a very significant contribution to this.
3: हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा

मोहम्मद रफी की आवाज में आप वासना फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे चित्रगुप्त। आपके लिए कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं बड़ा आदमी फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की, रचना प्रेम धवन की है और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

संगीतकार थे चित्रगुप्त। मोहम्मद रफी की आवाज में, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में लीजिए सुनिए एसएच बिहारी का लिखा गीत। संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी।

रफी नैयर के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया गीत। इसी गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। और देखिए ना, चारों तरफ फूल खिले हैं और मत भरी रुत जवान है। इन मीठी स्वर लहरियों की तरंगों पर सवार होकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े हैं।

के फनकार कार्यक्रम में आज बातें बहुत ही मीठे गायक, विरल और दुर्लभ संगीतकार और अद्भुत व्यक्तित्व पंकज मलिक की।

पंकज मलिक का जन्म 10 मई 1905 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम था मणिमोहन मलिक और माता का नाम मनमोहिनी था। उनके पिता पारंपरिक बंगाली संगीत में खास दिलचस्पी रखते थे। पंकज मलिक ने दुर्गादास बंदोपाध्याय के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी शुरुआती तालीम ली। बहुत कम उम्र में उन्होंने ख्याल, ध्रुपद, टप्पा और दूसरे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हासिल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनका संपर्क दीनेन्द्रनाथ टैगोर से हुआ, जो कवींद्र रवींद्र के भतीजे थे। उन्होंने दीनेन्द्रनाथ टैगोर से रवींद्र संगीत सीखा। बांग्ला भाषियों में रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं को लोकप्रिय बनाने में पंकज मलिक के गाए गीतों का बड़ा योगदान माना जाता है। पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। पंकज मलिक का फिल्मी सफर मूक फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें सही पहचान सन 1930 के दशक में बोलती फिल्मों की शुरुआत से मिली थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी धरती माता। ग्रामीण भारत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में किसानों की समस्याओं और उन मुसीबतों से जूझने का रास्ता दिखाया गया था। पंकज मलिक ने इस फिल्म में बेहतरीन संगीत दिया था। आइए ये गाना सुनिए।

संगीत समीक्षकों ने फिल्म धरती माता के संगीत की बहुत प्रशंसा की। सन 1938 में शरद चंद्र के उपन्यास पर आई फिल्म बड़ी दीदी, इस फिल्म में पंकज मलिक का संगीत था। सन 1939 पंकज मलिक ने फिल्म दुश्मन में संगीत दिया। इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे अद्भुत गीतों में इस गाने का शुमार होता है। सन 1939 फणी मजूमदार ने बनाई बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म कपाल कुंडला, और इस फिल्म में पंकज मलिक ने स्वयं गाया ये गाना।

सन 1940 लीला देसाई के अभिनय वाली फिल्म नर्तकी में आया पंकज मलिक का संगीत। इस फिल्म के गाने पंडित आरजू ने लिखे थे। खास तौर पर इस गाने को अक्सर ही विविध भारती पर सवेरे सवेरे सुना जाता है।

सन 1940 में आई फिल्म जिंदगी। इस फिल्म के गीतकार थे केदार शर्मा। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में इस फिल्म में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया था।

आज इतने बरस बाद भी इस गाने का जादू उतरा नहीं है। राग यमन पर आधारित इस गाने को स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर बहुत पसंद करती रहीं और जब आगे चलकर उन्होंने श्रद्धांजलि नामक अपना एल्बम तैयार किया तो पंकज मलिक को नमन करते हुए इस गाने को दी अपनी आवाज।

इसी फिल्म में एक और बेमिसाल गाना था, हिंदी फिल्म संगीत की एक शुरुआती लोरी कुंदनलाल सहगल की आवाज, और इस गाने को भी आज तक बहुत याद किया जाता है।

सन 1941, फिल्म आई डॉक्टर, और इस फिल्म में पंकज मलिक संगीतकार और अभिनेता के रूप में शामिल थे। इस फिल्म का ये गीत सुनिए।

पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत जगत के इतिहास के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर संयोजन किया। पंकज मलिक ने पश्चिमी वाद्यों का कुशल इस्तेमाल किया, हालांकि बाद के दौर के संगीतकारों ने धड़ल्ले से पश्चिमी साजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पंकज मलिक ने जिस तरह से उन्हें अपने संगीत में संयोजित किया है वो अद्भुत है। सन 1944 में आई न्यू थिएटर्स की फिल्म माय सिस्टर, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल ने गाया दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करें। इस गाने को सुनकर आज भी आपकी गर्दन थिरकने लगेगी।

0: है।
1: सन 1952 में न्यू थिएटर्स की फिल्म यात्रिकाई, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना पर आधारित इस फिल्म के गानों में पंकज मलिक का योगदान था।

0: हर फूल में बसा है, हर चीज में उसी का जलवा झलक रहा।
1: पंकज मलिक ने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं, जैसे उनका गाया राग यमन कल्याण पर आधारित ये भजन सुनकर आपके मन में आस्था का दीपक जल उठेगा।

पंकज मलिक लंबे समय तक आकाशवाणी कोलकाता से जुड़े रहे और पूजा के दिनों में महिषासुर मर्दिनी नामक कार्यक्रम का संचालन करते रहे। एक झलक सुनिए।

भारतीय डाक विभाग ने सन 2006 में पंकज मलिक की जन्मशती पर एक विशेष डाक टिकट उनकी याद में निकाला था। 19 फरवरी 1978 को पंकज मलिक ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया तो बस उनका दिव्य स्वर, उनके बनाए गाने और उनकी मधुर स्मृतियां। गायक और संगीतकार पंकज मलिक को हमारा विनम्र नमन।

आज के फनकार कार्यक्रम आज जाने माने गायक और संगीतकार पंकज मलिक पर केंद्रित था। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। रात्रि के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम दिलां दे मीत पहाड़ी गीत।

रुठना मनाना ता रिश्ते जिंदा रखने दी चाबी, दिला दे मीत जो आप बीती भी सुनाना जरूरी, नहीं तो कई बारी सुनाना इयां भी पौंदा, जियां जे इस लोक गीता चे सुनाई करदे।

बेश्रोतियो मौसम भी बदला दा कने हर साल बदलदा कुछ भी संसार च स्थाई नहीं रहिंदा जेड़ा आया तिसिक दिन जाना भी आ पर इंसान तो वे अपनी पूरी कोशिश करदा कि अपने तरीके ने अपने संसार जो चलाई सके।

श्रोतो इसी लोकगीत कन्ने अज दा ए कार्यक्रम दिलां दे मीत पहाड़ी गीत एथे होवा दा संपन्न दे इजाजत अपनी रेडियो दोस्त नेहा मिश्रा जो राम राम।

कार्यक्रम चांदनी रातें सुनने वालों को संजय शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। नजरों ही नजरों में ये प्यार हो जाता है और दिल में उतर जाता है।

चांदनी रातें कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM हमीरपुर से। दो दिलों की धड़कनें जब धड़कती हैं तो लगता है मानो हर कोई इस धड़कन में अपने गीत गुनगुना रहा है।

मोहब्बत का सफ़र भी अनोखा होता है। इसमें कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ किसे मिलेगा, सब इसमें अपने आप तय होता है।

चांदनी रातें कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM हमीरपुर से। जी हाँ, प्यार भी एक अनूठी अदा है, प्यार को प्यार करने वाले ही जानते हैं।

प्रेम एक ऐसी अविरल धारा है जो अटूट चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। इसी का नाम प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है।

0: चांदनी रात के कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। संजय शर्मा को दीजिए अनुमति, नमस्कार। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। कृपया लेखी प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एम के स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है।

0: ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:05 हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। अपनी प्रातःकालीन सभा में सुबह 5:55 पर पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।